फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई OMR शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा

0: परीक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं सामूहिक स्वरों में ये देशगान।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। और लीजिए आप सुनिए लक्ष्मी शंकर से ये पारंपरिक भजन।

हरिओम शरण के गए इस राम भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न हुआ।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:25 हुए हैं। आइए हम आपको हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रम बता दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होगा सुरेश वाटकर का। भूल मिश्र गीत आप सुन सकते हैं सुबह 6:40 पर। कृषि संकेत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सुबह 7:05 पर। दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह आप सुनेंगे सुबह 7:00। कृषि संकेत कार्यक्रम में विषय होगा रासायनिक दवाओं के उपयोग में विशेषज्ञों की सलाह, और विशेषज्ञ होंगे श्री विपिन जैन। 7:20 पर आप सुनेंगे रेडियो पत्रिका कार्यक्रम गागर में सागर। संकलन व निर्माण होगा अदिति जैन का। 7:50 पर गीतों और गजलों का कार्यक्रम होगा संगीत सरिता।

सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। आज सुबह 9 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। 9:10 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्मा के 33वें एपिसोड में श्री आर माधवन से भेंटवार्ता। सुबह 10 हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी। 10:05 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 11 से हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। दोपहर 2 हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से फिल्म संगीत। शाम 5 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे इस घंटे की सुर्खियां। युवानी का कार्यक्रम होगा शाम 5:02 पर, इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 5:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। 5:40 पर गीत और गजलों का कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार गीत। 6:45 पर कार्यक्रम लोकरंग। 7:20 पर आप सुनेंगे एक बार फिर बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। शाम 7:20 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ग्राम सभा। सुर्खियों में कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रात 8:00। 8:15 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम डगर विकास की। विषय होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आकाशवाणी छिंदवाड़ा का योगदान होगा। चितपट संगीत आप सुन सकते हैं आज रात 8:30 पर मन चाहे गीत रात 9:00 और 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

0: भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान
0: करी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर है सुरेश वाडकर का।

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है तुम्हें वही शरीर मिलेगा, ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिवजी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर था सुरेश वाडकर का। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए कुछ भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं आर पार फिल्म का ये गीत शमशाद बेगम की आवाज में। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत है ओपी नैयर का।

और लीजिए अब सुनिए बसंत बहार फिल्म का गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में। गीत है शैलेंद्र का और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: सी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So
3: easy. अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: CID फिल्म का ये गीत शमशाद बेगम की आवाज़ में, गीत है मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत है ओपी नैयर का।

शमशाद बेगम की गाए इस गीत के साथ ही भूले मिश्र गीतों का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: कल्याणं ग्रामीणविकासः सहकार्यसंस्थाः ऊर्जासुरक्षा पर्यावरणस्य स्थायित्वं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु युगपत् औन्नत्यं दृष्टम्। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षण संस्थया समीक्षार्थम् ओएमआर पत्राणां प्रस्तुतीकरणस्य विषये छात्राणां अभिभावकानां च कृते सचेतक पत्रं प्रकाशितम्। एनटीए इत्यनेन प्रकाशितं यत् अद्यतनकाले समीक्षार्थं प्रदत्तानि बहूनि ओएमआर पत्राणि कृत्रिमाणि प्राप्तानि। एनटीए इत्यनेन उक्तं यत् प्राप्तस्य प्रत्येकस्य पत्रस्य सक्रियरूपेण परीक्षणं क्रियते, परन्तु यदि कृत्रिमम् अथवा एआई जनितानि ओएमआर पत्राणि प्रस्तूयन्ते तर्हि गभीराः न्यायिकपरिणामाः भवितुम् अर्हन्ति इति सचेतना दत्ता। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऐषमः दशमकक्षायाः द्वितीय बोर्ड परीक्षायाः परिणामः घोषितः। ये छात्राः द्वितीय बोर्ड परीक्षां लिखितवन्तः ते डिजी लॉकर रिजल्ट इत्यस्य माध्यमेन तेषां परिणामान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः अनुशंसानाम् अनुरूपं सीबीएसई संस्थया दशमकक्षायाः कृते अस्मात् वर्षात् बोर्ड परीक्षाद्वयं प्रवर्तितमासीत्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः एस्टोनिया देशस्य आधिकारिक यात्रायाः समये टैलिन नगरे भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चं संबोधितवान्। अस्मिन् अवसरे सः व्यापारे निवेशे नवीनतायां प्रौद्योगिक्यां च गहन सहकार्यस्य आह्वानं कृतवान्। मञ्चे द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यस्य सुदृढीकरणाय नूतनानां मार्गाणाम् अन्वेषणार्थम् उभय देशानां वरिष्ठ सर्वकारीय प्रतिनिधयः उद्योगनेतारः व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य च सदस्याः एकत्र आगताः सन्ति। जम्मू कश्मीरे श्री अमरनाथजी यात्रा प्रतिकूल ऋतोः पूर्वानुमानं दृष्ट्वा पहलगाम बालताल इति द्वयोः मार्गयोः अपि अद्यारभ्य स्थगिता जाता। एकः अधिकारी अवदत् यत् भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन यात्रिकाणां सुरक्षां कल्याणञ्च सुनिश्चित्य आगामिषु कतिपयेषु दिनेषु ऋतोः प्रतिकूलतायाः पूर्वानुमानस्य अनन्तरम् एषः निर्णयः कृतः। अधिकारी अवदत् यत् यावत् अग्रिम आदेशः न भवति तावत् बालताल नूनवान चन्दनवारी आधारशिला शिभ्रात् यात्रीणाम् अग्रे गमनस्य अनुमतिः न भविष्यति इति वार्ताः।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 7 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। सुबह सुबह कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। खुद पर भरोसा रख ले, खुद पर भरोसा रख ले, हर अंधेरे के बाद उजाला। गिर के भी जो उठ जाता है वही दुनिया में सबसे निराला। जी हाँ श्रोताओं, आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। जिसके पास आत्मविश्वास होता है वो किसी भी मुश्किल से काम को आसानी से कर लेता है। इसे ही सफलता की पहली सीढ़ी कहा जाता है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये मेहनत, अनुभव और पॉजिटिव सोच से आता है। अगर हम खुद पर भरोसा करना सीख जाएं तो दुनिया की कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। और किसी ने क्या खूब कहा है, पहले खुद पर विश्वास करो फिर दुनिया तुम पर विश्वास करेगी। श्रोताओं, आत्मविश्वास से इंसान मुश्किलों से नहीं घबराता, वो गलती करके भी हार नहीं मानता बल्कि उस हार से सीखता है। स्कूल हो या जॉब या जिंदगी, हर जगह आत्मविश्वासी लोग आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो कोशिश करना नहीं छोड़ते। साथियों, आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने से, प्रैक्टिस करने से और पॉजिटिव सोचने से ही ये बढ़ता है। मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये सोच सबसे ज़रूरी है। अगर हम अपने अंदर का डर निकाल दें और मेहनत करें तो कोई भी सपना बड़ा नहीं लगता। सच में जो खुद पर विश्वास करता है, दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है। महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे अनेक लोगों ने आत्मविश्वास के दम पर ही बड़े बड़े काम किए। इन्होंने नाकामी देखी पर आत्मविश्वास कभी नहीं छोड़ा। साथियों, आत्मविश्वास जीवन की वो शक्ति है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानना है। साथियों, जिसके पास आत्मविश्वास होता है, वो चुनौतियों से नहीं घबराता, वो हार को भी सीख का जरिया बना लेता है। आत्मविश्वास हमें सही निर्णय लेने, लक्ष्य के पीछे लगातार मेहनत करने और गिरकर फिर उठने की हिम्मत देता है। इसलिए कहा जाता है, सफलता के रास्ते पर सबसे पहला कदम आत्मविश्वास का ही है। इसके बिना प्रतिभा भी आधी रह जाती है। आत्मविश्वास भय को दूर करता है, निर्णय शक्ति बढ़ाता है और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। इसे बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच, लगातार प्रयास और स्वयं का मूल्यांकन आवश्यक है। और अंत में इतना ही, टूटकर बिखरना मेरी आदत नहीं, मुझ में हर मुश्किल से लड़ने की ताकत है। दुनिया जो भी कहे, मेरा आत्मविश्वास ही मेरी पहचान है। मैं हूँ, मैं कर सकती हूँ, हर आंधी में भी दीप जला सकती हूँ। गिरना मेरी फितरत नहीं, मैं आत्मविश्वास से अपना रास्ता खुद बना सकती हूँ। तो आज के सुबह सुबह से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: ना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-222

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि संकेत। विषय है रासायनिक दवाओं के उपयोग में विशेषज्ञों की सलाह और वार्ताकार है श्री विपिन जैन।
1: कोई भी रसायन बिना किसी विशेषज्ञ के लेना, खरीदना या डालना बहुत ही गंभीर विषय है। बिना वैज्ञानिकों की कोई भी रसायन नहीं लेना चाहिए जिससे आपको कोई हानि हो। सबसे पहले विशेष वास्ते ध्यान रखें, यदि खरपतवार नाशक है, फपून नाशक है, बीज उपचारक है, कोई भी दवा है, तो जो अपन डिब्बा लेते हैं या पैकेट लेता है तो उस पर पूरी विस्तृत उसकी जानकारी रहती है। यदि बीज उपचार की दवा है तो उस पर बीज उपचार लिखा हुआ होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसान भाई जो दवाई ले रहे हैं, कुछ जो कंपनियां हैं अच्छी कंपनी की अपन को दवाई लेना है, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो दवाई अच्छी कंपनी की है वो लेना है। ठीक है, अब जो दवाइयां रहती हैं उसमें बहुत सारा विस्तार से रहता है, जैसे कीटनाशक रहता है तो कीटनाशक की दवाई हरे लेवल की रहती है, पीले लेवल रहता है, रेड लेवल रहता है, ये दर्शाता है कि ये किस प्रकार से इंसान को घातक है या पौधों को नुकसान करता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण रहता है जो अपनी दवा है उसका उत्पादन तिथि, कब उसका उत्पादन हुआ।

0: है और किस तिथि तक एक्सपायरी डेट रहती है, अंतिम तिथि वो कब तक की है, उसको ध्यान रखना है। यदि अंतिम तिथि निकल गई है तो उस दवा का प्रयोग अपन को नहीं करना है। तो अपन को एक्सपायरी डेट भी और उत्पादन डेट का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि पैकेट आपका खुला हुआ ना हो, डिब्बा आपका कहीं से लीक ना हो पहले से, ठीक है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें चेक करके आप उसको खरीद सकते हैं। दवाई चूँकि रसायन है और किसी न किसी रूप में वो यदि उसका सही प्रयोग ना हो तो चाहे पौधों को हो या मनुष्य को हो नुकसान ही देगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखना, ठीक। अब जैसे बीज उपचार की बात आती है, बीज उपचार का जो रसायन है, किसान भाई हैं बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यदि बीज उपचार कहते हैं वो ग्लव्स नहीं पहनते, मास्क नहीं लगाते, ये बहुत ही जरूरी है। इसके बाद ग्लव्स और मास्क लगाना है, किसान भाई को ध्यान रखना है। जब अपन दवाइयों का प्रयोग करते हैं या बीज उपचार कर रहे हैं, हाथों से उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समय अपन को ध्यान रखना है बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला ये कुछ नहीं खाना, और एकदम बंद कमरे में इनका प्रयोग नहीं करना है। क्या है, बंद कमरे में वायु का आवागमन नहीं होता है, जिसके कारण भी यदि ज़्यादा मात्रा में आप उसको सूंघ लें या आँखों में चली जाए तो हो सकता है सिर दर्द होने लगे, सर्दी हो जाए, जुखाम हो जाए, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि ग्लव्स पहनना है, मुंह बांधना है और खाने वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। निंदा में अपन रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि अब इस समय वर्तमान में अपन देख रहे हैं जो अपना रकबा है लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले किसान भाई सक्षम थे, मजदूर आसानी से मिलते थे, तो कुछ निंदाई गुड़ाई करके अपना खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं। चूंकि अब खरपतवार नियंत्रण व्यक्तियों के माध्यम से, मजदूरों के माध्यम से कुछ असंभव हो गया है, तो अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करें, ठीक है, तो खरपतवार नियंत्रण में प्री इमर्जेंस आते हैं और पोस्ट इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस वो होते हैं जो अपने पौधों के निकलने के पहले प्रयोग किए जाते हैं, और पोस्ट इमर्जेंस जो होते हैं जो पौधे अपने हो जाते हैं उसके बाद प्रयोग करते हैं। प्री इमर्जेंस पोस्ट इमर्जेंस में आप सबसे पहले ध्यान रखें, कोई भी रसायन प्रयोग कहते हैं तो ध्यान रखना है जो रसायन जिस समय के लिए रिकमेंड किए उसी समय रिकमेंड करना चाहिए। किसान भाई क्या कहता है, जैसे रवि ऋतु की फसल थी गेहूं वगैरह, उसमें उनने खरपतवार नाशक का प्रयोग किया। खरपतवार नाशक का प्रयोग करने के बाद जो उनके कृषि यंत्र रहते हैं, पंप वगैरह रहते हैं, और अगर उनको धोके और साफ करके नहीं रखते, कुछ मात्रा में उनकी रह जाती है, और जब अपन खरीफ ऋतु के रसायन का प्रयोग करके उसमें डालते हैं तो शुरुआती जो पंप रहेंगे उसमें वो पुरानी दवा आ जाएगी, तो आप ये समझो कि पहले पंप की दवा का प्रभाव ऐसा रहेगा।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा...

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज भोपाल के पास ऐतिहासिक स्थल जगदीशपुर में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10,54,000 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 1,460 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और प्रदेश में एक बार फिर मानसून के गति पकड़ने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज राजधानी भोपाल से लगे हुए प्राचीन महल और स्मारक वाले गांव जगदीशपुर में आयोजित की जाएगी। इसे लेकर कल दिनभर तैयारियां होती रहीं। भोपाल कमिश्नर कर्मवीर शर्मा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जगदीशपुर में डॉक्टर मोहन सरकार की 8वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग हो रही है। इससे पहले जबलपुर के शक्ति भवन, दमोह के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी। वहीं लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर

0: के 300वें जयंती वर्ष पर इंदौर के रजवाड़ा में पचमढ़ी के राजभवन में राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित मंत्रिपरिषद की बैठक हो चुकी है। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर और बड़वानी जिले के जनजाति बहुल क्षेत्र भीलट बाबा देवस्थल नागलवाड़ी में भी बैठक हो चुकी है। ये भविष्य में पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी कैबिनेट प्रस्तावित है। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक बड़ी योजना की घोषणा की जाएगी। ग्वालियर विकास और प्रगति के पथ पर चल रहा है और ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार में हो रहा है।
1: ग्वालियर में आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी और मैं मिलकर बहुत बड़ी सौगात लेके आने वाले हैं और वो खुशखबरी ग्वालियर की जो लंबी श्रृंखला रही है विकास की, चाहे ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन जहां हम खड़े हुए हैं, एलिवेटेड रोड हो, अनेक योजनाएं 15,000 करोड़ की, ग्वालियर भिंड इटावा का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है, गडकरी साहब से मेरी चर्चा भी हो गई है, जल्द से जल्द वो भी तैयार हो जाएगा, पश्चिमी बाईपास भी है, ग्वालियर विकास और प्रगति के पथ पे चल रहा है।
0: जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल देवास फोरलेन पर फास्टैग के जरिए 3 XL बसों से अधिक टोल वसूली को अवैध ठहराया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डबल बेंच ने टोल कंपनी को करीब 11 करोड़ रुपए प्रभावित वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को लौटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मेसर्स देवास भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज करते हुए एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 21 मई 2025 के आदेश को बरकरार रखा। कंपनी पर 25,000 रुपये की कास्ट भी लगाई गई, जिसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अप्रैल 2022 से जिन भी वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों से अतिरिक्त राशि वसूली गई है, उन सभी को रिफंड दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। CBSE के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में डिंडौरी में पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया गया। वहीं झाबुआ जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के चौथे दिन जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं उमरिया SDOP PS परस्ते ने लोगों से इस अभियान में जन भागीदारी की अपील की है।
3: मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आमजन, युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराना है। वाकई में नशा एक व्यक्ति, उसका परिवार और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार के अवैध मादक पदार्थ की क्रय विक्रय की जानकारी प्राप्त होती है, परिवहन की जानकारी प्राप्त होती है, तो संबंधित नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के इसकी जानकारी दें।
0: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। श्राइन बोर्ड की आधिकारिक सूचना के अनुसार तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। श्रद्धालुओं को धैर्य रखने और श्राइन बोर्ड के आधिकारिक संचार माध्यमों से जारी सूचनाओं का पालन करने की सलाह दी गई है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस वर्ष वैष्णो देवी पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख से अधिक हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी कल से पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से रोक दी जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम के अनुमान के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अब तक अमरनाथ जी यात्रा के दौरान 370,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस साल की यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। शिक्षा मंत्रालय ने भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध 3 बीएड कॉलेजों में गंभीर अनियमितताओं की टीवी जांच रिपोर्ट के बाद तत्काल कार्रवाई की है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि कुछ कॉलेज अपने घोषित स्थानों पर संचालित नहीं हो रहे थे और उनमें आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव था। हालांकि ये संस्थान राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त और विनियमित हैं, इसलिए मंत्रालय ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु ने कल चीन के विश्व की नंबर 4 खिलाड़ी चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीत लिया। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल में आज सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलो भार वर्ग में अमरीका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में यह भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने डिंडौरी और उमरिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश में लगातार तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जिला प्रशासन ने ग्राम खजराना स्थित शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 80 करोड़ रुपए मूल्य की 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण को हटाया। महानिदेशक जेल वरुण कपूर ने जिला जेल शाजापुर में निरीक्षण कर जेल की सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों के लिए मूलभूत सुविधाओं को देखा। खंडवा में एमएसएमई विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए बैतूल जिले से 260 यात्री आज से रवाना होंगे। मंदसौर के दलौदा में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा द्वारा किसान दिवस समारोह में किसानों को सम्मानित करने के साथ ही फलदार पौधों का वितरण किया गया। आगरमालवा जिले में विशेष 138 एनआई एक्ट के तहत लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 9,46,000 रुपये की चेक राशि मामलों का निराकरण किया गया। और डिंडौरी में राज्य आनंद संस्थान के मार्गदर्शन में जनजाति कार्य विभाग द्वारा अल्पविराम विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए रेडियो पत्रिका कार्यक्रम गागर में सागर। संकलन व निर्माण है अदिति जैन का।
1: गागर में सागर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र की साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर।
1: सागर मंथन।
2: बीते सप्ताह की आयोजित गतिविधियों की जानकारी। पीएम ऊषा परियोजना के अंतर्गत 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एकात्म मानव दर्शन विकसित भारत 2047 15 से 16 जुलाई 2026 को आयोजित की गई। राजनीति विज्ञान विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश द्वारा आदिगुरु शंकराचार्य सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

0: कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों, शिक्षाविदों और प्रतिभागियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में एकात्म मानव दर्शन की भूमिका पर व्यापक चर्चा हुई। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सभी ने अपने अपने विचार साझा किए। खुरई क्षेत्र में लगभग 131 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी कृषि महाविद्यालय का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर कृषि शिक्षा, अनुसंधान और किसानों की समृद्धि से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए गए। पूर्व गृह मंत्री खुरई विधायक श्री भूपेंद्र सिंह ने मंच से अपने विचार साझा किए। सुनते हैं स्थल रिकॉर्डिंग के कुछ अंश।
1: हम सब सौभाग्यशाली हैं, पिछले 12 वर्षों में एकमात्र कृषि महाविद्यालय बना है वो खुरई के अंदर। कृषि महाविद्यालय इतना बड़ा संस्थान है कि ICR के अंतर्गत हमारे इंटरनेशनल लेवल के छात्र, विदेशों के छात्र, देश के छात्र और एक रिसर्च सेंटर, ये सब इसमें सारे प्रोविजन है। और हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और इसलिए हमारे खुरई विधानसभा क्षेत्र के किसानों को इसका सर्वाधिक लाभ आने वाले समय में मिलेगा।
0: गढ़ौला जागीर में लगभग 36 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित संदीपनी उच्च माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और संस्कार युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में इस पहल को महत्वपूर्ण बताया गया। सुनते हैं स्थल रिकॉर्डिंग के कुछ अंश।
2: अब ये संदीपनी विद्यालय गढ़ौला में बनने से गांव की और शहर की दूरी समाप्त हो गई। गांव के बच्चों को भी ये लगे कि खुरई से भी अच्छा स्कूल हमारा गढ़ौला का स्कूल है।
0: खेल और युवा कल्याण विभाग, जिला सागर और मध्य प्रदेश पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में नशे से दूरी है जरूरी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के माध्यम से युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक रहने और स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी दे रही है सीमा चक्रवर्ती।
3: नमस्कार श्रोतागण, मैं सीमा चक्रवर्ती खेल एवं युवा कल्याण विभाग से हूँ। हमारे विभाग में पुलिस बल और खेल विभाग के माध्यम से रैली निकाली गई। अभियान का नाम नशा मुक्ति अभियान है और इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमें युवाओं को, सभी को, हमारे मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। तो रैली निकाली गई, इसमें लगभग 1500 हमारे पुलिस दल थे। परिवार में कोई नशा कर रहा है तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। धन और संपत्ति, धन की भी हानि होती है और जो स्वास्थ्य होती है उसकी भी हानि होती है। युवाओं को समझाया गया। हमारे इस कार्यक्रम में युवाएं और बच्चे भी शामिल थे, तो उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि जो हमारे आसपास है, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और जो भी हमारे देश में नशा करते हैं, तो हमें उन्हें समझाना है और देश, प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। 30 जुलाई तक है तो निश्चित ही कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर युवाओं का एक बहुत बड़ा दल शामिल है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि यह नशा जो है हमारे परिवार को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी यह कार्यक्रम को सुन रहा है वह नशे से दूरी बनाएगा और अपने परिवार को एक सक्षम परिवार बनाएगा। केवल नशा खत्म करने से हमारा परिवार बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छे से बन जाता है। इसलिए नशा किसी कोई भी श्रोतागण ना करें, ऐसा मैं सभी से अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद।
4: शिखर की ओर।
0: हर वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल जस्टिस डे। ये दिवस न्याय, मानव अधिकार, कानून के शासन और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करता है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था और इसके महत्व को लेकर एक विधि विशेषज्ञ से विशेष बातचीत की। हमसे बात कर रही है एडवोकेट दीपा तिवारी।
5: जी नमस्ते अदिति, मैं एडवोकेट दीपा तिवारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे अभी 20 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की नींव का दिवस रहता है। 17 जुलाई को रोम संविधि, जो रोम स्टैट्यूट होता है, वो उस दिन अपनाया गया था। और ये जो युद्ध में जघन्य अपराध होते हैं, उसके लिए ये वैश्विक संकल्प लिया गया था कि इस तरीके की

0: जब बनते हैं, जब संगठन बनते हैं, तो वो किसी भी देश का नागरिक हो, अगर उसका अन्याय उसके साथ हो रहा है या उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो यहाँ इस तरीके के संगठन को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, बहुत संबंध इसका रहता है। हम इसको अंतरराष्ट्रीय शब्द जब जुड़ जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भारतीय एक ये सोचेगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो कानून होते हैं उसके हमारे आम जिंदगी में क्या उसकी उपयोगिता है। लेकिन हमें ये समझना रहता है कि आप के परिवार, आपके शहर, समाज से कोई विदेश में रह रहा है और वहां उसके किसी अधिकार का हनन हुआ है, तो आपको जो सहायता मिलती है वो इन्हीं कानूनों के तहत मिलती है। इसी संगठन से जो आपको मदद मिल सकती है वो आपको यहाँ पे उपयोग आता है। भारत की बात मैं कहूँ विशेष रूप से, तो हमारे यहाँ NHRC, जो सभी ने सुना होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, जो बंधुआ मजदूर होते हैं या स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसे इशू रहते हैं, या आप कभी आप देखें कि कोई युद्ध हो रहे हैं वहां पे किसी के अधिकारों का हनन हुआ है, बॉर्डर एरियाज पे रहने वाले जो विलेजेस होते हैं या वहां रहने वाले उस सेक्टर पे लोग जो है या रहवासी जो है, उनके अधिकारों का भी इस दौरान, युद्ध के दौरान कई बार हनन होता है, उनके घरों को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है, व्यापार को नुकसान होता है। तो जब दो राष्ट्रों की बात आती है तो ये चिंतन का विषय आ जाता है कि नागरिक किधर जाके इसकी सूचना दे और किधर जाके वो अपने अधिकारों के लिए प्रार्थना करे। तो इस तरीके के कानून ऐसी जगहों पे उपयोग आते हैं। लोगों को नौकरी के लिए, जॉब के लिए, आजकल जो हमारे यूथ है वो हमारे देश तक तो सीमित रहा नहीं है, वो अमेरिका भी जा रहा है, इंग्लैंड भी जा रहा है, कनाडा जा रहा है, और हर कम्युनिटी का व्यक्ति, स्पेशली हमारे इंडियंस, आपको विश्व के हर देश में मिल जाएंगे। तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है। एक बात मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगी कि अधिकतर हम देश के नागरिक होने के नाते हम अधिकारों की बात करते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमारा वो अधिकार है, लेकिन एक जागरूक नागरिक तभी होता है जब उसको अधिकार के साथ अपने कर्तव्य भी पता हो। और उसमें एक कर्तव्य ये भी आता है कि जब हमारे आस पड़ोस, हमारे रिलेटिव्स में ऐसी कोई समस्या आती है तो हमें जब तक जानकारी नहीं होगी हम उसकी मदद नहीं कर सकते। इसलिए ये सागर के लिए जरूरी नहीं है कि हम सागर के रहवासी होने के नाते हम ये सोचें कि इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल जस्टिस हमारे लिए क्यों जरूरी है। जरूरी ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में आप हो, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी आप अपनी ना अपनी सहायता कर पाएंगे ना किसी और की सहायता कर पाएंगे। और एक सजग और जागरूक नागरिक होने के नाते, वो देश के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, उसे कानून पता होना चाहिए। न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए तीन स्तंभ जो होते हैं, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली बात तो कानूनी साक्षरता है, लीगल लिटरेसी जो है। सबसे पहले तो नागरिक को अपने कर्तव्य के प्रति सजग होना चाहिए, तभी वो समझ पाएगा कि हमारे कर्तव्य क्या है और हमारे अधिकार क्या है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वहां जाके सीमित होते हैं जहां हम किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं। यही बात देशों के बीच में भी आती है। आप देख रहे हैं कि अभी विश्व मंच पे हम देख ही रहे हैं कि कितने सारे युद्ध से इसी बात के लिए चक्र चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दे जो है वो एक देश की नहीं है, वो दो देश के आपसी विवाद है, जहां पे कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय कानून की मदद लेना जरूरी होता है। दूसरी चीज, हमारे देश में जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, कई बार वो कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं जैसे मानव तस्करी के मुद्दे होते हैं या यौन संबंधी अपराध है या बच्चियों से संबंधी अपराध है, महिलाओं से संबंधी अपराध है, आदिवासी क्षेत्र से संबंधी कोई अपराध है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो स्वतः संज्ञान लेता है, जिसको अधिकतर हमने कानूनी भाषा में हम सुनते हैं स्यू मोटो एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये वो होता है। तीसरी चीज कि चूंकि अब हमारा देश डिजिटल इंडिया हो गया है और हम वैश्विक मंच से जुड़ने के लिए हमारे पास एक ये तकनीकी साधन हमारे पास है, तो हर नागरिक को जरूरी भी है कि वो इससे भी अपने आप को अवगत कराए, इसके बारे में भी वो जानकारी ले। इसका मुख्य रीजन ये भी है कि ये व्यक्ति कई बार जहां उसे पहुंचना चाहिए वो वहां पहुंच नहीं सकता, तो इस तरीके का डिजिटल कोर्ट ई सेवाओं का उपयोग करके उसको राहत मिल सकती है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, मैं देखिए सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि श्रोतागण जो है उन्हें कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है, विशेष रूप से संविधान की जानकारी होना जरूरी है। आप न्याय की उम्मीद तभी कर सकते हैं जब आपको देश के कानून का ज्ञान होगा। दूसरों के अधिकारों का भी आप सम्मान करें, एक न्यायपूर्ण समाज की आप नींव रखने की कोशिश करें। देखिए, जहां तक हमारी ये चर्चा शुरू हुई थी, ये हमने विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को लेकर शुरू करी थी, तो मैं यही कहूंगी कि इसे आप अंतर्राष्ट्रीय सिर्फ एक शब्द से जोड़कर इसे ये ना समझे कि हमारे काम की चीज नहीं है। इसे आप समझे, पढ़े। श्रोताओं से मैं यही कहूंगी कि देश के कानून के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी आपको ज्ञान आपको होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी जाने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सागर के मोती।
2: श्रोताओं, आज की युवा पीढ़ी में ऐसे कई प्रतिभाशाली युवा हैं जो रचनात्मकता के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी अपनी सोच का हिस्सा बना रहे हैं। ऐसी ही एक युवा हैं अनुष्का जैन, जो इंडस्ट्रियल डिजाइन के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। आर्ट क्राफ्ट वर्कशॉप्स के माध्यम से वो सस्टेनेबिलिटी, रीयूज और रिपेयर की सोच को बढ़ावा देती है ताकि चीजों का बेहतर उपयोग हो और पर्यावरण पर बोझ कम हो। सुनते हैं अनुष्का जैन से ये बातचीत।
3: नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का जैन है। मैं अभी 18 वर्ष की हूँ। मैं सागर से ही पली बड़ी हूँ। सागर मेरा होम टाउन है और बचपन से ही मुझे आर्ट और क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा रुचि रही है और इसीलिए मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और इसके लिए ही मैं डिज़ाइन स्कूल जा रही हूँ। अभी मैंने 11th-12th में मैथ्स लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, और अब मैं डिज़ाइनिंग कंटिन्यू करने वाली हूँ। डिज़ाइन शब्द सुनकर हमें एकदम ही क्रिएटिव वाली चीज़ लगती है दिमाग में, पर डिज़ाइन काफ़ी तरीके की होती हैं और मुझे इंटरेस्ट था इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, प्रोडक्ट डिज़ाइन में। उसमें हमें मैथ्स और फिजिक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए जब 10th के बाद मैंने ऑप्शंस देखे, करियर ऑप्शंस, तो डिज़ाइनिंग मुझे एक ऐसा फील्ड लगा क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी और साइंस लॉजिक को साथ में मिलाकर कुछ हम प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए मैंने मैथ्स ली, जैसे कि मुझे फ्यूचर में फिजिक्स और मैथ्स ये सब यूज़ में आ पाए। डिज़ाइन कई तरीके की होती हैं। हमारी डेली लाइफ में डिज़ाइनिंग हर जगह उपयोग होती है। हम जो ऐड देखते हैं उसमें डिज़ाइन है, हम जिस चेयर पर बैठते हैं उसमें भी डिज़ाइन है। हर चीज़ को सोचा गया है कि इसको ऐसे बनाएंगे तो इसका ये आउटकम होगा। हर चीज़ में हम डिज़ाइनिंग यूज़ करते हैं और डिज़ाइनिंग कई तरह की होती हैं, फिजिकल डिज़ाइन, डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो जो आप एड्स देखते हैं उसको कम्युनिकेशन डिज़ाइन कहते हैं, जिस चेयर पर आप बैठते हैं उसको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहते हैं, और इस तरीके से ही डिज़ाइनिंग हमारी हर चीज़ में है। और डिज़ाइनिंग परस्यू करने के लिए 4 साल का कोर्स होता है BDES, जिसको कहते हैं बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन, जो मैं करने वाली हूँ। उसके लिए हम गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमारे पास 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, UCED, NID और NIFT। UCED एग्ज़ाम IIT बॉम्बे कंडक्ट करवाता है, जिससे हम IIT में डिज़ाइन पढ़ सकते हैं। NID से हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में डिज़ाइन पढ़ते हैं और NIFT से हम फैशन डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत मैंने YouTube पर वीडियोस बनाने से करी थी, तो मुझे हमेशा से ही देखकर बहुत शौक था। तो फिर मैंने 11th में अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया, उस पर मैं ये क्राफ्ट वाले वीडियोस डालने लगी और साथ ही साथ मैंने वर्कशॉप वगैरह भी होस्ट करी। अभी रिसेंटली मैंने एक वर्कशॉप होस्ट करी थी जिसमें मैंने फ्लावर्स, क्राफ्ट फ्लावर्स बनवाए थे और काफ़ी सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उससे भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि मैं इसको और कंटिन्यू करूँ, और उसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ। कुछ अगर कोई खरीदना चाहता है तो मैं उनको बेच भी देती हूँ, उससे भी हमारा इनकम स्ट्रीम जनरेट हो जाता है। मैं एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं हर चीज़ को ट्राई करती रहूँ और अपनी लिमिट को पुश करती रहूँ कि क्या इसमें मैं और बेटर कर सकती हूँ। इसलिए हर चीज़ जो भी मैं ट्राई कर सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो करूँ, और अगर उसमें मुझे सफलता मिलती है तो फिर मैं आगे कदम बढ़ाती हूँ। सब लोग कहते हैं कि हमें एक लक्ष्य बनाकर सिर्फ उसी पर ध्यान देना चाहिए, पर मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक फोकस बनाने के बाद भी कई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, हम क्या क्या और कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर हम एक कॉन्स्टेंट शेड्यूल बनाकर डिसिप्लिन से चीज़ें करें तो हम एक लक्ष्य पर भी फोकस कर सकते हैं और बाकी हमारे इंटरेस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी मैं वर्कशॉप होस्ट करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें उसमें ज़रूर रखूँ, कि हम रिपेयर पर ज़्यादा फोकस करें, रीयूज़ करने पे ज्यादा फोकस करें, नई चीजें खरीदने की जगह उन्हीं को सुधरवा के जब हम यूज करते हैं तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम रहता है और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहता है। एज अ डिजाइनर मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी मेरे डिजाइन हो उनको मैं इस तरीके से बनाऊं कि हमारे प्लैनेट पे उसका दुष्प्रभाव ना पड़े और पोल्यूशन जनरेट ना हो, रादर वेस्ट कम हो, ऐसे प्रोडक्ट्स में बनाना चाहती हूँ। जैसे कि अभी रिसर्च में काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल्स आ रहे हैं जिनको हम यूज़ करके सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि बायो प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक से अलग होता है और डिकम्पोज हो जाता है बट प्लास्टिक जैसा ही काम करता है। इस तरीके के और मटेरियल्स के बारे में मैं रिसर्च करूंगी और उनको यूज़ करके मैं प्रोडक्ट्स बनाऊंगी। अभी के समय में बहुत सारे लोग सामान खरीदते हैं और वो तुरंत यूज़ करके तुरंत ही फेंक देते हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि हम सब कोशिश करें और जो भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनको किसी नए तरीके से इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढें जिससे कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो। और हमारे भारतीय घरों में तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमने खुद भी देखी हैं कि हम कोई भी डब्बे को रियूज़ कर लेते हैं, पर आजकल इस तरीके की चीज़ें कम होती जा रही हैं। हम चाहते हैं कि हम वही चीज़ें इस्तेमाल करें और उनको फेंक दें और नई चीज़ें लेते रहें। ओवर कंजम्पशन जो हम करते हैं उससे वेस्ट भी बहुत जनरेट होता है और पुरानी चीज़ों को भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक फिलॉसफी है जो कि आप सबने सुनी होगी जिसको जापानीज टेक्निक है किंजुगी। तो होता क्या है कि जापान में अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि उसको सुधार सकें। जैसे कि अगर कोई प्लेट टूट जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि इसको कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल लगा के प्रिजर्व कर सकें। इसके लिए वो गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं और जो क्रैक्स है उसके बीच में गोल्ड डालकर उसको इस तरीके से जोड़ते हैं कि वो और मजबूत हो जाती है और लंबे टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। यही चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करनी है कि कोई भी चीज़ अगर खराब भी हो जाती है तो हम ये कोशिश करें कि उसको दोबारा से इस्तेमाल कर लें। इसी तरीके की टेक्निक्स को मैं अपने डिजाइनिंग करियर में भी यूज करने वाली हूँ और जो भी ये सब हो पा रहा है, जो भी मैं कर रही हूँ, ये सब मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे हर पॉइंट पे सपोर्ट किया है और इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। एक मैसेज मैं सबके मम्मी पापा को देना चाहती हूँ कि आपके बच्चों में जो हॉबीज है, जो पैशन है, उनको करने के लिए उन्हें सपोर्ट करें, हर पॉइंट पे उनका साथ दें जिससे कि उन्हें अपनी हॉबीज परस्यू करने का बढ़ावा मिले। और एक चीज मैं बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा कि वो जो भी कर रहे हैं वो उसे पूरे डिसिप्लिन के साथ करें। अगर कोई अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें डिसिप्लिन लाएं और अपनी हॉबीज को भी साथ साथ एक्सप्लोर करें। और एक और चीज मैं बच्चों के लिए पिन पॉइंट करना चाहूंगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपको अपनी हॉबीज फॉलो करने का अलाउ कर रहे हैं तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको डिसिप्लिन के साथ करें और जो भी फीडबैक मम्मी पापा देते हैं, एडवाइस वो देते हैं, उनको भी फॉलो करें और एक सेम पेज पर आएं, दोनों ही बैलेंस बनाकर चलें और वही हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। ये स्पेस मुझे मेरे मम्मी पापा ने दी और मैंने भी उनकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और उसके लिए मैं फिर से उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। और लास्ट में मैं सबको बेस्ट विशेस देना चाहूंगी। आई होप कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो सभी हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और अपनी सेल्फ वर्थ करना सीख जाएं। हम हमेशा दूसरों के वैलिडेशन के लिए भागते रहते हैं बट जब हम अपनी वैल्यू करना सीख जाएंगे तो बाकी के लोग भी हमें वैल्यू करने लगेंगे। बस यही इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी वर्थ को जानें और अपने ऊपर काम करते रहें और दूसरों के ओपिनियंस को भी पॉजिटिव वे में लेके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें। थैंक यू।

0: श्रोताओं, समय बदल रहा है और जीवन शैली और पारिवारिक रिश्तों में भी बदलाव देखो जा रहा है। ऐसे दौर में संयुक्त परिवार की जो परंपरा, आपसी अपनापन और रिश्तों की जो गर्माहट को महत्व होता है, वो और भी बढ़ जाता है। धुरा गांव के लोकगीत कलाकार और लोक गायक हरिदास जी अपने गीतों के माध्यम से समाज को ऐसे ही सकारात्मक संदेश देते आते हैं, फिर चाहे वो रिश्तों को हुए, चाहे वो पर्यावरण को हुए। आज के ए भाग में धुरा गांव के हरिदास जी से आप औरों की मुलाकात करवा रहे हैं और सुनते हैं संयुक्त परिवार और पारिवारिक मूल्यों पर हरिदास जी को का कहबो है।
1: हमारा नाम है हरिदास। हमारा गांव सागर से है लगभग 35 किलोमीटर के आसपास और जो दक्षिण दिशा में है सागर से लगभग। गांव का नाम है धुरा। हम खेती से जुड़े हैं, खेती को काम करते हैं, जिसमें निंदाई गुड़ाई है। और हमारे घर में हमारी माता हैं, पिताजी हैं, बड़े भाई हैं और एक छोटे भाई, एक बहन है, सबसे बड़ी है वे। और हम सब दीदी मिलजुल के ही रहते हैं, संयुक्त परिवार में हैं, सब मिलजुल के खेती करते हैं और सबको संग भोजन बनाते हैं एक ही चूल्हे से और सब एक संग ही बैठ के रोटी खाते हैं। तो हमारे तो संयुक्त परिवार में हैं। हमारा जो कि वो है कि सब जने अगर जीवन को आनंद लेने हैं तो संयुक्त परिवार से ज्यादा जुड़े रहे। अलग परिवार तो देखो आज के समय में जल्दी हो जाते हैं और कोई नौकरी पेशा है या कोई ऐसे घर में वाद विवाद हो जाए तो उसे एकीकरण हो जाते हैं। लेकिन अगर संयुक्त परिवार को आनंद लेने हैं तो अपने माता पिता भाई बंद परिवार से मिलके एक साथ भोजन करें तो वो आनंद ही अलग है, मजा आउट है। हमारे जो देहात में रहते और एक संग खेत में बैठा था जब निंदाई कर रहे और एक संग बातचीतें करते हैं सब घर के बारे में, परिवार के बारे में, तो वो को तो अलग ही एक जीवन को माने आनंद है। भाग दौड़ तो जरूरी है, आओ जाओ, बाहर जाओ, काम करो, नौकरी करो, लेकिन दूर रहवे से अपन परिवार से थोड़ी दूर हो सकते हैं। परिवार में तो दूर होते हुए भी अपन एक जगह अपने भाव विचार बने रहे, अगर तो हम अपने भाव से मिले रहे। हमारे माता पिता जब आए हम 15 दिन में 2 महीना में तो हम अच्छे भाव से मिले, सारी बातें अपने परिवार में बैठ के और बताएं, उनकी सुने, तो भले ही अपने काम से बाहर जाएं लेकिन जुड़े तो अपन परिवार ही से हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहर रह के कोई बात नहीं करते हैं, कोई अपनी जानकारी दे में परिवार से ने ले में, तो वे अलग ही रहते हैं भी तो बिल्कुल। और इसको असर जो है हमारे ऊपर जो रेडियो के माध्यम से आओ है, हम रेडियो सुना थे बहुत पहले से, तो अपने रेडियो में एक सुबह कार्यक्रम आउ थे सुबह सुबह के नाम से, उसमें बहुत अच्छी चर्चा सुनवे में मिलत है जो जीवन जीवे में बहुत लाभकारी है। और कभी कभी और अन्य कार्यक्रमों में भी अच्छे लोगों से ऐसी अच्छी चर्चा मिलत है सुनवे के लाने के वो हो अपने जीवन में वो को आत्मसात करवो। हम तो करत हैं दीदी, वैसे हमारो माने अभी तक सब जो परिवार अच्छो चल रहा हो और हम सब हिल मिल के रहते हैं और रोग भी नहीं है हमारे घर में कोई ऐसे के कोई रोग ग्रस्त हो, कहा है कि हंसते खेलते रहते हैं तो ये चीजें ऐसे खुल के जीवन जियो तो कम प्रभाव रहता है रोग दोगों को भी। हम जाई अनुसरण करते हैं कि हम संयुक्त परिवार में रहते हैं और हम जाई सबसे कौ चाहते कि सब संयुक्त परिवार में रहें। हम और गांव में तो रहते हैं बचपन से और हमें गाने को भी शौक है और हम लोकगीत भी लिखा थे को भी हमें शौक है। सो बस ऐसा ही है, सो हम लिखा थे सो एक लोकगीत आप सबाई को सुना रहे हैं। ये गीत को हम ही नहीं लिखो है जी, वो शेरे की तर्ज में है, जैसे वो बसकारे के समय में गीत गाओ जाते हैं तो उस शेरे की तर्ज पे वृक्ष वृक्षारोपण पे गीत है अपनो। असेरा तो लागे रे, अरे तुम वृक्षा लगाई हो, दस नींबू दस आम बरछों से, अरे पानी बरसे हो, इनसे मौसम में आवे बहार, इनसे मौसम में आवे बहार, बिरछा लगाओ रे, अरे इनसे मिलवे जीवन को सार, के थाई मिली की भूलो ने बात, ए इनकी चटनी से भोजन में आवे स्वाद, ए इनकी चटनी से भोजन में आवे स्वाद। अमरूद के फल तुम्हें खाइयो रे, अरे तुम्हें हार से लाइयो टोर। अमरूद के फल तुम्हें खाइयो रे, अरे तुम्हें हार से लाइयो टोर। पेट की खराबी करें जे दूर, ए विटामिन सी की कमी खो करें भरपूर। असड़ा में अरे जामुन पके हो, मऊआ टपके चेत के मास। असड़ा में अरे जामुन पके हो, मऊआ टपके चेत के मास।

पास, अरे घाम से है अरे राहत मिले हो, ए इनकी गहरी हो वे छा।

0: खुदा से आम बरछों से अरे पानी बरसे हो ए इनसे मौसम में आवे बहार ए इनसे मौसम में आवे बहार। तो हम यही कहो चाहते हैं कि सब जने ज्यादा नहीं तो दो पेड़ जरूर लगाएं। अब मौसम भी चल रहा है बसकारे को और ये मौसम में पेड़ लगाओ तो जल्दी लग जाते हैं, तो जरूर लगाएं और उनकी देखभाल करके उनको जब तक वे बड़े न हो जाएं तब तक उन्हें अपने घर माने बच्चों जैसी परवरिश करें, उन पर ध्यान जरूर दें। कि सब श्रोताओं आकाशवाणी को भी हमारी तरफ से नमस्कार।
1: इस सप्ताह चर्चा में
2: भगवान श्री जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इस वर्ष 16 जुलाई 2026 से उड़ीसा के पुरी धाम में आरंभ हुई। इस भव्य धार्मिक उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा में शामिल होकर रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ये यात्रा केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि प्रेम, समानता, सेवा और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का भी अद्भुत उत्सव है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के सागर केंद्र की साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। इस रेडियो पत्रिका का संकलन और निर्माण अदिति जैन का था।
1: गागर में सागर।
3: अभी आप सुन रहे थे रेडियो पत्रिका कार्यक्रम गागर में सागर। संकलन व निर्माण था अदिति जैन का। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए गीतों और गजलों का कार्यक्रम संगीत सरिता। आज इसमें सुनेंगे हरी हरन की गाई चंद गजलें। तो लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये गजल।

0: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-222। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-222। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए सुनते हैं हरिहरन जी से ये एक और गजल।

हरिहर की गाय इस गजल के साथ ही संगीत सरता का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
1: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
5: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है, वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय

0: लिखा है, पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं, जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी, लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ, पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड, श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है, नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए, खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित, और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं अजिदी दास कबीरपंथी से ये लोक भजन।

0: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-00। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
4: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
5: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
3: बात बन जाए,
5: 287 मेरी चाय।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: लोक संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए सुनते हैं हल्लन भाई और साथियों से ये चौकड़िया।

हलन भाई और साथियों के गाए इस चौकड़िया के साथ ही लोक संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सावित्री शिक्षा निकेतन सागर।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सावित्री शिक्षा निकेतन स्कूल भूतेश्वर मंदिर के पास संत रविदास वार्ड सागर। बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बच्चों मुस्कुराइए, सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। हर दिन को ज्ञान और खुशियों का दिन बनाइए। और हाँ बच्चों, जहाँ भी हैं जल्दी जल्दी आइए, बाल सभा में आकर कार्यक्रम के हर क्रम को सजाइए। सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात। कार्यक्रम बाल सभा सुन रहे तमाम श्रोताओं को और हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बच्चों, आपका पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा लेकर आज आपके बीच है आपकी सुनंदा दीदी। हाँ बच्चों, बारिश की रिमझिम बूंदों के साथ हम आपसे मिलने आए हैं। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। हाँ भाई हाँ, बाल धमाल भी शुरू होगा। आपका भी बाल धमाल तो शुरू हो चुका होगा, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश। सुनिए सुनिए सुनिए। क्या आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक उत्कृष्ट विद्यालय की तलाश में हैं? तो प्रवेश प्रारंभ है सावित्री शिक्षा निकेतन स्कूल सागर भूतेश्वर मंदिर के पास संत रविदास वार्ड सागर। कक्षा नर्सरी से 10वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, अनुभवी शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षा और संस्कार युक्त वातावरण। आज ही संपर्क करें 9310435833। सावित्री शिक्षा निकेतन स्कूल सागर, शिक्षा संस्कार और सफलता की पहचान। बच्चों ये क्या, बाल सभा सुनने के लिए इतनी धक्का मुक्की? यही कह रहे ना, अरे अरे अरे अरे अरे, रेडियो के पास हम बैठेंगे, अरे तुम भी बैठो। वाह भाई वाह। बच्चों महसूस करके ही आनंद आ गया हमें तो, कि हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता बाल सभा कार्यक्रम के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। हाँ अभी तो आप बच्चों का बाल धमाल भी चल रहा होगा, है ना बच्चों? और क्यों ना चले भाई, रविवार जो है, लगता है रविवार तो आप सबका सबसे प्यारा दोस्त है, है ना बच्चों? लेकिन केवल बच्चों का ही नहीं, मम्मी पापा, शिक्षक, डॉक्टर, पुलिस, दुकानदार, लगभग हर किसी को रविवार का इंतजार रहता है। बच्चों क्यों रहता है, सोचा कभी? अरे क्योंकि हम पूरे सप्ताह काम करते करते, पढ़ाई करते करते थक जाते हैं। हमारे दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है और आराम करने से हम अगले सप्ताह फिर से पूरे जोश और नई ऊर्जा के साथ काम कर पाते हैं। और अपने परिवार के साथ भी तो समय बिताने के लिए और परिवार के साथ घूमने के लिए ये रविवार आता है। लेकिन बच्चों सच में तो छुट्टी वह है जिसमें हम कुछ नया सीखें, खेलें, किताबें पढ़ें, माता पिता की मदद करें काम में। और हाँ बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम है ये, तो इसमें बागवानी भी आप कर सकते हैं। यही सब काम के बाद हम एक बार फिर से चार्ज हो जाते हैं, एनर्जी आ जाती है ना बच्चों। और चलिए देखो, बाल धमाल के चलते एक हो जाए मनोरंजक बात, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों या ऐसा ही क्यों? बच्चों हर बात या हर चीज को देखकर आपके मन में भी बहुत से विचार तो आते ही होंगे। अच्छा सोचो तो कि 15 जून के बाद बारिश का अंदेशा क्यों कहा जाता है? अक्सर आपने कहते सुना होगा ना कि हाँ 15 जून के बाद बारिश आ जाएगी, स्कूल खुल जाएंगे, सुनते हैं ना बच्चों? दरअसल बच्चों भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जून के आसपास केरल तट पर पहुंचता है और इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में आगे बढ़ता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ 15 जून के बाद मानसून पहुंचने लगता है। बस बच्चों इसीलिए ऐसा कहा जाता है। अब बच्चों कभी कभी आपको भी तो ये लगता होगा ना कि ये जुलाई का महीना सुहावनी बारिश का मौसम तो ले आता है, लेकिन स्कूल भी तो जाना होता है ना बच्चों? आपका सोचना बिल्कुल ठीक है बच्चों, पर जुलाई का महीना हमें प्रकृति की सुंदरता दिखाता है। बारिश से पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, किसानों की फसलें अच्छी होती हैं, वातावरण ठंडा और सुहाना हो जाता है। लेकिन बच्चों अपनी पढ़ाई का हमें विशेष ध्यान रखना है, नियमित रखना है अपनी पढ़ाई, चाहे बारिश हो या धूप, समय पर स्कूल जाना है। और देखिए हम भी अपना कार्यक्रम समय पर लेकर आते हैं और हर क्रम समय पर आपको सुनवाते हैं अच्छी अच्छी जानकारी। और कुछ क्रम ऐसे होते हैं जिनमें हम मुलाकातें भी करते हैं। बच्चों ये तो आपसे चर्चा हो गई, हमने आपसे बहुत सी चर्चा भी कर ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में हम बाल मंच भी तो लगाते हैं ना। जैसा कि हमने कहा ना कि हम हर क्रम सजाते हैं जिसमें एक से बढ़कर एक होनहार बच्चे अपने हुनर को निखारते हैं। स्कूल के बच्चे तो अपनी गीत कविताओं से अपने स्कूल का नाम भी रोशन करते हैं। तो बच्चों आज भी हमारे कार्यक्रम का बाल मंच सजा हुआ है स्कूल के विद्यार्थियों से। हाँ आइए सुनते हैं इनकी प्यारी प्यारी बातें।
1: ओ लेकर आए बच्चों का शो
2: बाय मंच।
0: सुनिए सुनिए सुनिए, क्या आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक उत्कृष्ट विद्यालय की तलाश में हैं? तो प्रवेश प्रारंभ है सावित्री शिक्षा निकेतन स्कूल सागर, भूतेश्वर मंदिर के पास, संत रविदास वार्ड सागर, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, अनुभवी शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षा और संस्कार युक्त वातावरण। आज ही संपर्क करें 9310435833। सावित्री शिक्षा निकेतन स्कूल सागर, शिक्षा संस्कार और सफलता की पहचान। और लीजिए प्यारे बच्चों, अब हम आपके बीच आ चुके हैं और आप हैं बाल मंच में। जी हाँ, बाल मंच में आज आपके साथ हैं बहुत ही प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे सितारे, ये चमकते दमकते सितारे। और बरसात का मौसम है तो ये तो जुगनों की तरह चमक रहे हैं। क्यों भाई, ये नन्ही सी गुड़िया जो हमारे बीच में है, चलिए जानते हैं कि इनका प्यारा सा नाम क्या है।
3: माय नेम इज अनन्या विश्वकर्मा, आई स्टडी सेकंड क्लास।
0: तो अनन्या, ये बारिश का मौसम है तो इस बारिश के मौसम में आपका मन होता है स्कूल जाने का?
3: यस मैम।
0: आनाकानी तो नहीं करती मम्मी से?
3: नो मैम।
0: ऐसा तो नहीं कहती नहीं नहीं पानी आ गया अब हम नहीं जाएंगे, आज तो हम छुट्टी मनाएंगे, बोलती है क्या?
3: नो।
0: अरे भाई बोलती है, कभी कभी तो बोलती होंगी। देखिए पकड़ी गई ना अनन्या। चलिए कोई बात नहीं अनन्या, आज अपने साथियों के लिए क्या सुनाने जा रही हैं आप?
3: पानी वर्षा चम चम चम छाता
0: लीजिए। पानी बरसा, आज भी पानी बरसा है?
3: नो मैम।
0: अरे हो सकता है कि कहीं बरसा हो पानी।
3: पानी बरसा चम चम चम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, छाता नीचे ऊपर हम।
0: नन्या हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो लीजिए बच्चों, नन्ही सी गुड़िया हमारे बीच है तो सबसे पहले अपना नाम बताइए।
4: माय नेम इज काव्या घोषी।
0: काव्या जी, वाह भाई वाह। काव्या तो कविताएं तो बहुत अच्छी बोलती होंगी आप।
4: जी दीदी।
0: आज अपने साथियों के लिए क्या लेकर आई हैं आप?
4: मैं पोयम।
0: चलिए अच्छी बात है। तो काव्या किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
4: आई स्टडी इन फर्स्ट क्लास।
0: वाह भाई वाह, क्या बनना चाहेंगी आप बड़े होकर?
4: मैं आर्मी।
0: आर्मी में जाना चाहती हैं?
4: यस दीदी।
0: अनुशासन प्रिय लगती हैं आप। अच्छा बताइए तो स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना जाता है?
4: ताकि हम सब बच्चे एक जैसे लगे, किसी में भेदभाव ना हो।
0: चलिए आपके बहुत ही अच्छे विचार हैं। काव्या जी अपनी पोयम भी सुना दीजिए आप।
4: काले काले बादल आए, उमड़ घुमड़ के बादल आए, छम छम छम छम जल को बरसाया, उड़ उड़ के भी बादल आए।
0: चलिए काव्या जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने बहुत ही प्यारी बातें की और बहुत ही अच्छी आपने पोयम सुनाई। चलिए आपके और साथियों से मुलाकात कर लें हम।
4: यस दीदी।
0: कौन आया है आपके साथ में?
4: राधिका।
0: तो चलिए अब राधिका जी से हम मुलाकात करते हैं।
5: दीदी मेरा नाम राधिका है।
0: किस क्लास में पढ़ती है राधिका?
5: मैं थर्ड।
0: तो कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई?
5: अच्छी।
0: आपको लगता है राधिका कि बारिश का जो मौसम है ये हमारी पढ़ाई पे असर डालता है? आपके क्या विचार हैं?
5: यस मैम।
0: कैसे पड़ता है बताओ तो जरा।
5: जब बारिश होती है मन घूमने का भी करता है, बारिश के कारण हमारे स्कूल का भी नुकसान हो जाता है।
0: अच्छा, तो आप स्कूल नहीं जा पाती है ना, तो आपकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। लेकिन राधिका, हमें अपने घर में भी तो पढ़ाई करना चाहिए ना, तो घर में किस तरह से आप पढ़ाई करती हैं?
5: टाइम टेबल बनाकर।
0: कौन पढ़ाता है आपको?
5: दीदी।
0: चलिए राधिका जी, बहुत अच्छी बातें आप कर रही हैं। मन तो हो रहा है कि बातें करें, लेकिन क्या करें, ये बच्चे हैं ना, आपके जो साथी हैं ना, ये आपसे कुछ और सुनना चाहते हैं। क्या सुना रही हैं इन्हें?
5: कविता।
0: चलिए हम आपका स्वागत करते हैं।
5: खीरा गाजर लाल टमाटर बनेंगे, उसको खा कर खा ना करना तो मनमानी, पी लो जाकर नींबू पानी।
0: हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप भी बिल्कुल आनाकानी ना करें और शौक से जाइए और नींबू पानी पीजिए। तब तक हम मुलाकात करते हैं आपके एक और साथी से।
5: जी दीदी।
0: चलिए जल्दी से अपने साथियों को अपना नाम बताइए।
6: मेरा नाम है रितिका विश्वकर्मा।
0: रितिका किस क्लास में पढ़ रही है?
6: आई स्टडी इन थर्ड क्लास।
0: आपको देखकर तो हमें लग रहा है रितिका कि आप खेल कूद में बहुत आगे हैं। खेलती हैं आप?
6: हाँ।
0: क्या खेलती हैं आप?
6: हाइड एंड सीक।
0: कितने बच्चे होते हैं उसमें?
6: बहुत सारे।
0: बहुत सारे, तो सबसे दोस्ती हो जाती है आपकी?
6: हाँ।
0: तो ये तो बताइए कि खेल हमें क्या सिखाते हैं?
6: दीदी खेल हमें एक साथ मिलकर रहना सिखाते हैं, विचारों का आदान प्रदान भी होता है, हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है।
0: शारीरिक और मानसिक विकास होता है खेलों से, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छे विचार हैं आपके, अच्छी जानकारी है आपको खेलों के बारे में कि खेल हमें क्या सिखाते हैं, खेल का मैदान हमें क्या सिखाता है। चलिए तो आप अपने साथियों को आज क्या सिखाने आई हैं?
6: कविता।
0: कविता सिखाएंगे अपने साथियों को, चलिए सुनते हैं मिलकर।
6: बह सकती हमें दो ध्यान निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर में उपकार निज जीवन बन जाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम रितिका जी आपका। अरे अरे बच्चों बच्चों, कहाँ जा रहे हैं आप, जरा इधर तो आइए। अरे आपको पता है?
7: क्या दीदी?
0: आपको पता होना चाहिए कि आज आपसे मिलने कौन आया है।
7: कौन आया है?
0: बच्चों आप बड़े उत्सुक है ना उनसे मिलने के लिए?
7: हाँ दीदी।
0: हम तो जान रहे हैं, इसीलिए तो इतनी मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर। हाँ हाँ हाँ हाँ, अरे भाई इतनी मुस्कुराहट है, और आपकी दीदी भी बड़ी प्यारी प्यारी है, अच्छी मुस्कुराते हुए चली आ रही है अपने बच्चों से मिलने के लिए। तो चलिए हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: बच्चों आपके बीच आ चुकी हैं आपकी सुब्रता दीदी। स्वागत कीजिए दीदी का तालियों से।
1: हेलो बच्चों।
2: हाँ दीदी।
1: अरे बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे आए हुए हैं। अरे वाह, देखिए तो अभी हमसे बात करने कौन आ रहा है। क्या नाम है बेटा आपका?
3: जयेश कुर्मी।
1: जयेश जी बताइए, आज हमारे बच्चों को आप क्या सुनाएंगे?
3: मैं गीत सुनाऊंगा।
1: गीत सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाइए।
3: देश तंग रह रहता है, देश तंग रह रहता है, हम सबको बताते, हम सबको ये बताता है, मिट्टे बतान की आन पर, इस चंडे की शान पर, रखे सीना तान के, बच्चे हिंदुस्तान के।
1: वेरी गुड। जयेश जी ये बताइए, आपको सबसे अच्छा जैसे खाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, या क्या करना अच्छा लगता है?
3: पढ़ाई करना।
1: पढ़ाई करना। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है?
3: मेरा मैथ।
1: आप तो बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, यानी है ना, पढ़ाकू होना बहुत अच्छी बात है, हंसने वाली बात नहीं है। अच्छा जयेश जी, आप इतना पढ़ने में तेज हैं, ये बताइए अगर आपको हम एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दें स्कूल का, तो आप क्या करेंगे, क्या नियम बदलेंगे, क्या करना चाहेंगे? बताइए बताइए बताइए।
3: अच्छे से पढ़ाएंगे,
1: सबको पढ़ाएंगे। खेल का पीरियड लगने देंगे कि वो भी बंद कर देंगे?
3: वो बंद कर देंगे।
1: नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, है ना?
3: Yes.
1: बताइए आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं?
3: मैं आर्मी ऑफिसर।
1: बहुत अच्छा।
3: Yes.
1: थैंक यू। अरे हमारी एक प्यारी सी गुड़िया और आ गई है स्कूल यूनिफॉर्म में। बताइए आपका नाम क्या है?
4: माही।
1: माही किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
4: आई स्टडी इन फिफ्थ क्लास।
1: माही आज हमारे बच्चों को आप क्या सुनाएंगी?
4: जी सुनाऊंगी।
1: सुनाइए।
4: सबसे सुंदर देश हमारा, हम तो है प्राणों से प्यारा, हमने मिलकर लूप सवारा, इसे मनाया चस्नियार।
1: वेरी गुड। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने मिलकर इस देश को बनाया है, और हमारे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे बच्चे हैं, इस देश का भविष्य हैं। बताइए माही आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं?
4: पुलिस।
1: तो चोरों को पकड़ेंगी आप?
4: हाँ।
1: आप खेल कौन सा खेलती हैं घर में?
4: टीचर। टीचर।
1: माही जी एक और बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई शक्ति होती, तो आप कौन सी शक्ति चाहती हैं, क्या करना चाहेंगी?
4: पहलवान बनने के लिए।
1: पहलवान बनने वाली है। चलिए बहुत अच्छा है, इन शक्तियाँ हम सुपर पावर्स बोलते हैं इनको। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसी सुपर पावर होती कि मैं गायब हो जाती, कैसा होता? या मैं उड़ लेती तो कैसा होता? अच्छा होता ना। चलिए माही जी आप हमारे स्टूडियो में आई, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, आपका धन्यवाद।
4: थैंक यू दीदी।
1: थैंक यू। देखते हैं अब कौन सा नन्ना नन्ना प्यारा प्यारा बच्चा आने वाला है। अरे वाह, एक प्यारी सी गुड़िया आ गई है हमारे स्टूडियो में, तो एकदम नीट एंड क्लीन है ना। क्या नाम है आपका?
5: काव्या कोरी।
1: आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
5: आई स्टडी इन फोर्थ क्लास।
1: कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है?
5: साइंस।
1: साइंस में फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है। हमने पौधों के बारे में पढ़ा होगा, और ये भी देखा कि पौधे जो हैं उनमें प्राण होते हैं। साइंस में हमने पढ़ा ना पौधों में जान होती है। कभी कल्पना कीजिए कि अगर पौधे बात करने लगे, प्राण तो है उनमें, बस वो बोल नहीं पा रहे, मान लीजिए हम उनकी बात सुन पाते तो वो क्या बात करते? बोलो बोलो
3: दीदी। दीदी हम बताएं?
1: हाँ हाँ बताइए।
3: उन्हें जो चाहिए वो दे ले सकते थे और हमें भी दे सकते। वो कहते कि मुझे पानी दे दो और मुझे काटो मत।
1: हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने, सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे काटो मत। परोपकारी है, वो तो सब कुछ देते हैं हमको, पर फिर भी बहुत सारे मनुष्य पेड़ों को काटते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने बेटा। आपका क्या नाम है?
6: आयशा।
1: आयशा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम काव्या जी से दोबारा बात करते हैं। काव्या आप बताइए आज हमारे कार्यक्रम में आप क्या सुनाएंगी?
6: कविता।
1: सुनाइए।
6: सिंहासन लुटे राजवंशों ने व्यक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी 1857 में यह तलवार पुरानी थी, बुंदेली हर बोलो के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वादी रानी।
1: बहुत बढ़िया। आपको पता है इस कविता की लेखिका कौन है?
6: हाँ सुभद्रा कुमारी चौहान।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी कविता है ये और बहुत प्रेरणादायक है। आपने पढ़ा है झांसी की रानी के बारे में?
6: जी दीदी।
1: क्या नाम था उनका?
6: रानी लक्ष्मीबाई।
1: चलिए काव्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बच्चों आ गई है हमारी एक और नन्ही सी मेहमान हमारे बाल मंच में। बताइए आपका नाम क्या है?
7: भूमि विश्वकर्मा।
1: भूमि जी आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
7: सिक्स।
1: तो भूमि जी आज हमारे कार्यक्रम में आप क्या सुनाएंगी?
7: गीत।
1: सुनाइए। अच्छा आपके साथ कोई और भी गाने के लिए आ रहा है। आयशा जी हम आपके साथ मिलके गाएंगी यानी, है ना? ठीक है गाइए।
2: भारत माता का सपूत आजादी का दीवाना था,
8: हंसकर झूल गया फांसी।

पर भरत सिंह मस्ताना था। नौजवान था वह पंजाबी गजब शेर के दिलवाला, देश प्रेम का रस पीकर बना हुआ था मतवाला। दिन में चैन नींद रात में उसको कभी न आती, दिन में चैन नींद रात में।

0: खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। अच्छा बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: खेलना।
0: क्या खेलती हैं आप?
1: खो खो।
0: अच्छा एक चीज बताइए कि जब कभी आप गुस्सा होती हैं या उदास होती हैं तब क्या करती हैं? देखिए खुश होते हैं तब सब खेलते हैं, पर गुस्से में या उदासी में क्या करती हैं?
1: पढ़ाई।
0: अरे वाह, ये तो अलग ही बात है। गुस्से और उदासी में आप पढ़ाई करती हैं?
1: यस।
0: तो ये अच्छा आपने बता दिया। अब आपकी मम्मा पापा रेडियो सुन रहे होंगे, वो समझ जाएंगे कि इनसे पढ़ाई करानी है तो पहले इनको डांट दो, ये गुस्सा हो जाएंगे उदास हो जाएंगे फिर पढ़ने लगे, है ना? अच्छा आपने सुपर हीरोज वाली मूवीज देखी है?
1: हाँ।
0: आपको कौन सा सुपर हीरो अच्छा लगता है?
1: स्पाइडरमैन।
0: आयशा जी आपको?
1: स्पाइडरमैन।
0: दोनों को स्पाइडरमैन पसंद है। अच्छा अच्छा बताइए आप लोगों को जानवर अच्छे लगते हैं? आपको सबसे अच्छा जानवर कौन सा लगता है?
1: रैबिट। डॉग।
0: अगर आपका डॉग आपसे बात करता तो क्या कहता?
1: उसको जब चाहिए वो खाना खा सकता है, जब खेलना हो तो खेल सकता है।
0: आप अपने रैबिट का क्या नाम रखती हैं? अगर आपके पास रैबिट होता तो उसका नाम क्या रखती?
1: लियो।
0: लियो, वेरी गुड। चलिए आयशा जी और भूमि जी आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ कि आप अपने सपनों को पूरा करें और हमारे कार्यक्रमों में यूं ही आते रहें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यूं ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुक्रिया दीदी।
3: लीजिए बच्चों, दीदी तो चली गई।
4: दीदी दीदी रुकिए तो जरा।
3: अरे नहीं नहीं बच्चों, सुब्रता दीदी को अभी बहुत से बच्चों से मुलाकात करने जाना है। आप ही की तरह प्यारे प्यारे बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब हम और आप मिलकर एक बार फिर मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताएंगी आप हमें?
5: माय नेम इज जूहिया हरवार।
6: माय नेम इज कृष्णी प्रिया यादव।
3: तो आज आप दोनों मिलकर कुछ सुनाने जा रही हैं क्या?
5: Yes,
3: दीदी। देशभक्ति का जज्बा है ना, एक कदम आप रखेंगे देशभक्ति के लिए तो आपके साथ हजारों कदम हो जाएंगे।
5: हाँ दीदी, जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा।
3: तो बच्चों हम सब मिलकर सुनते हैं इनसे एक प्यारा सा गीत।

0: कुर्बानी।
1: ये है ना, हमें अपने वीर शहीदों को याद करना चाहिए। और बस अगले ही महीने हम स्वतंत्रता दिवस भी तो मनाएंगे, है ना?
2: हाँ हाँ दीदी। दीदी अभी हमारे साथ ही तो हैं, उनसे तो हम मुलाकात करेंगे, लेकिन दीदी एक प्यारा सा गीत तो सुनवा दीजिए।
1: हाँ भाई, हाँ बच्चों, क्यों नहीं, आप अगर चाहते हैं कि दीदी की तरफ से भी आपको एक गीत सुनवाया जाए तो बच्चों तैयार है ना?
0: हाँ हाँ दीदी।
1: चलिए मिलकर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: और आ चुके हैं। शायद ये भी कुछ एक साथ मिलकर ही सुनाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका?
1: समर्थ सोनी।
0: और आपका?
2: नमन विश्वकर्मा।
0: समर्थ, आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं?
1: 6th स्टैंडर्ड।
0: और नमन, आप?
2: 6th स्टैंडर्ड।
0: अच्छा, नमन और समर्थ बड़े ही प्यारे नाम है आपके। आपको आपका नाम अच्छा लगता है?
1: जी हाँ दीदी, जी हाँ दीदी।
0: तो बताइए समर्थ और नमन, आप अभी क्या इन दिनों क्या कर रहे हैं? जैसे जुलाई का महीना है, तो जुलाई के महीने में आप क्या क्या करते हैं?
2: मैं स्कूल जाता हूँ और हर दिन खेलता हूँ।
0: और आप क्या करते हैं समर्थ?
1: मैं भी स्कूल जाता हूँ, खेलता हूँ, पढ़ता हूँ।
0: और जैसे ये जुलाई का महीना है, तो अभी देखिए त्योहार भी बहुत सारे शुरू हो जाएंगे, तो त्योहारों का आनंद भी लेते हैं ना?
1: जी हाँ दीदी,
2: जी हाँ दीदी।
0: तो ये त्योहार हमें क्या सिखाते हैं?
1: भाईचारे और प्रेम भाव से रहना सिखाते हैं, एकता का संदेश देते हैं।
0: बहुत जानकारी आप रखते हैं। तो समर्थ और नमन, अब अपने साथियों को क्या लेकर आए हैं आप?
2: देश ने दिया हम सबको सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज देता हमें रोशनी, हवा नया जीवन देती है, हम सबकी भूख मिटाने धरती पर होती खेती।
0: हाँ, तो जिस तरह प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, धूप भी मिलती है, आपको पता है ये जो धरती है इसके नीचे क्या क्या है?
1: हाँ दीदी, बहुत सारा अनमोल खजाना है।
0: तो जरा बताइए तो कौन सा अनमोल खजाना है? बोलो।
1: बहुत सारे खनिज मिलते हैं हमको, लोहा, स्टील, सोना, चांदी, इन सब की खदाने हैं।
0: हाँ बच्चों, सही पहचाना आपने, ये धरती हमें बहुत कुछ देती है। हमारे भारत में बहुत सारी खदाने हैं, है ना?
1: जी हाँ दीदी।
0: अच्छा, आप बाल सभा सुनते हैं ना?
1: हाँ दीदी।
0: आप बाल सभा जब सुनते हैं तो उसमें एक झांकी हिंदुस्तान की, ऐसा एक क्रम आता है, तो आपकी दीदी आपको हर बार बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सुनाती हैं कि हमारे भारत में क्या क्या है, है ना? आज तो हमने बच्चों से ही बात कर ली कि हमारे भारत में क्या क्या है। तो क्या है बच्चों? हमारे भारत में अनमोल खजाना है धरती के नीचे, यानी भारत में भिन्न भिन्न तरह की खदाने हैं। बहुत सारी बिल्डिंग बनती है, और जो आपकी मम्मी गहने पहनती है ना, है ना?
1: हाँ,
0: तो वो जो गोल्ड रहता है उसकी भी खदाने होती हैं।
1: जी दीदी।
0: तो कितनी अच्छी बात है ना कि सब कुछ हमारे भारत में, और हीरा की तो खदाने आपने देखी होगी ना, कहाँ है? अच्छा बताओ तो जरा।
2: हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है,
0: पन्ना जिले में, है ना? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: अरे दीदी, सुब्रता दीदी भी तो आई थी हमारे साथ।
0: मजा आया ना उनसे भी बात करके?
2: जी हाँ दीदी।
0: क्यों बच्चों, मजा आया ना आज?
1: जी दीदी।
0: आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे स्टूडियो में आए, हमने आपसे मुलाकात की। अब देखिए ना, समय हो गया है जाने का, रविवार है, छुट्टी का दिन है ना बच्चों? जिस तरह आप बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे दीदी को भी लगता है कि हम भी घूमने जाएं। ठीक है बच्चों?
2: जी हाँ दीदी, जब हम समय के साथ चलेंगे, जब ही तो हम समय हमारा साथ देगा।
0: तो अब तो भाई हमें जाना ही पड़ेगा। इतनी अच्छी गहरी बात इन्होंने बता दी कि समय तभी हमारा ध्यान रखेगा जब हम समय का ध्यान रखेंगे।
3: दीदी, हमें वो प्यारी प्यारी कविता बोलने जो मिली, हम तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: चलिए, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची इतनी खुश हुई है आज हम सभी से मुलाकात करके, और सभी बच्चों की रौनक ये बता रही है कि आपको बाल सभा में आकर बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, हम आपसे अनुमति चाहेंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सुनिए सुनिए सुनिए, क्या आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक उत्कृष्ट विद्यालय की तलाश में हैं? तो प्रवेश प्रारंभ है सावित्री शिक्षा निकेतन स्कूल सागर, भूतेश्वर मंदिर के पास, संत रविदास वार्ड सागर, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, अनुभवी शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षा और संस्कार युक्त वातावरण। आज ही संपर्क करें 9310435833। सावित्री शिक्षा निकेतन स्कूल सागर, शिक्षा, संस्कार और सफलता की पहचान।
4: लेकर आए बच्चों का शो।
1: बाय मंच।
0: बच्चों, इसी के साथ समय हो चला है, तो आप सभी सुनंदा दीदी के साथ मिलकर बोलिए जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सावित्री शिक्षा निकेतन स्कूल भूतेश्वर मंदिर के पास संत रविदास वार्ड सागर।

0: अरे वाह दीदी, गीत तो बड़ा अच्छा था।
1: बहुत अच्छा लगा, मजा आया ना?
0: हाँ दीदी।
1: चलिए अब आपके और साथियों से हम मुलाकात कर लें। तो चलिए बच्चों, गीत भी आपने सुन लिया, अब हमारे बीच आपके दो साथी और

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
2: बातें
3: जंगल से।
1: बातें जंगल से, श्रोताओं इस प्रोग्राम में बातचीत होगी प्रकृति के तत्वों से।
4: साथियों, आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भेड़िया। नमस्कार भेड़िया जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए ना।
5: नमस्कार साथियों, मैं भेड़िया हूँ। कहानियों में मुझे कई बार डरावना दिखाया जाता है, लेकिन असली जंगल में मैं बहुत समझदार, सतर्क और सामाजिक जीव हूँ। सामाजिक का मतलब है कि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। हमारे समूह को पैक कहा जाता है। इस पैक में माता पिता, बच्चे और बड़े सदस्य मिलकर रहते हैं। हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और भोजन खोजने में साथ देते हैं। मैं कुत्ते जैसा दिख सकता हूँ, लेकिन मैं वन्य जीव हूँ और जंगल के नियमों के अनुसार रहता हूँ। मुझे खुले घास के मैदान, झाड़ियाँ और शांत जंगल पसंद है। मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ और मेरी सूंघने की शक्ति भी तेज होती है। मैं बिना कारण लड़ाई नहीं करता। मेरा काम प्रकृति में संतुलन बनाए रखना है, इसलिए मुझे खलनायक नहीं, जंगल का जरूरी सदस्य समझिए। मेरे बारे में एक और बात जानिए, मैं परिवार से बहुत जुड़ा रहता हूँ। पैक में छोटे बच्चों को बड़े सदस्य सुरक्षा देते हैं और उन्हें शिकार, रास्ते पहचानना तथा खतरे से बचना सिखाते हैं। यह बिल्कुल परिवार और स्कूल जैसा ही है, जहां बड़े लोग बच्चों को जीवन के नियम बताते हैं। इसलिए मुझे केवल डर की नजर से देखना ठीक नहीं, मेरे अंदर भी सहयोग, अनुशासन और परिवार प्रेम होता है।

0: अच्छा भेड़िया जी, अब ये बताइए कि आपकी इस प्रकृति में क्या भूमिका है।
1: प्रकृति में मेरी भूमिका एक स्वास्थ्य रक्षक जैसी है। मैं जंगल में कमजोर, बीमार या बहुत बूढ़े शाकाहारी जानवरों का शिकार करता हूँ। इससे शाकाहारी जानवरों की संख्या संतुलित रहती है और बीमारियां बहुत तेजी से नहीं फैलती। अगर कोई भी शिकारी ना हो तो हिरण, नीलगाय या दूसरे शाकाहारी जानवर बहुत बढ़ सकते हैं। फिर वे घास, पौधों और छोटे पेड़ों को जरूरत से ज्यादा खा सकते हैं। इससे जंगल के नए पौध नहीं बचेंगे और मिट्टी भी खुली रह जाएगी। मैं यह काम किसी क्रूरता से नहीं करता, यह प्रकृति का नियम है। हर जीव का एक काम होता है। मेरा काम है जंगल को स्वस्थ और संतुलित रखना, ताकि घास,

0: हमने सुना है कि लोग अक्सर आपसे डरते हैं, क्या ये सही है?
1: जी, डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। कई पुरानी कहानियों और फिल्मों में भेड़िये को बहुत डरावना दिखाया गया है, इसलिए लोग मुझे देखते ही घबरा जाते हैं। असल में मैं इंसानों से दूर रहना पसंद करता हूँ। मेरे लिए जंगल, घास के मैदान और परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बिना कारण किसी पर हमला नहीं करना चाहता, क्योंकि हर संघर्ष मेरे लिए भी खतरा बन सकता है। फिर भी बच्चों को यह समझना चाहिए कि मैं पालतू कुत्ता नहीं हूँ। मुझे छूने, खिलाने या मेरे पास जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जंगल में किसी भी वन्य जीव से सुरक्षित दूरी बनाना जरूरी है। डर कर पत्थर मारना या शोर करना गलत है। सही तरीका है शांत रहना, वन विभाग या बड़े लोगों को बताना और प्रकृति के जीवों को उनकी जगह पर सम्मान से रहने दे।
0: अब एक सवाल मन में आता है कि यदि आप यानी भेड़िए जंगलों से गायब हो जाएं तो होगा क्या?
1: अगर भेड़िए गायब हो जाएं तो जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है। मेरे ना होने से कुछ शाकाहारी जानवरों की संख्या बहुत बढ़ सकती है। वे घास, पत्तियां और नए पौधे तेजी से खाएंगे। जब छोटे पौधे ही नहीं बचेंगे तो आगे चलकर जंगल उड़ा और कमजोर हो जाएगा। खुले मैदानों की घास खत्म होगी, मिट्टी बह सकती है और दूसरे जीवों के घर भी नष्ट होंगे। फिर पक्षी, कीड़े और छोटे जानवर भी प्रभावित होंगे। इसलिए एक भेड़िया केवल एक जानवर नहीं है, वह पूरी प्राकृतिक व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है। मेरे होने से जंगल में भोजन, पानी, पौधों और जीवों का संतुलन बेहतर बना रहता है।
0: जो भी जीवित है उसे कोई ना कोई खतरा जरूर है। आज आपके सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है?
1: आज मेरे सामने सबसे बड़ा खतरा है मेरे रहने की जगह का कम होना। घास के मैदान और खुले जंगल धीरे धीरे खेतों, सड़कों और बस्तियों में बदल रहे हैं। जब हमारा घर छोटा होता है तो भोजन भी कम हो जाता है। फिर कभी कभी हम गांव या पशुओं के पास पहुंच जाते हैं और इंसानों से टकराव हो जाता है। कई बार डर या गुस्से में लोग हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। साथियों, यह समझना जरूरी है कि जब किसी जीव का घर छिनता है तो वह परेशानी में इधर उधर भटकता है। समाधान यह नहीं कि उसे दुश्मन मान लिया जाए। समाधान है उसके लिए सुरक्षित जंगल, घास के मैदान और प्राकृतिक रास्ते बचाना। जब प्रकृति में हर जीव को जगह मिलेगी तभी टकराव कम होगा।

0: कितनी अच्छी बात कहते हैं भेड़िया जी आप। अब चलते चलते हमको कुछ संदेश तो देते जाइए।
1: जी मेरा संदेश है कि मुझे कहानियों का खलनायक मत बनाइए, मुझे समझिए, दूरी रखिए और सम्मान दीजिए। मैं भी अपने परिवार से प्यार करता हूँ, अपने बच्चों की रक्षा करता हूँ और जंगल में अपनी भूमिका निभाता हूँ। साथियों आप मेरे जीवन से टीम वर्क सीख सकते हैं। हम भेड़िए साथ रहते हैं, काम बांटते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रकृति भी इसी तरह चलती है, घास, हिरण, भेड़िया, बाघ, पक्षी और इंसान सब किसी ना किसी कड़ी से जुड़े हैं। अगर आप घास के मैदानों और जंगलों को बचाने की बात करेंगे, कूड़ा नहीं फैलाएंगे और वन्य जीवों को परेशान नहीं करेंगे तो यह मेरे लिए बड़ी मदद होगी। जब इंसान समझदारी से जगह बांटेगा तब जंगल भी सुरक्षित रहेंगे और गांव शहर भी। प्रकृति के साथ रहना सीखिए, प्रकृति से लड़ना नहीं। मेरे जीवन से यह सीख भी मिलती है कि टीम में काम करने से कठिन काम आसान हो जाते हैं। पैक का हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है, कोई निगरानी करता है, कोई बच्चों का ध्यान रखता है, कोई रास्ता पहचानता है। स्कूल की टीम

की टीम और परिवार भी ऐसे ही चलते हैं। प्रकृति हमें केवल विज्ञान नहीं सिखाती, वह साथ रहने, जिम्मेदारियां बांटने और नियम मानने की

0: आज कार्यक्रम में भेड़िये की भूमिका में थे रघुवीर काची। और अब साहिबा को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से। बातें
1: जंगल से।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। आकाशवाणी का ये
3: वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही है जया सिन्हा।
4: नमस्कार। कभी एले पैदे की मोहब्बत बने, कभी मिनले की मासूमियत, कभी रंग दे बसंती का जुनून दिखाया, तो कभी थ्री इडियट्स का सपना। तनुमेज मनु के मनु से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन और शैतान के रहस्यमी किरदार तक और उसके बाद धुरंधर, इनका सफर मानो हर दौर में एक नई कहानी लिखता रहा है। भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक आर माधवन को वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वागत करते हैं आर माधवन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही कि पद्मश्री मिला, काफी बधाइयां आई, लेकिन सबसे पहला विचार क्या आया? और आपने कहा कि ये सपनों से परे एक सम्मान आपको मिला है, ऐसा क्या है जो इस सम्मान को इतना विशेष, इतना खास बनाता है?
5: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट।
4: ये सम्मान एक किरदार के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं है, ये आपके पूरे सफर के लिए है। तो जब ये खबर मिली तो ऐसे में कोई किरदार याद आया कि ये किरदार मेरा सच में बेहद खास था? और साथ ही जिस जिम्मेदारी की बात की आपने, तो असर आया कुछ जब फिल्म चुनाव करते हैं या कुछ सेलेक्ट करते हैं कि अब मैं पद्मश्री थोड़ा सा अच्छे से मुझे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है मुझे?
5: बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, क्यों है कि सबसे पहले तो मुझे इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोत्तम आ जाता है जब मैं कहानी सेलेक्ट करता हूँ। तो एज अ एक्टर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, मेरे बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैच करता है। और फिर एक और फैक्टर हो जाता है कि क्या एक पद्मश्री को ऐसा एक्टिंग करना चाहिए, पर दैट्स वेरी लेट इन दी प्रोसेस। जहाँ तक सम्मान का सवाल है, ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा बहुत फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ ये सम्मान है, चाहे वो तमिल हो जाए या इंग्लिश हो जाए या हिंदी। मैं सिर्फ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड समाज की और मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, जो भी आप करते आ रहे हो इससे अच्छा ही करना होगा।
4: माधवन की एक खासियत है कि हर एक दशक में एक किरदार इनका सुपरहिट हुआ, थ्री इडियट्स एंड फिर आपने धुरंधर, वनराज। ये जो हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि कैसे आप इतना रेलेवेंट रहने, हर दशक पीढ़ी को आप जोड़ा अपने से, क्या इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
5: जी हाँ, सीक्रेट तो है ही ना। देखिए, चाहे वो नंबी नारायण हो जाए या फिर आप धुरंधर ही ले लीजिए जहाँ पे अजीत दोवाल साहब का किरदार है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त साहब हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, अपने रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना जी, ये लोग जो असली किरदार हैं उसकी तरह दिखते तो थे, थोड़ी बहुत सेम्बलेंस थी। पर अगर आप फिल्म के डायरेक्टर होते और अगर आपसे कहा जाता है कि अजीत दोवाल के लिए हम माधवन को कास्ट करें, जाहिर है कि आप मना कर देती क्योंकि कोई सेम्बलेंस नहीं है। फिजिकल रिजेंबलेंस होगी तो आप एग्री करोगे ना।
4: ये माधवन की खासियत है ना, हर किरदार में
5: वो विजन है आदित्य धर की। और मैं जो कहने की मतलब ये है कि चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो मुकेश या आदित्य धर, उनका एक विजन होता है कि हाँ माधवन ये कर पाएंगे। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ऑफर करते तभी मैं ये रोल कर पाऊंगा, अगर ये रोल मेरे पास आता ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे। तो चाहे कोई भी रोल हो जाए, वो एक जो क्रिएटिव टीम है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग, वनराज ले लीजिए इन शैतान, बहुत मुश्किल है ना कि माधवन जैसे कैरेक्टर को कोई ये नेगेटिव कैरेक्टर दे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस खतरनाक लेवल पे किया ही नहीं था।
4: और आपने एक्सेप्ट किया, ये भी
5: मैं वही कह रहा हूँ, जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस। बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देना।
4: किस तरह से आपको लगता है कि इस समय जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, कंटेंट है, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, ओटीटी, आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है? पिछले एक दशक में आप देखते हैं एक बड़ा बदलाव मिला है।
5: जी हाँ, ओटीटी की वजह से और रील्स के वजह से, सोशल मीडिया के वजह से हमें ऐसे नए स्टार्स मिले हैं जो पहले हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से आया करते थे। उनके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किरदार आए जिसको हम स्टार मानने लगे। पर OTT की वजह से इतने कमाल के एक्टर्स आए हैं, इतने कमाल के टैलेंट हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में ले लीजिए, हाल ही में रिलीज हुए दो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक्चुअल डायरेक्टर जो है वो यूट्यूब के डायरेक्टर्स हैं। तो वहां के रॉयल्टी नहीं कर पा रहे, जो चीज जो आजकल के यंग जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे हैं। इट इज अ फैबुलस मूव, कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है।
4: आप FCI से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि एक ऑरेंज इकोनॉमी का उदय इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजन रहा इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें सब्सिडीज की बात करें या फिर हम बात करें ऐतिहासिक आयोजन हुआ वेव समिट का, किस तरह से देखते हैं ये जो एक सर्ज है ऑरेंज इकोनॉमी, उस लिहाज से भारतीय सिनेमा को आप कैसे देखें?
5: मुझे लगता है कि हॉलीवुड जो है वो हमेशा बहुत ही दूरदर्शक था। जो वो देश की खासियत थी, वो होने वाली जो संभावना है, जो होने वाली क्षमता है, उसके बारे में फिल्म बनाया करता था। और इस वजह से अगर हमें लगता है कि इस धरती पे कोई एलियन का अटैक हो जाए तो सिर्फ एक अमेरिकन ही जाके हमें बचा सकता है, या उनके पास ही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज करना शुरू किया। मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में अभी तक अपना सॉफ्ट पावर और अपना जो हक है जो हमने आज तक बाकी फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर्बल मेडिसिन हो, योगा हो, हर चीज में जो हमने अपने आप को मशहूर साबित किया है पूरे दुनिया में, उस जगह को हमने अभी तक क्लेम नहीं किया एज फार एज आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज कंसर्न। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे किरदारों में कभी हम पहले से ही जयशंकर साहब जैसे कोई किरदार को नहीं दिखा पाए। वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो पूरे दुनिया में हमारे जिस तरीके से वो प्रेस वालों के साथ डील करते हैं, और वो किरदार क्यों नहीं हम पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सोच पाए। मैं इसकी छोटी छोटी जो है बातें कर रहा हूँ। सो आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी और ये जो नया इनका एंडेवर है बहुत ही जरूरी है। एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे फील्ड्स में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा।
4: एक ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रही, रॉकेटरी द नाम इफेक्ट। कितना चुनौतीपूर्ण था निर्देशन की कमान संभालना, और ये फिल्म आपके लिए कितनी एक लाइफ चेंजिंग भी थी। साथ में आपने फिल्म बनाई, लेकिन आपके अंदर क्या कुछ बदल दिया है?
5: बहुत अच्छा सवाल। इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नम्बे नारायण जी, पद्म भूषण है, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। ये हमारी खासियत है इंडियन की, जो अपनी अचीवमेंट के बारे में बात ही नहीं करना उनको ठीक लगता है, वो अपने दर्दनाक कहानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। उनसे जो मुझे 5 साल सीखने को मिला, और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब आपका मन वाकई में किसी चीज पे लगता है, पहले आपको एक सपना आता है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है, और तीसरी बार तो एकदम आप उसके पीछे ही लग जाते हो और वो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। रॉकेटरी मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। मैंने ना आए दिखाए बाएं, मुझे लगा था कि ये कहानी बताना जरूरी है, इस इंसान के बारे में बताना जरूरी है, और इस देश को इस इंसान के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम अपने हीरोज को कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाए। तो उस दौरान मैं उस माधवन को फिर से कभी देख नहीं पाया उस सेट पे, जो एक डायरेक्टर बनकर जो इंसान था, क्योंकि मैं सिर्फ ना ही एक्टर था, मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब कुछ था उस सेट पर, और हम 3 लैंग्वेज में शूट कर रहे थे, हर एक शॉट को 3 लैंग्वेज में करना था। तो मुझे लगता है कि जब आपका दिल किसी चीज पे बैठ जाता है ना, तो फिर आप सामने में जितने चैलेंजेस हैं सब छोटे लगने लगते हैं। बस आप एवरी डे काउंट करते हो, एवरी मिनट काउंट करते हो, कि मुझे आगे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना कि हम कितने दूर जाने वाले हैं और क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है और कितनी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा, चाहे वो एक शॉट हो जाए, चाहे वो एक सीन हो जाए, चाहे वो किसी को ब्रीफ करना हो जाए। मैं पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज करता था। फिर मैं

0: टीचा के बारे में सोचता था।
1: आपने बात की सॉफ्ट पावर की, आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति, भारतीय कहानियां, भारतीय सितारों को लेकर जाती है और जोड़ती है। सिनेमा में वो ताकत है जो हमने देखा। आपकी फिल्म नामी की बात करें, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी सिनेमा का एक बेहद बहुत ही सशक्त रोल हो सकता है, उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत ही खास रही। किस तरह सकते हैं युवाओं पर इसका इफेक्ट?
0: नम्बी नारायण साहब जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे वो पहले से रहते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। एक हीरो थे पहले, फिर सबके आंखों के वो तारे बन गए, फिर अचानक उन्हें देशद्रोही का करार दिया गया जिसकी वजह से लोग उनके यहाँ आना नहीं जाना चाहते थे, दिवाली पे नहीं आते थे, उनको मंदिरों में अलाउड नहीं किया जाता था, और फिर इस फिल्म के बाद वो एक वापस सुपरस्टार बन गए हैं। और आज जब भी हम कोई कंपटीशन की बात करते हैं तो देखिए ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सारे कंपटीशन शुरू हो गए। आजकल यंगस्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आज भी उनका जो इंजन आज तक फेल नहीं हुआ है, इट्स अ हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर। और स्पेस रॉकेटरी के पब्लिसिटी के दौरान मैंने एक बात कही थी, पहले कहा जाता था कि जिस इंसान के पास हथियार और घोड़े हों तो वो राज कर सकता है पूरे दुनिया पे, फिर कहा जाता था कि जिसके पास शिप्स हो जो समुंदर को अपने काबू में कर ले वो दुनिया पे राज करेगा, फिर कहा जाता था कि जिनके पास एयरफोर्स हो और आसमान पर जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज ऐसा मौका आ गया है कि स्पेस के ऊपर जिसका राज है, जिसका कंट्रोल है, वही पूरे दुनिया पर राज करेगा, और वो सही है। और उस दौड़ में हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते, इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन मिलती है, व्हेन यू सी पीपल लाइक नम्बी नारायण एंड ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: कितने किरदार किए आपने, हर किरदार में एक अलग रंग माधवन का हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, यू नो, कि मैं इस किरदार को इस तरह से देखूं, एक विजन है डायरेक्टर का, लेकिन ये मेरा विजन, क्योंकि आज आप उस मुकाम पर हैं कि आपके पास वो एक लिबर्टी है कि मैं अपने किरदार चूज कर सकता हूं, किस तरह से उसे अपनी बात कहनी है, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज आज बदल चुका है, तो वो मैडी इफेक्ट कहां से आता है, कैसे आता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत लोगों ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो जिसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भी कोई किरदार हमें मिलता है करने के लिए, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इतना तो तय है कि इस चेहरे में जो जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड है। मैं कुछ 3-4 तरीके से हंस पाऊंगा जो मैं निजी जिंदगी में वाकई में हंसता हूँ, या मैं रो पाऊंगा जैसे निजी जिंदगी में, उसकी एक रियलिटी होती है और वो रियलिटी ही कैमरा में ट्रांसलेट होती है।
1: इतना तो मैं विश्वास नहीं करती, 3-4 एक्सप्रेशन है आपके पास
0: जो ओरिजिनल में। एक होता है कि आपने किरदार निभाने के लिए अभिनय किया, और एक होता है कि आपने उस पे जान फूंक दी। जब आप जान फूंकते हो उसमें तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं। तो हमें ये तय करना पड़ता है कि इस किरदार को प्ले करते समय कौन से सीन में वो जेन्युइन मैडी की एक्सप्रेशन डाल दिया जाए, ताकि वो रस जो है वो आपको लगे कि वाकई में ये इंसान जी रहा है। बाकी जगह मैं एक्टिंग कर सकता हूँ बाकी पूरे सीन में, पर मुझे वो चंद सीन्स या चंद शॉट्स पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें मैडी आधा आधा वनराज को कैसे डालें, या आधा मैडी या माधव शास्त्री को कैसे ले आए, ताकि वो जेन्युइननेस के साथ वो किरदार निकल जाए तो लोगों को वो एहसास हो जाता है कि वो रियल है। आई थिंक दैट इज द आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा शॉट है, कौन सा सीन है जहां पे आपको मैडी बनना है, असली लाइफ मैडी बनना है, और कहां पे आपको किरदार बनना है, वो आई थिंक इज द टैलेंट दैट इज इंपॉर्टेंट दैट आई हैव।
1: ऐसा शुरू में हुआ कि मैडी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया, या आपकी जो रोमांटिक हीरो या चॉकलेट बॉय हीरो थी वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि गंभीर किरदार के लिए लोग आपको, मतलब उसको गंभीरता से लेने में समय लगा ऑडियंस को या फिल्म इंडस्ट्री को, निर्माता निर्देशकों को?
0: नहीं देखिए, अगर आप मेरी फिल्मों की फिल्मोग्राफी हिंदी में देखेंगे तो पहला फिल्म था रहना है तेरे दिल में, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, के बाद रंग दे बसंती, फिर गुरु, फिर हो गया थ्री इडियट्स, तनुवर्ड्स, मनु, तो वो एक प्रोग्रेशन ही था। मुझे एक ही टाइप की फिल्में करने का मौका नहीं मिला, हालांकि मैंने सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल किया विच इज तनुवर्ड्स मनु, पर अगर आप देखोगे तो सारे किरदार अलग है। विक्रम वेदा ले लीजिए, फिर साला खड़ूस, फिर रॉकेटरी, उसके बाद शैतान, फिर दे दे प्यार दे, फिर ओटीटी में जो मेरे किरदार हैं जो कि मैंने रेलवे मैन में की है, या ब्रीद में, तो सारे सीरियस ही रहे हैं एक्चुअली। और मैं चाह रहा था कि कभी यार हल्का फुल्का रोल भी कर लूं, तो उसमें दे दे प्यार दे 2 में मुझे एक मौका मिला। उसके अलावा मुझे लगता है कि लोग गंभीर रोल में मुझे ज्यादा पसंद करते हैं।
1: सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको पर्सनली, कि आज सेट पे गए हैं, आज इसमें करने में मजा आएगा, क्या आपको लगता है कि मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा?
0: देखिए, ये सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर। ये मजा तब आता है जब पूरे सेट में ना सारे लोग एक ही फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं।
1: क्राफ्ट
0: नहीं, सबकी नियत जो है वो उस एक फिल्म को बनाने की है। कभी ना लोग जुड़ जाते हैं अलग मकसद लेके, कि कभी किसी को यार फिल्म पैसों के लिए करनी है, कभी किसी को ये नाम के लिए करना होता है किसी को, पर जब एक सेट में सब कोई मिलकर एक ही किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक दोस्ती सी छा जाती है सेट पे, एक वननेस बन जाता है, तो फिर आपको ना मजा आता, बहुत मजा आता सेट पे, चाहे वो धुरंधर हो जाए, चाहे वो रंग दे बसंती हो जाए, सबको पता था कि हमें करना क्या है, कोई अपनी ओर अपनी दिशा पे जो है ना कहानी को

0: अपना अपनी क्राफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये होता है अनफॉर्चुनेटली, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ही नीयत से नहीं बनी है। तो जब सबकी नीयत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाने होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स अनकंपेरेबल। अब हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम कई महीनों तक एक ही यूनिट के साथ रहते हैं, पर वो जो दूर रहने का जो दर्द है, वो अच्छे सेट में होने से वो दर्द दूर हो जाता है।
1: जब फिल्म को लेकर आपको लगता है अलग अलग किरदार जो सारे हम सब दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किए, एंड मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा एक लकी भी रहे या बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहे कि हर आपका किरदार एक कल्ट फिल्म के रूप में निकला। कैसे इतनी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा माधवन बनते चले गए?
0: जैसे कि मैंने कहा, ये किरदार मुझे ऑफर होना ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर हमें पता चलता कि कोई किरदार बन रहा है तो हम सामने से अप्रोच करें, अगर वो मौका होता तो मैं जरूर करता था, पर मैंने कभी की नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये किरदार बन रहे हैं। पर आपका जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो इसलिए क्योंकि जो भी रोल हमें मिलता है करने के लिए, उसे पूरे जी जान लगाकर करना ही मेरा काम। और मैं ये कभी सोच के नहीं चलता कि मेरा किरदार जो है पिक्चर के बाद लोगों को सबसे ज्यादा याद रहे। ये मेरे लिए एक्चुअली, अगर मैं ऐसा अप्रोच लेके चलूंगा तो ये मेरे लिए एक हार है, ये मेरी एक मैं कहूंगा कि ग्रीडी वाला एटीट्यूड होगा, जिसकी वजह से फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी एक्टर से आप पूछ लीजिए कि आप चाहते हो कि आपको इस फिल्म में बहुत नाम मिले या आपकी फिल्म को नाम मिले, तो हर एक एक्टर हमेशा कहेगा कि फिल्म को नाम मिलना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब तक फिल्म चलेगी नहीं ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग भले ही आपकी मतलब इतनी प्रेस करें कि आपने बहुत कमाल की फिल्म की, लेकिन पर प्रोजेक्ट नहीं चली, फिल्म नहीं चली, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता।
1: रिपीटिशन दोहराव से डर लगता है?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रेपिटेशन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स रिपीटेड बिकॉज इट इज गुड, बट द एटीट्यूड इज टू मेक श्योर दैट द फिल्म विंस। तो अगर किसी सीन में मेरा सीन नहीं है, हीरोइन का सीन है या किसी और का सीन है जहां पे वो हम पे हावी हो रहे हैं, तो एज एन एक्टर मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आई शुड अलाउ देम टू बी दैट, टू पुट मी डाउन इन द सीन, टू मेक श्योर दैट द फिल्म वर्क्स। तो मैं इसी नियत के साथ सेट पे जाता हूँ, ऊपर वाले की दुआ से आज तक वो चलता आ रहा है मेरे लिए।
1: सबसे ज्यादा किरदार आपको कौन सा याद आता है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से कुछ ले गया, ये तो यार मेरे में रह गया, ये मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा?
0: मेरे ख्याल से नंबी नारायण साहब की जो किरदार है वो धुरेंद्र, एक हॉर फिल्म अभी कर ही रहा हूँ जो रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है जीडी नायडू, वो हमारे इंडियन एडिसन के बारे में एक फिल्म है। तो ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर कुछ ना कुछ मुझमें छोड़ जाते हैं।
1: धुरंधर की कामयाबी को लेकर जो हिस्टेरिया हुआ या उसका एहसास कैसे है? भारतीय सिनेमा के लिए बहुत उल्लेखनीय है ये, किरदारों के लिए, सबके लिए, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से हम उभरने की कोशिश कर रहे थे, कितनी महत्वपूर्ण है ये फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, एक एक किरदार को लेकर अभी तक जिस तरह से हिस्टेरिया है या लोकप्रियता है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस फिल्म इज।
0: मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ और ये मानता भी आता रहा हूँ कि जब कोई फिल्म की रिसर्च सही होती है, जब उसके पीछे में सिर्फ पैसे कमाने की मकसद नहीं बल्कि एक कहानी को तहे दिल से कहने की जो इच्छा होती है ना, वो अगर सही रहे, उसका रिसर्च सही रहे, अगर आप दुनिया सही तरीके से बना पाओ, तो वो कभी ऑर्डिनरी फिल्म हो ही नहीं सकती। जहां तक धुरंधर का सवाल है, मुझे पता है कि हर एक इंसान, हर एक जो टेक्नीशियन है, हर एक एक्टर जो है, वो इतना इन्वॉल्व था फिल्म के साथ कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोफेशनल। इट वॉज दैट वेरी गुड। इसमें हकीकत से जुड़ी हुई हर चीज है, एक प्रोग्रेसिव, एक एडवांस्ड और एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो अगर कहानी रहेगी तो लोग वाकई में देखेंगे। धुरंधर वॉज एग्जैक्टली दैट। और इसमें यंगस्टर्स को बहुत दिनों के बाद थिएटर में आके एक फिल्म को देखकर गर्व करने का महसूस हुआ। उनको पता चला कि हमारी जो सुरक्षा है, जो हम इतनी आसानी से हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि एक ही देश है जो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इर्द गिर्द घूम के बाकी सब देशों में देख लीजिए, ये हो नहीं पा रहा है। सुरक्षा की जो है सवाल जो है सर्वोत्तम है सबके दिमाग में बाकी के देशों में। सो आई थिंक टू बी एबल टू पे ओमाज एंड शो रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है और लोगों ने भर भर के थिएटर में देखा।
1: रियल लाइफ हीरोज की आप बात कर रहे हैं, आप खुद रियल लाइफ हीरो भी रियल जिंदगी में निभा चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने पद्म में भी एक बदलाव देखा, पीपल्स पद्म हमारे पद्म बन चुके हैं, जो हमारे देश के गुमनाम नायकों, अनसुने नायकों को सम्मानित कर रहा है, किस तरह से देखते हैं?
0: ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब कोई अपना काम बगैर किसी उम्मीद का करे, समाज के लिए जो भलाई है वो किसी उम्मीद के बगैर करे और दिल से करे, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, उसका असर ज्यादा होता है। और इन लोगों को सम्मानित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एटीट्यूड को हम ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। सबके सामने कोई भला करना या फिर उसका फोटो निकाल कर उसके लिए शय पाना, वो कुछ लोग करते हैं, चाहे वो भला करें तो अच्छी बात है, लेकिन वो शय पाने की भी इच्छा रखते हैं। पर ये जो पद्मा की जो है फिलोसफी है, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा सोच इसमें गया है, और मुझे बड़ा गर्व है कि इस सोच के साथ पद्म अवार्ड दिया जा रहा है आज के दिन।
1: आखिरी सवाल, किसी ने समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दुनिया को पागलों की जरूरत है क्या आप ये मानते हैं? कितना पागलपन अभी भी मौजूद है 3 दशकों के बाद, इतने किरदारों के बाद?
0: मुझे लगता है मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये पागलपन का मतलब ये है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है उस पे हम लोग खुश होकर उसी चीज को फॉलो करने में, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है और कभी कभार वो समाज के लिए सही नहीं होता। तो उस चीज को तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो एक किसी पागल के पास ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पागलपन मुझ में अभी भी।
1: बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रहें और मैडी लगातार हर नए किरदार के साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुछ कलाकार हिट फिल्में देते हैं, कुछ किरदारों से याद रखे जाते, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपनी पहचान बदलते हैं और फिर भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाए रखते हैं। माधवन उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक है, एक कलाकार जिसने मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी दी और अब पद्मश्री के रूप में देश ने उनके योगदान को सलाम किया है। माधवन जी, इस विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही थी जया सिन्हा। ये प्रसारण डीडी न्यूज के सहयोग से किया गया।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: श्रोताओं नमस्कार। हम तो आए हैं यहाँ एक ऐसे फनकार की बातें लेकर जिनसे कई बार हम खुद ही ये कहना चाहते हैं,
1: तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन।
0: न सिर्फ हमारे मन पर चढ़ा है उनका रंग, बल्कि हमारे जीवन में है उनकी गहरी पैठ। तभी तो जागते सोते उन्हीं के ख्यालों से बंधे रहते हैं हम।

0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे आज के फनकार हैं अपने गीतों के जरिए हमारे जीवन में रस घोलने वाले कलम के जादूगर गोपाल दास नीरज।
1: ओ नीरज नैना आजरा आजरा।
0: और उनके गीतों का जादू ही कुछ ऐसा है कि जितना सुनो मन यही कहता है।

राज सक्सेना, जिन्हें हम उनके उपनाम नीरज से पहचानते हैं। वही नीरज जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीतों के जरिए एक नई पहचान कायम की, जिन्होंने पहले तो इस फिल्मी दुनिया में आने से इनकार किया, लेकिन जब कदम रखा तो उनके हर गीत ने लोगों के मन को छुआ। भले फिल्म ना चले, लेकिन नीरज के गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर उनके नाम का डंका बजाने लगे। 1966 में आई उनकी पहली फिल्म थी आर चंद्रा द्वारा निर्देशित नई उम्र की नई फसल, जिसमें सभी गीत नीरज की कलम से निकले थे।

0: अकबर की नई फसल फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी निराला है। बात 1960 की है। मुंबई में नीरज के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था और इसके लिए उनका 2-2.5 घंटों का एकल काव्य पाठ रखा गया था। यहाँ कई नामी गिरामी व्यक्ति भी दर्शक बनकर आए थे और उनमें ही शामिल थे आर चंद्रा, जिन्होंने नीरज से उनके फिल्म में गीत लिखने की पेशकश की। नीरज ने कहा कि वो मुंबई में नहीं रुक सकते, उनकी लिखी सैकड़ों कविताएं हैं, जो भी पसंद आए वो ले सकते हैं। इस तरह आर चंद्रा ने अपने फिल्म के लिए करीब 5 से 6 कविताएं चुनी और उनके साथ फिल्म बनाई। फिल्म में शामिल सभी गीत सुपरहिट रहे, खास तौर से ये गीत।
1: स्वप्न झरे फूल से।

0: दुनिया की चकाचौंध किसे आकर्षित नहीं करती, लेकिन मौका मिलने के बाद भी ऐसा कहने के पीछे नीरज का वो व्यक्तित्व था जो संघर्ष की अग्नि में तपकर कुंदन हुआ था। नीरज और उनके गीतों को समझने के लिए सबसे पहले उनके उस जीवन को जानना आवश्यक है जब वो एक कवि, लेखक, शिक्षक हुआ करते थे, गीतकार नहीं, बल्कि उसके भी पहले से उनकी जीवन यात्रा देखते हैं। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम गोपाल दास नीरज या नीरज के नाम से पहचानते हैं, मात्र 6 बरस के थे कि पिता चल बसे। पढ़ाई के लिए बुआ के घर भेजा गया। बुआ के घर पढ़ाई करते हुए काफी अच्छे अंकों से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही अपनी और भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटे छोटे काम भी करने लगे। नन्हे कंधों पर ही जीवन जिम्मेदारियां टांग चुका था।
1: ये तो

0: का रुझान लेखन की ओर तो था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो कई छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे टाइपिंग करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दीवारों पर इश्तहार छापना और भी न जाने क्या क्या। वो इन कामों के साथ भी अपना लेखन जारी रखते और कवि सम्मेलनों में जाना भी। इसी तरह के एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे बात की और पूछा कि वो कितना कमाते हैं। नीरज उस समय बतौर टाइपिस्ट 62 रुपए महीना कमा रहे थे और उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि वो उन्हें हिंदी विभाग में 120 रुपए महीने की नौकरी दिलवा सकते हैं। वो व्यक्ति थे अपने जमाने के मशहूर शायर हफीज जालंधरी। नीरज उनकी बात मान गए।
1: कर्म

पहुंचे नीरज का काम था सरकारी नीतियों को कविता के रूप में ढालकर लोगों तक पहुंचाना। ये बात है 1940 की। हालांकि काम कुछ बुरा नहीं था, लेकिन नीरज का जमीर उन्हें कचोट रहा था कि वो देशवासियों के लिए कुछ करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं। आखिर जब वो तब के कलकत्ता पहुंचे और अकाल से जूझते लोगों की स्थिति देखी तो सरकारी नीतियों के प्रचार वाला गीत छोड़कर मंच पर एक क्रांति गीत सुनाया, मैं विद्रोही हूँ, और उसके बाद नौकरी पर दिल्ली लौटकर कभी नहीं गए। इस कविता और नीरज के विचार ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। नीरज के मन में देश प्रेम की भावना गहरे बैठी हुई थी। 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और जेल भी गए।

जितने भी फिल्मी गीत हम देखते हैं उनमें कुछ अलग ही रंगत नजर आती है। कई ऐसे शब्द दिखते हैं जो फिल्मी गीतों में उसके पहले आम नहीं रहे। इससे जुड़ा एक किस्सा नीरज खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। जब फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत के लिए सचिन देव बर्मन ने नीरज से कहा कि उन्हें गर्भवती महिला की खुशी जाहिर करने वाला एक गीत चाहिए, नीरज ने बताया कि उनका गीत देखकर सचिन देव बर्मन की आंखों में चमक आ गई थी। गीत ही कुछ ऐसा था।

0: में से एक है। देव आनंद ही थे जिन्होंने नीरज को सचिन देव बर्मन तक पहुंचाया। देवानंद ने भी नीरज को उनके कवि सम्मेलन में सुना था। उनकी भाषा से प्रभावित होकर भविष्य में अपनी फिल्म में गीतकार बनने की बात उन्होंने कही थी। और जब नीरज को पता चला कि देवानंद फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने वादे की याद दिलाते हुए एक खत देवानंद को भेज दिया।
1: फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती।
0: नीरज की भाव भरी पाती देवानंद तक पहुंची और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और नीरज को मुंबई बुला लिए। नीरज से मुंबई में मिलते ही देवानंद ने उनके हाथों में 1000 रुपए रख दिए और कहा कि अगले ही दिन फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन से मुलाकात करवाएंगे। शायद नीरज की परीक्षा लेने के लिए सचिन देव बर्मन ने एक धुन के साथ नीरज को एक शब्द दिया और कहा कि गीत इसी शब्द से शुरू होना चाहिए और गीत में ऐसे शब्द ना आए जो आम तौर पर इस तरह के गीतों में होते हैं। देवानंद ने नीरज को सलाह दी कि वो पहले गीत लिखकर उन्हें दिखा दें, फिर ही आगे भेजें। नीरज की कलम से रातों रात ही गीत लिखकर तैयार हो गया। पढ़ते ही न सिर्फ देवानंद झूम उठे बल्कि सचिन देव बर्मन ने भी नीरज को गले से लगा लिया। फिल्म थी प्रेम पुजारी और गीत का पहला शब्द
2: रंगीला।

बाद अगले 5 दिनों में ही प्रेम पुजारी के बाकी गीत लिखकर नीरज वापस अलीगढ़ आ गए। सारे गीत हिट रहे और आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। नीरज ने कविता लिखना और पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था जब वो मात्र 14 साल के थे। बचपन के संघर्ष भरे अनुभवों ने उनकी कलम को समृद्ध किया। नीरज मानते हैं कि वो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से काफी प्रभावित रहे और उनको पढ़ने से उन्हें एक नई दिशा मिली। अपनी पहली पुस्तक भी नीरज ने हरिवंश राय बच्चन को समर्पित की। नीरज ने छोटी उम्र से ही कवि सम्मेलनों में जाकर अपनी रचनाएं सुनाना शुरू कर दिया था।

ने फिल्मी गीतों से ज्यादा कविताओं, दोहे आदि रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया है। वो जीवन के अंतिम दिनों तक कवि सम्मेलनों में सक्रिय रहे। उन्हें कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने नहीं घेरा और इस बारे में पूछने पर उनका कहना था कि वो उचित मात्रा में भोजन करते हैं और अपनी कलम के माध्यम से अपने मन के उद्गार बाहर निकालते रहते हैं, जिससे मन भी हल्का रहता है। नीरज को जानने वाले बताते हैं कि उनकी याददाश्त भी तेज रही। उन्हें अपनी सारी कविताएं तो कंठस्थ थी ही, इसके अलावा तकरीबन 200 फोन नंबर भी याद थे। एक लंबे समय तक वो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी अध्यापक के पद पर बने रहे। इसी के साथ वो फिल्मों में गीत लिखने भी आते। वो लोगों की सहायता करने में आगे रहते और मानवता की बातें अपने गीतों के जरिए भी पहुंचाते।

एक बार शंकर जयकिशन जोड़ी ने शंकर ने उन्हें बताया कि उनका लिखा गीत फिल्म में नहीं लिया जा सकेगा। इस बात पर फिल्म के निर्माता राजेंद्र भाटिया ने नीरज को प्रेरित किया कि वो कोई ऐसा गीत लिखें

0: नीरज ने तकरीबन 130 फिल्मी गीत लिखे, लेकिन उनके लिखे गीतों की बात अधूरी रह जाएगी अगर हम मेरा नाम जोकर फिल्म का जिक्र ना करें। इस फिल्म के लिए लिखे नीरज के गीत इस फिल्म की तरह ही अमर हैं। नीरज इन गीतों को वो शब्द देते हैं जो किरदार के भाव को दर्शकों तक पहुंचाता है। यही नीरज की खासियत रही है कि वो हर उस बात को अपनी कलम से कहते हैं जिसकी हुक उस वक्त दर्शकों के मन में उठ रही होती है।
1: ये भाव

0: और हरकत में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।
1: मेरा नाम जोकर के दोनों गीतों में नीरज गहरा जीवन दर्शन इतनी सादगी से परोसते हैं कि बोझिल हुए बिना जिंदगी का मर्म समझ आता है।

पंडित ने श्रृंगार के गीत भी लिखे तो देशभक्ति के भी, उन्होंने दर्शन भी लिखा तो भक्ति के गीत भी। मजाहिया गीतों में भी नीरज ने कोई कमी नहीं रखी।

स्वभाव कोई भी हो, लेकिन नीरज के गीतों की खासियत थी उनकी सरल भाषा। वो जटिल से जटिल बात भी आम जन को समझाने वाली भाषा अपने पास रखते थे।

0: शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन।
1: नीरज एक अनोखे इंसान रहे, जहां एक बार फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्धि मिलने के बाद कोई भी वापस नहीं जाना चाहता, वहीं अपनी प्रसिद्धि के चरम पर ही नीरज वापस लौट गए। कारण था लोगों का बदलता व्यवहार। उन्हें ये एहसास हुआ कि अब इंडस्ट्री में वो लोग नहीं हैं जिन्हें शब्दों का वास्तविक सम्मान है। उन्हें लगातार कला में पूंजीवाद का समावेश पसंद नहीं आ रहा था।
2: पैसे की पहचान यहां इंसान की

वो अपने चाहने वालों से जुड़े रहे और कवि सम्मेलनों में लगातार शिरकत करते रहे। देवानंद से भी उनका खासा प्रेम बना रहा और उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट में भी नीरज ने ही गीत लिखे।

इस तरह से फिल्मी दुनिया से लौटना भी शायद उनके ही इस विचार का आईना है, जहां वो लिखते हैं, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा,

0: ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಲೋಟ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಲೋಟ।
1: नीरज को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया और साल 2007 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। 19 जुलाई 2018 को 93 वर्ष की उम्र में नीरज ने संसार को विदा कहा और अपने पीछे अपनी एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ गए। उनके गीतों, कविताओं और रचनाओं के माध्यम से वो आज भी चाहने वालों के बीच अमर हैं।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था कलम के जादूगर लेखक कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज पर। शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का।

0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश यादव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। झाबुआ जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हजारों हितग्राहियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों सिंगल क्लिक के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की, जिसके तहत झाबुआ जिले के 23,000 से अधिक वृद्धजन, दिव्यांगजन और कल्याणी पेंशन के हितग्राहियों के खातों में लगभग 1,38,00,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर बीते दिनों झाबुआ में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा मुक्त समाज का संदेश दिया गया। कलाकारों ने भीली भाषा में गीत, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। नागरिकों ने नशा मुक्ति की शपथ लेकर स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण का संकल्प दोहराया। झाबुआ जिले में आम नागरिकों की राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 17 जुलाई को आयोजित विशेष जनसुनवाई में जिले की सभी तहसीलों से कुल 220 आवेदन प्राप्त हुए। झाबुआ जिले के पेटलावद में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने लगभग 2,75,00,000 रुपए की लागत से निर्मित 50 सीटर वीरांगना रानी दुर्गावती अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री ने लगभग 8,00,00,000 रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण और जनहितकारी कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। वर्षा ऋतु के दौरान मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए झाबुआ जिले में स्वास्थ्य विभाग का विशेष अभियान जारी है। इस वर्ष जनवरी से जून तक जिले में 1,06,000 से अधिक घरों और लगभग 4,00,000 पानी संग्रहित करने के पात्रों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि सप्ताह में एक दिन अपने घर और आसपास पानी जमा होने वाले सभी स्थानों की जांच अवश्य करें। झाबुआ जिले में शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने मेघनगर और थानला विकासखंड के कई विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं का संचालन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था और विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। झाबुआ जिले में शिशुओं और छोटे बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत हो गई है। 31 अगस्त तक इस अभियान के दौरान एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम घर घर जाकर जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। झाबुआ जिले ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जून 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में जिले को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च स्थान दिया गया है। झाबुआ में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी की परंपरा पर आधारित इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। झाबुआ में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बीते दिन उत्साह के साथ मनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। वहीं कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने योग को स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन की आधारशिला बताया। झाबुआ जिले के पेटलावद में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में भी झाबुआ जिले ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले ने 102.8% कवरेज के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 28 से 30 जून तक चले इस अभियान में निर्धारित लक्ष्य से अधिक 2,19,550 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों जिले में पदस्थापित 20 नवनियुक्त मेडिकल ऑफिसर से संवाद किया। झाबुआ में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन जनभागीदारी और जल संरक्षण के संकल्प के साथ हुआ। आजीविका भवन में बीते दिनों आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। झाबुआ जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: झाबुआ जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था हरीश यादव का और वाचन किया था अभिषेक कटियार ने। ये आकाशवाणी है।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें।

0: श्रोताओं नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। श्रोताओं आज के फोन इन कार्यक्रम में हम एक बेहद जरूरी मुद्दे की बात लेकर आए हैं। विषय है साइबर क्राइम या ऑनलाइन ठगी से बचाव। आज हम इसी मुद्दे पर अपने श्रोताओं से बातचीत करेंगे और हमारे पास फोन कॉल आने शुरू हो गए हैं। आइए लेते हैं ये पहला फोन कॉल। आकाशवाणी सागर कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने।
1: अमित सिंह ठाकुर बात कर रही थी दीदी सागर से।
0: अमित सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया दीदी, आप?
0: हम भी अच्छे हैं। बताइए क्या हो रहा था अभी?
1: अभी प्रेजेंट में दीदी चाय बना के अभी फ्री हुए, याद आए कि आकाशवाणी को 3 महीने हो चुके, कॉल नहीं किया, लगा ले।
0: चलिए तो बहुत अच्छा किया आपने हमें कॉल लगा लिया। बताइए अमित जी क्या करते हैं आप?
1: दीदी प्रेजेंट में कुछ भी नहीं करते हैं, अभी हमारी माता जी एक्सपायर हो चुके हो गए दीदी, थोड़ा ऐसे ही लगने लगा के लपन था, तो अब दुकान खोलना है फिर से, अकेली बच्ची है घर पे तो अच्छा नहीं लगता है ज्यादा।
0: हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि माँ की कमी तो हमेशा जीवन में हमेशा खलती रहेगी, हम कितने भी बड़े हो जाएं, उनकी यादें आपके साथ हैं, अच्छे पलों को याद रखिए।
1: बिल्कुल दीदी, और आप लोगों के कार्यक्रम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सभी कार्यक्रम बिल्कुल आपके रेगुलर सुनता रहता हूँ।
0: आपको हमारे यहाँ के कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं?
1: एक कार्यक्रम तो सबसे पहले यही हुआ, फोन करे गीत सुने, फोन करे लोकगीत सुने, उमंग हो गया, योगवाणी हो गया, जागर में सागर रेडियो पत्रिका आप लोगों की आती है, सुबह सुबह में बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है।
0: बहुत अच्छा,
1: सभी कार्यक्रम मतलब आपके मन चाहे की सदाबहार की सभी सुनते हैं हम,
0: यूं ही कार्यक्रमों को सुनते रहिए। अमित जी आपको पता होगा कि हमारे फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में हम एक मुद्दे की बात लेकर आते हैं।
1: जी।
0: आज के हमारे कार्यक्रम में मुद्दे की बात है कि हम किस प्रकार जो साइबर क्राइम होते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गई, बैंकिंग से रिलेटेड क्राइम होते हैं, या सोशल मीडिया अकाउंट कई बार लोग हैक कर लेते हैं और पैसे मांगते हैं, फिर तो इस तरह के जो क्राइम्स हैं इनसे हमें खुद की सुरक्षा रखनी है, बचाव रखना है। तो बताइए आप कुछ, अगर आपके साथ कोई ऐसा अनुभव हुआ हो या आपने कभी इस तरह की चीजें अपने आसपास दोस्तों से सुनी हो तो साझा कीजिए हमसे।
1: एक्चुअली क्या है कि एक बार तो हमारे साथ ही हो गया था।
0: क्या हुआ था आपके साथ?
1: एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे दोस्त ने हमसे बोला कि तुम्हारे लिए लोन की जरूरत है, मैंने कहा, तो उसने मेरे साथ धोखाधड़ी कर दी थी।
0: उसने किस तरह धोखाधड़ी की आपसे?
1: उसने मेरे नाम से लोन निकाल ली और हमारे अकाउंट से हर महीने पैसे कटने लगी। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई तुमने हमारे साथ ऐसा किया है, हमने नहीं किया यार, तुमने गलत फहमी हो रही, मैंने कहा हमारे अकाउंट से हर महीने पैसे कट रहे हैं, आप देख लो खुद। फिर हमने कहा रेंड मोहल्ला का है, तो मैंने उससे कुछ नहीं बोला, फिर हमने अपना अकाउंट भी चेंज करवाया, बस बंद करवा दिया वो अकाउंट, ज्यादा पैसे नहीं कटे दीदी हमने कहा।
0: आपने उसकी शिकायत नहीं की?
1: दीदी हमारे बिल्कुल मोहल्ले ही का है, बिल्कुल पड़ोसी है, तो हम क्या मम्मी ने पहले बार मम्मी मिली ना, उन्होंने मना कर दिया रेंड बेटा वो अपनी मोहल्ला का है, परेशान व्यक्ति का है।
0: देखिए आपकी दोस्ती का उन्होंने फायदा उठा लिया, आपकी सारी जानकारी उनको पता थी इसलिए आपके साथ धोखा हो गया।
1: जी हम तो सभी को सलाह यही देंगे कि बिल्कुल अपना ओटीपी किसी के साथ साझा न करें, बैंक की कोई जानकारी ना, आधार कार्ड पैन कार्ड कोई भी, और यदि कॉल आते हैं क्लिक करने के लिए मैसेज आते हैं तो बिल्कुल भी क्लिक न करें लालच में आके।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपके माध्यम से हम अन्य श्रोताओं को भी बताना चाहेंगे कि कभी आपके साथ कोई इस तरह का फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत पुलिस में कंप्लेन करें। एक टोल फ्री नंबर है 1930-1930, इस नंबर पर भी कॉल करके आप तुरंत इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले तो है कि अपने जो सावधानी के सुरक्षात्मक गेयर है उनको अपनाएं।
1: अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है।
0: जी जी, देखिए आजकल क्राइम इस तरह नहीं होता कि आप चल रहे हैं और आपसे कोई छीन के भाग गया, अब क्राइम का स्वरूप बदल चुका है, बदलते समय में टेक्नोलॉजी के साथ क्राइम। जी आप अपने बेडरूम में बैठे हैं और पता चलता है आपके साथ क्राइम हो गया है, डिजिटल सुरक्षा बना के रखें।
1: बहुत अच्छी है बात कही आपने।
0: अमित जी बताइए आज हमारे कार्यक्रम में आपको गीत कौन सा सुनना है?

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हले भाई, मुझे इंद्राम जमुनिया से।
3: तो हले भाई, बताइए क्या करते हैं आप?
2: देखा नहीं ऐसा ही
3: थे। क्या जन्म से ही दृष्टि बाधित है कि अभी कुछ हो गया?
2: नहीं जन्म।
3: हले भाई, एक बात बताइए, आपके मानस पटल पे किस तरह के चित्र बनते हैं जब आप सोचते हैं कि कोई नदी है, कोई पहाड़ है, लोग हैं, तो किस तरह आपको लोग दिखाई देते हैं?
2: अब ये दुनिया के बारे में जब जो आप अपन सब बैठे हैं, बस ये सोचना है और ये भी कुदरत ने आप जो दिया है कर्म का फल
3: है। नहीं, कोई कर्मों का फल नहीं है। पहले तो ये हम आपसे कहेंगे, फल नहीं है कर्मों का, ये कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मेरा तो बस ये कहना है कि

0: हमारे रेडियो सुनने वाले बहुत सारे श्रोता हैं जो आंखों से देख सकते हैं और वो ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे पास कॉल करते हैं जो नहीं देख पाते हैं, इसके बावजूद वो नेत्रदान का संकल्प नहीं लेते।
1: हाँ, उसके लिए सोचो एक बात।
0: हाँ, दूसरे व्यक्ति को भी रोशनी देके जाइए
1: जी।
0: आपके कॉल के माध्यम से मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि नेत्रदान का संकल्प लें
1: जी।
0: हल्ले भाई, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं?
1: खाली समय में ये मंदिर जाना और घूमना है।
0: थोड़ा बहुत पढ़ लेते होंगे?
1: हाँ, पढ़
0: लेते। हल्ले भाई, ये बताइए कि आप हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं कि नहीं?
1: कार्यक्रम पूरे, अभी हमारे यहाँ पे 4-5 लोग बैठे हैं, सब सुन रहे हैं।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है, सभी को नमस्कार करते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हम एक मुद्दे की बात लेकर आए हैं। मुद्दे की बात है कि जो हमारे आसपास सोशल मीडिया से संबंधित क्राइम हो रहे हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, इनसे हमें बचना है। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है?
1: अभी से बचो, जैसे कोई ओटीपी वगैरह मंगाए तो बिना नंबर के ओटीपी नहीं लेना चाहिए अपने लिए। पुलिस कॉन्टेक्ट कर, फोन करो, पुलिस वाले को रिपोर्ट करो।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा है कि कुछ इस तरह से हो तो आप पुलिस को फोन करें। चलिए बताइए, आज हमारे कार्यक्रम में आपको गीत कौन सा सुनना है?
1: गाना सुनवा दो, जाने जो लोग मोहब्बत किया करते।
0: महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत है, आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी सागर कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने।
3: सफर के चिंताएं से बोल रहे राजेंद्र।
2: राजेंद्र जी क्या करते हैं आप?
3: खेती बाड़ी करते हैं।
2: अभी क्या लगा रखा है खेतों में?
3: छोरा भी नहीं।
2: बुआई हो गई आपके यहाँ?
3: हाँ वो तो गई, पानी नहीं दे रहा मैडम।
2: पानी का अलग ही चल रहा है, बीच में बहुत बरसा और अब जब जरूरत है तब पानी नहीं बरस रहा।
3: बिल्कुल।
2: वहाँ सिंचाई के क्या साधन है?
3: बनाओ तो पानी नहीं है, कुएं में नहीं है।
2: अगर बारिश नहीं होती है तो क्या होगा?
3: अब तो भगवान ज्ञान पाओ।
2: चलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी बारिश करें और आपके कुएं में सब जगह पानी हो ताकि आपकी फसल अच्छी हो सके।
3: जी मैडम।
2: जी राजेंद्र जी, हमें ये बताइए कि आपके पास फोन कौन सा है, कीपैड वाला या?
3: कीपैड वाला मैडम।
2: तो कभी आपके साथ इस तरह हुआ है कि कोई कॉल आया और उन्होंने बोला हो कि हम फलाने जगह से बोल रहे हैं, कुछ आपको लगा हो कि कोई आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई हो?
3: नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं है मैडम। मैसेज तो आते हैं, धोखाधड़ी में ना पड़े।
2: हाँ बिल्कुल सही मैसेज आते हैं आपके पास। कभी अपना ओटीपी शेयर ना करें, खासकर क्या जो कीपैड वाले में इतना रिस्क नहीं रहता, ये जो टच वाले आ गए हैं ना इनमें रिस्क रहता है कि अब कोई लिंक आ गया, टच किया तो मालूम पड़ता है कि कुछ फोन ही हैक हो गया, हमारा सोशल मीडिया हैक हो गया।
3: वो तो है, वो मॉडी की बात से पढ़ाते भी।
2: बिटिया से बोलिएगा कभी भी अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें।
3: अब तो जाना थे, बोल तो दिए थे मगर।
2: कई बार पता है किस तरह से कॉल आते हैं आपके माध्यम से, अन्य श्रोताओं को भी बात पहुंचाना चाहते हैं। फोन आते हैं बिल्कुल ऐसे बात करेंगे जैसे आप उनके बहुत खास व्यक्ति बोल रहे हैं और बोलेंगे बेटा तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं, यहाँ इनका एक्सीडेंट हो गया और हम लोग अस्पताल लिए जा रहे हैं, यहाँ पहुंच जाओ। और बच्चे हड़बड़ाते हुए पहुंच जाते हैं, वहां मालूम पड़ता है कुछ भी नहीं है ऐसा और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है या उनको किडनैप कर लिया जाता है या उनसे पैसे मंगा लेते हैं इलाज के लिए। तो इन सब चीजों से हमें बचना है, सावधानी रखनी है।
3: बिल्कुल।
2: आप बताइए आपको आज हमारे कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनना है?
3: प्यार दुखता रंग के सुना दीजिए मैडम। मिल के न होंगे
2: बहुत बढ़िया, आपने अच्छा गुनगुनाया। चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: उत्तम सिंह बघेल, ग्राम राजगढ़, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
3: उत्तम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका
2: जी।
3: क्या करते हैं आप?
2: खेती किसानी करते हैं और बकरी पालन करते हैं।
3: कितनी बकरियाँ हैं आपके पास?
2: 50 हैं, भेड़ और बकरी मिला के है।
3: बहुत प्यारे लगते हैं भेड़ के बच्चे, बकरी के बच्चे, सुंदर सुंदर होते हैं वो, खिलाने में बहुत अच्छा लगता है उनको। तो आपके पास तो बहुत सारे होंगे छोटे छोटे बच्चे।
2: हाँ,
3: इन सब के पालन के लिए आपने किसी को लगा रखा है कि खुद से अकेले कर लेते हैं? पूरा
2: अकेले करते हैं।
3: क्या दिनचर्या रहती है?
2: जैसे अपन 9-10 बजे तक नहा धो के खाना खा के फ्री होते हैं, निकाल देते हैं, शाम के लौट जाते हैं 6-7 बजे।
3: अच्छा, आजकल बहुत गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं कि नहीं?
2: पेड़ पौधे बहुत हैं और जंगल में बड़ी हवा लगती है हम तक।
3: लेकिन फिर भी अपने साथ पानी लेके जाइए और सिर ढक के निकलिए, बहुत तेज धूप रहती है।
2: तौलियां लाए रहती हैं और बोतल साथ में रखते हैं।
3: हाँ, बहुत बढ़िया,
2: बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार फोन लगा मेरे आपका कार्यक्रम।
3: अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। उत्तम सिंह जी, हम आपको बताना चाहेंगे, आज हमारे कार्यक्रम में हम मुद्दे की बात लेकर आए हैं कि जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं या साइबर क्राइम हो रहे हैं, उनसे हमें बचाव करना है। तो आप बताइए, क्या आपका कोई ऐसे, आपके साथ कोई ऐसा अनुभव रहा हो जब आपको लगा हो कि आपके पास ये फेक कॉल आया था या स्पैम कॉल आया है, कुछ हुआ है ऐसा?
2: नहीं, आते तो रहते हैं, फिर हम उनको कहते हैं कि ये करो वो करो, हम नहीं देते ओटीपी वगैरह।
3: हाँ, मतलब आते हैं। देखिए, गांव-गांव तक ये चीजें पहुंच चुकी हैं, तो लोगों के पास कॉल आने लग गए हैं। कई बार इस तरह भी होता है कि वो कॉल आते हैं और कहते हैं आपने बहुत बड़ी लॉटरी जीती है। आदमी क्या लालच में चला जाता है। उनके पास दो ही तीन हथियार है, एक हथियार है लालच, दूसरा है डर। अभी आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हुई, उसमें वो डराते थे। और दूसरा है लालच देके कि आपकी लॉटरी लगी है इतने की, अब आपको इतने रुपए चाहिए तो हमारे खाते में इतने पैसे दीजिए तो कंफर्म हो जाएगी आपकी लॉटरी। तो

0: नहीं सोचता 1 लाख की लॉटरी लगी, 2,000 रुपए देने, दे देते हैं 1 लाख रुपए मिलेंगे, पर होता है बिल्कुल उल्टा है कि वहाँ कुछ नहीं मिलता है, 2,000 भी चले जाते हैं।
1: जी जी
0: आपके पास कौन सा मोबाइल है, टच वाला कि कीपैड वाला?
1: टच वाला।
0: हाँ तो टच वाले में तो पता है कई बार ऐसा व्हाट्सएप पे APK फाइल आते हैं जिनको आपने लिंक को टच किया और आपका पूरा फोन हैक हो जाता है।
1: जी जी।
0: तो कोई भी संदिग्ध मैसेज है उनको मत खोलें, अनजान नंबर से आए लिंक को खोलें ही ना, फॉरवर्ड भी ना करें, इस तरह से थोड़ा सावधानी रखें।
1: जी जी मैम।
0: बताइए आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: राजा हिंदुस्तानी फिल्म का है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए।
2: 287 मेरी चाय।

जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो जी मैडम नमस्ते।
1: नमस्कार,
0: मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, जिला कालाहांडी भैया भवानी पटना, गांव का नाम जगन्नाथपुर, नाम चित्रा सुनसवर।
1: क्या कर रहे थे अभी?
0: मैं तो होटल चला रहा हूँ।
1: वहाँ पर रेडियो सुनते हैं?
0: हाँ जी।
1: चलिए बहुत अच्छा है।
0: तो बहुत अच्छा लगता है ना।
1: आपके होटल में क्या क्या मिलता है खाने को?
0: समोसा, बीरी बरा, मालपुआ, जलेबी।
1: ये मालपुआ उड़ीसा में ज्यादा खाते हैं क्या लोग?
0: हाँ,
1: बहुत देखा मैंने मालपुआ, बहुत बिकता है।
0: हाँ, एक बार आओ ना उड़ीसा
1: जी, कभी आएंगे।
0: अभी आओ ना, रथ यात्रा
1: बहुत भीड़। हाँ? होती है रथ यात्रा में?
0: हाँ जी, बहुत भीड़ है।
1: आपको हिंदी इतनी अच्छी कैसे आती है? वहाँ सभी लोग बोल लेते हैं क्या हिंदी?
0: नहीं जी, रेडियो सुनता हूँ तो आपका आवाज सुन सुन के
1: जी। चित्रा सिंह जी, आज हमारे कार्यक्रम में हम मुद्दे की बात लेकर आए हैं, हमें ऑनलाइन ठगी या फिर बैंकिंग फ्रॉड, साइबर क्राइम से बचना है। आप बताइए, कुछ आपके साथ किस तरह का कुछ अनुभव हुआ हो या आप कोई संदेश देना चाहें तो?
0: हाँ जी, हमारा दुकान में मेरा बेटा के फोन किया, मैं फूड ऑफिसर कहलाता है। हाँ? मेरे को 5,000 रुपया भेजो। हाँ? नहीं तो मैं आपका होटल के जाकर सीज करूंगा बोला।
1: अच्छा,
0: तो मेरे बेटे ने मेरे को नहीं पूछा और 3,000 रुपया दे दिया।
1: अरे,
0: मैं बोला इन्हें क्यों दिया, मेरे को तो पूछ लेता है, बार बार फोन किया।
1: फिर आपने उसकी शिकायत नहीं की?
0: नहीं जी, क्या करूं मेरा ऐसे अपराधी।
1: देखिए, आपके साथ इस तरह का अपराध किया, आज फूड इंस्पेक्टर बन के आपको कॉल किया और पैसे ले लिए। कई बार इसी तरह से आपको डरा के धमका के पैसे लेने का ये तरीका होता है। किसी को पैसे देने से पहले 100 बार सोचे। वो लोग पता है जल्दबाजी मचाते हैं, आप उस चीज की जल्दबाजी में मत फंसो, आप रुक जाओ, कहें तो ठीक है मैं दूंगा, मैं कल दूंगा। वो कहेंगे नहीं तुरंत दो, तुरंत दो, कहना ठीक है तुरंत तो नहीं हो पाएगा। आप जैसे रुकते हैं तुरंत इसका गेम रुक जाता है, धोखाधड़ी का। समय लीजिए आप, वो लोग ऐसे जल्दी करेंगे कि आप तुरंत दे दो और वो तुरंत फुर्सत हो जाए पैसे लेके। और दूसरा, अगर जब आपके साथ कभी क्राइम हो भी जाता है तो उसकी शिकायत कीजिए। आपने सोचा 3,000 रुपए थे, चले गए, छोड़ दो। छोड़ना नहीं है कि आपके 3,000 लिए, किसी के 30,000 लेंगे। देखिए, लोगों की मेहनत की कमाई है, हमें उनकी शिकायत करनी चाहिए और उन्हें पकड़वाना चाहिए, वरना वो कितने लोगों को इस तरह लूटेंगे। बताइए, आज हमारे कार्यक्रम में आपको हम गीत कौन सा सुनवा दें?
0: चांद के पास जो, चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: आकाशवाणी सागर कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने।
2: राहतगांव से बोल रहा है भरतपुर न्यूज।
1: कैसे हैं आप भरत जी?
2: जी मैडम हम तो अच्छे हैं, आप?
1: हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप?
2: हम कुछ नहीं, बस खेती किसानी का काम करते हैं।
1: चलिए आप अन्नदाता हैं हमारे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं
2: जी।
1: वो नहीं हो गई आपकी?
2: हाँ।
1: क्या लगाया इस बार?
2: सोयाबीन, उड़दा, मक्का।
1: तो बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है?
2: नहीं हो रही मैडम, बारिश 4-5-6 दिन हो गए जब से पानी गिरा नहीं।
1: किसान जीवन में ये तो है कि हम बहुत ज्यादा भाग्य भरोसे हो जाता है।
2: हाँ जी।
1: हम आपको बताना चाहेंगे, आज हमारे कार्यक्रम में हम मुद्दे की बात लेकर आए हैं कि जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं या साइबर क्राइम हो रहे हैं, उनसे हमें बचाव करना है।
2: अब ऐसा है मैडम कि वो तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रहेगी, और मतलब ऐसा है कि अब वो तो देखो अपने भी कहीं जा रहे हैं, अभी भी कहीं जा रहे हैं तो भाई फोन लगाने के लिए मतलब ऐसी इसलिए रखने पड़ता है वो।
1: हाँ, फोन तो रखना पड़ता है, लेकिन फोन में किसका फोन सच्चा है, किसका झूठा है और कौन हमारा इस जानकारी मांग रहा है, किसको देनी नहीं देनी, ये भी हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है।
2: ओटीपी
1: नहीं शेयर करना है, और जो हमें पासवर्ड बनाने हैं बहुत मजबूत बनाने हैं, ऐसे हल्के फुल्के पासवर्ड नहीं कि 000 कर दिया तो किसी ने भी खोल लिया 000 डाल के।
2: नहीं नहीं सही बात है मैडम, ये बात तो सही कह रही हैं आप बिल्कुल।
1: कोई भी ऐसा उल्टा सीधा लिंक आया उसको क्लिक नहीं करना है। मालूम पड़ा एक लिंक आपने क्लिक किया और आपके फोन में कोई वायरस आ गया, अब आपकी पूरी जानकारी चली गई।
2: सही बात है।
1: कई बार लोग फेसबुक चलाते हैं, उसमें मालूम पड़ता है किसी दोस्त की फेसबुक किसी ने हैक कर ली, वो हैकर बैठा है और कह रहा है कि मुझे बहुत जरूरत है, 5,000 रुपए दे दो या 10,000 रुपए दे दो, और लोग समझते हैं ये तो आपका दोस्त है तो आप दे देते हैं, मालूम पड़ता है उनका तो अकाउंट ही हैक हो गया था।
2: सही बात है मैडम, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
1: और अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो बिल्कुल देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, पल पल नजर रखिए बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल है तो।
2: नहीं नहीं सही बात है मैडम बिल्कुल
1: जी। तो इस तरह आप अपनी सुरक्षा अपना कर चलिए।
2: सही बात है
1: जी। आपके साथ कभी कुछ हुआ है, कोई इस तरह का कॉल आया हो या कोई आपसे इस तरह से धोखाधड़ी करने की कोशिश की हो किसी ने?
2: ऐसे तो आते ही रहते हैं मैडम, अगर अपन उनसे ज्यादा संपर्क नहीं करते हैं, मतलब फोन आया अपन ने पूछताछ की उनकी, वो बोले ऐसा करो वैसा करो, तो उससे अपन ज्यादा ध्यान नहीं, उससे दे दिए अपन काट दिए तुरंत।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा करते हैं, कभी भी किसी लालच में ना फंसे, लॉटरी के या किसी क्विज में जीतने के या किसी भी तरह के लालच में। वो क्या करते हैं, कॉल करके बोलेंगे कि अरे आपके पिताजी ने हमसे पैसे उधार लिए थे 20,000 रुपए, हम आपको वापस कर रहे हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दो, आपको 20,000 रुपए डाल रहे हैं। तो लोग सोचते हैं अरे हो सकता है पापा ने लिए हो, ठीक है हमारा मोबाइल नंबर ले लो इस पर डाल दो। तो वो क्या करते हैं, आपके पास एक नकली मैसेज भेज देंगे, आपको लगेगा जैसे बैंक से मैसेज आया है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस दिस दिस, कि आपके अकाउंट में 2,00,000 रुपए

0: आ गए, फिर वो फोन करेंगे, कहेंगे अरे 20,000 भेजने थे, गलती से 2,00,000 चले गए, बाकी पैसे तुम वापस कर दो।
1: तो
0: वो कहेंगे 1,80,000 रुपए वापस करो, तो आप सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, 20,000 तो आ गए, 1,80,000 उसके वापस कर दो। और वो आए वाए होते नहीं, उसने फर्जी मैसेज बना के आपको भेजा होता है। बहुत तरीके हैं उन लोगों के पास फ्रॉड करने के, तो इन सब से बिल्कुल सावधान रहें।
1: जी
0: जी, आपको हमारे कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनना है आज?
1: पठान फिल्म को सुनाएं।
0: कौन सा गीत?
1: कौन सा भी सुनवा दीजिए उसको।
0: ठीक है भरत जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: क्या करते हैं आप?
1: कुछ नहीं करती मैम, बैठी रहती है, देखता नहीं है।
0: आपने क्या ब्रेल लिपि में कुछ सीखा है?
1: नहीं, अभी तो नहीं सीखा, सीखने की कोशिश तो करते हैं, सीख पाते।
0: कोई स्कूल में दाखिला कराया अपना?

0: क्या करना चाहते हैं आगे?
1: आगे हम यही करना चाहते हैं, हारमोनियम बजाएंगे, गायक कलाकार बनेंगे।
0: बहुत बढ़िया, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप गायक कलाकार बने।
1: जी
0: जी। विकास जी, आज हमारे कार्यक्रम में हम एक मुद्दे की बात लेकर आए हैं कि जो साइबर क्राइम होते हैं उनसे अपनी सुरक्षा रखें, उनसे बचें। आपके साथ या आपके परिवार में या किसी दोस्त के साथ कोई साइबर क्राइम के अनुभव हुआ हो तो बताइए।
1: नहीं, अभी तो नहीं हुआ। हाँ, मगर पूर्णिया से आते हैं, ये लोटरी खुल लगी, आप ये क्लिक करो, आपको जानकारी दो, ऊपर वो करो, पैसा भेज सकते।
0: हाँ। देखिए, हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि गांव-गांव तक लोग कम से कम साइबर क्राइम तो समझते हैं कि क्या होता है। हमने आपको डिस्क्राइब नहीं किया कि साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है ऐसा वैसा, फिर भी आपने नाम सुन के समझ लिया कि हाँ साइबर क्राइम क्या है। आप लोग इस बात को लेकर जागरूक तो हो चुके हैं कि आपके साथ घर बैठे बैठे भी धोखाधड़ी के लोग प्रयास करते हैं।
1: जो सुनते रहते हैं, बताते रहते हैं, सुनते रहते हैं।
0: हाँ जी जी, रेडियो ने जन जागरूकता फैलाई है।
1: ज्यादा जल्दी से जल्दी ये तो जैसे में दर्द कराए शिकायत को, ये तो बात ही ना करें।
0: सबसे सही बात ये है कि आप इस तरह की जो भी धोखाधड़ी हो रही है या चीजें हैं, बिल्कुल अपने आप को तुरंत फोन काट दें, उनकी बातों में ही ना पड़े, सुने ही ना, नहीं तो वो जितना सुनेंगे उतना आपको लालच देंगे। कई लोग कहते हैं अरे हम भी मजे ले रहे हैं, हम भी सुनेंगे, फिर वो डरा ले जाते हैं, कई बार डरा के धमका के फिर पैसे ऐंठ लेते हैं।
1: सही बात है, ऐसी करते हैं।
0: और आजकल तो ऐसा है कि कोई भी फोटो अगर हम सोशल मीडिया पे अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं तो उससे भी बचें, हमारे फोटो को मॉर्फ कर देते हैं,
1: तो
0: निजी जानकारियां भी सोशल मीडिया पर शेयर करने से बहुत बचें। विकास जी बताइए, आपको हमारे यहाँ के कार्यक्रम में गीत संगीत है वो किस तरह के अच्छे लगते हैं?
1: ज्यादातर खुशी वाले गीत अच्छे लगते हैं।
0: अच्छी बात है, हमें थोड़े से खुशी वाले गीत सुनने चाहिए। मैं बताऊँ, मुझे बताए कैसे गीत अच्छे लगते हैं? जिन गानों में थोड़ी दार्शनिक बातें होती है ना, कि जैसे मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, या फिर कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, जो जिंदगी वाले गाने होते हैं मुझे वो अच्छे लगते हैं।
1: वो बहुत अच्छे लगते
0: हैं। हाँ, बताइए कोई एक खुशी वाला गीत जो आपको बहुत पसंद हो।
1: आज हम तो भी सुनना है मोहब्बत रफी के आवाज, बावल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिली।
0: ठीक है, बिल्कुल सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने समाप्त करने का समय हो रहा है। जाने से पहले बता देते हैं आपको हमारे अगले कार्यक्रम में मुद्दे की बात का विषय। श्रोताओं, हम अगले कार्यक्रम में मुद्दे की बात लेकर आएंगे कि देश की प्रगति में अपना योगदान दें। श्रोताओं, देशभक्ति केवल सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों के लिए नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ईमानदारी से काम करना, समाज में एकता बनाए रखना और देश की प्रगति में योगदान देना भी सच्ची देशभक्ति है। श्रोताओं, जो हमारा अगला फोन इन कार्यक्रम होगा उसमें हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आप इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराने के लिए हमें कॉल लगा सकते हैं दिन सोमवार प्रातः 11 बजे। फोन लगाने के लिए हमारा नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 0-75-82। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: दोस्तों नमस्ते। विविधा के एक और बेहतरीन और नायाब अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में मैं हूं अमरकांत
1: और मैं हूं मनीषा जैन।
0: आप सभी को नमस्कार। तो मनीषा जी, आज जैसे मैंने अभी कहा कि बेहतरीन और नायाब, ये बोलने की जरूरत रहती तो नहीं है, लेकिन अब रस्म तो अदा करनी पड़ती है
1: और ये रस्म आपने बखूबी अदा की अमर जी। क्योंकि आज वाकई बहुत नायाब और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हाथ लगी है जिसका खुलासा मैं इस वक्त नहीं करूंगी, बाद में करती हूँ। और हमारे इस अंक की आज जो शोभा है वो है एक महान गायक और संगीतकार जिनके बारे में हम पहले बात करेंगे। उनका नाम मराठी संगीत से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है, बहुत सम्मान से, बहुत आदर से जिनका नाम लिया जाता है, हम आज उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले जी हाँ श्रोताओं, सुधीर फड़के।

0: सुधीर फड़के जी का नाम, जैसे आपने कहा कि मराठी संगीत के लिए बहुत इज्जत से लेते हैं, उन्होंने बहुत बहुत काम किया मराठी संगीत के लिए, लेकिन हिंदी में भी जो काम उन्होंने किया, चाहे वो कम ही किया हो काम, लेकिन उनकी हिंदी फिल्मों की रचनाएं, अगर एक ही रचना का मैं नाम ले लूं तो अब जैसे भाभी की चूड़ियां,
1: क्या बात है,
0: अब इस फिल्म का नाम ले ले और ज्योति कलश छलके इस गाने को अगर हम सिर्फ यूं ही बोल दें, मतलब पूरा गाना सुनने की जरूरत नहीं है
1: जी,
0: तो भी वो पूरा शरीर झनकृत हो जाता,
1: बिल्कुल रोमांचित हो जाता।

0: जाता है और वो एक स्वर्णिम उपहार है, जैसे सुधीर फड़के जी का हिंदी सिनेमा को दिया गया, पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना और वैसा ही दिव्य स्वर लता जी का।
1: अब यहाँ एक और बात मैं करूँगा इससे पहले कि आप अपने पिटारे में से कोई नायाब सी चीज निकाल कर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। सुधीर फड़के साहब की ये कला का ही एक बड़ा जादू कहना चाहिए, चमत्कार कहना चाहिए, कि जहां एक तरफ सुधीर फड़के साहब ज्योति कलश छलके जैसी रचना बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से बना देते हैं खुश है जमाना आज पहली तारीख है,
0: कमर जलालाबादी की वो रचना।
1: आप बताइए मुझे कितना कंट्रास्ट है। आप कोई कह सकता है कि ये ज्योति कलश छलके जिसने गढ़ा है, जिसने रचा है, और किशोर कुमार जैसे महान कलाकार,
0: क्या बात,
1: मतलब ये बताने का कारण सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि एक कलाकार की रेंज क्या है। देखिए आप वो कहां से कहां तक, जमीन से आसमां तक सब कुछ एक करने की हिम्मत रखता, मादा रखता।
0: बिल्कुल, और ऐसा ही विस्तृत फलक, ऐसा ही बड़ा कैनवास सुधीर फड़के जी का। आज हम याद करें सुधीर फड़के जी को, 25 जुलाई 1919 को इस महान कलाकार का जन्म हुआ और 29 जुलाई 2002 को हम सबसे ये विदा ले गए। उनके बारे में हम क्या कहें, उनकी रचनाओं के बारे में हम आपसे क्या कहें, बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इनका जो मूल नाम था ना श्रोताओं, वो था राम फड़के। और HMV कंपनी के लिए जब वो संगीत दे रहे थे, गीत बना रहे थे, तब उन्होंने अपना नाम सुधीर रख लिया था। जन्म हुआ था कोल्हापुर में और इन्होंने संगीत की जो शिक्षा ली थी, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो वामन राव पाध्ये साहब से कोल्हापुर में ही ली थी और बाद में उन्होंने HMV से करियर की शुरुआत की 1941 में और प्रभात फिल्म कंपनी से वे जुड़ गए थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर 1946 में। तो इस तरह से सुधीर फड़के जी ने एक तरह से संगीत में अपना जो योगदान दिया उसको तो कोई भुला नहीं सकता। आज तक उनके संगीत को लेकर हम सब बहुत रोमांचित होते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण रचना अमर जी उनकी जो रही है, जिसके बारे में किसी भी संगीत मर्मज्ञ से बात कीजिए तो वो जरूर बात करेगा, और वो है गीत रामायण।
1: जी मनीषा जी, मैं आपको ये बता दूं के गीत रामायण गदी माड़गुड़कर इनकी जो रचना है, ये बहुत बड़े कवि मराठी साहित्य में बड़े सम्मानित कवि हैं, इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है और इनकी रचना को इन्होंने स्वरबद्ध किया और फड़के साहब और गदी माड़गुड़कर साहब के जो ये जुगलबंदी हुई
0: जी।
1: वो ऐसा एक सुरीला इतिहास है जो सदा सदा के लिए अमर हो गया है और जब तक संगीत रहेगा तब तक ये गीत रामायण जरूर याद की जाएगी।
0: और हम ये भी बताना चाहेंगे कि 1955 से लेकर 1956 लगभग एक साल तक आकाशवाणी से इस गीत रामायण का प्रसारण हुआ था और उसके बाद इसने, जैसा आपने कहा ना, कि इतिहास ही रचा है और आज तक हम इसे याद करते हैं, इसे सुनते भी हैं। हमारे कई श्रोता इस वक्त इस गीत रामायण को याद करेंगे। मुझे लगता है हमारा दायित्व बनता है अमर जी कि गीत रामायण की एक झलक हम थोड़ी सी आज के कार्यक्रम में सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल।
2: से

0: मनीषा जी, ये गीत रामायण सुनने के बाद फिर एक ट्रांस में जैसे चले जाते हैं ना, उस तरह से कुछ फील हो रहा है
1: जी। हाँ,
0: फिर वो पुराना दौर, वो पुराना समय, वो पुराने रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो याद आ जाती हैं जब भी कभी इस तरह की रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ एक बात और सुधीर फड़के जी के बारे में बता दें कि सुधीर फड़के जी ने न सिर्फ संगीत को रचा बल्कि देश के प्रति, आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है उनके प्रति भी उनके लगाव को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने वीर सावरकर पे
1: एक फिल्म
0: बनाई। और इस फिल्म के पीछे एक और बात है कि ये फिल्म मनीषा जी चंदे से बनी है।
1: जी हाँ,
0: इस फिल्म के निर्माण के लिए लोगों से चंदा लिया गया और इस तरह से ये फिल्म बनी। और ये फिल्म सुधीर फड़के जी ने समर्पित किए उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया देश के लिए, मातृभूमि के लिए। तो एक कलाकार भी किस तरह से अपना योगदान, अपना सरोकार जाहिर कर सकता है समाज के प्रति, देश के प्रति, ये बताया सुधीर फड़के जी।
1: जी हाँ, और इसी महान कलाकार की रिकॉर्डिंग आज हमारे पास है। श्रोताओ, उनकी आवाज है, और हालांकि ये रिकॉर्डिंग जो है ये अवधि इसकी कम है, लेकिन आपको आनंद आएगा अवश्य उनके आवाज को सुनकर, उनके द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम को सुनकर। आइए सुनते हैं अमर जी श्रोताओं के साथ सुधीर फड़के जी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: सुनने वाले भाई बहनों को नमस्ते। आप तो जानते ही हैं कि मेरा कार्यक्षेत्र मुख्यतः संगीत है। इसी माध्यम के द्वारा लगभग 30 वर्ष से मैं आपका मनोरंजन कर रहा हूं। परंतु एक बात आपको मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मैंने संगीत रचना करते समय केवल मनोरंजन ही करना नहीं चाहा। मनोरंजन के साथ साथ और भी एक बात सदा मेरे मन में रही है, एक आदर्श मेरे मन में रहा है। आप पूछेंगे वह क्या है, तो मित्रों मेरा आदर्श है मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान, उसकी सभ्यता और उस सभ्यता से जन्म ली हुई कलाएं। मैं अपने देश की अन्य कलाओं को तो नहीं अपना सका, किंतु संगीत की सेवा मैंने अवश्य की है। संगीत का केवल व्यापार करने से अधिक संगीत के माध्यम का उपयोग करके अपनी संस्कृति के अच्छे आदर्श आपके सामने रखने का प्रयत्न मैंने अवश्य किया है। इसमें मैं कहां तक सफल हुआ हूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने प्रयत्न अवश्य किया है, जिसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आवाज आपकी मनचाही गायिका लता जी की है। कविवर पंडित नरेंद्र शर्मा जी के इस गीत में जिस शुद्ध भारतीय संस्कृति का चित्र उभर कर सामने आता है, उसके लिए आवश्यक बात यह थी कि उसको किसी शुद्ध राग में ही संगीतबद्ध किया जाए। उचित अवसर की यह बात मैंने इसलिए कही कि फिल्मों में गीत बनाए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, इसीलिए हम लोगों को सिचुएशन का गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। लेकिन मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कथाकार, कवि और निर्देशक की कल्पना पूर्णतया साकार हो और उस सिचुएशन को पूर्णतया न्याय मिले, इसी प्रकार की स्वर रचना करने का प्रयत्न मैंने अपने जीवन भर किया है।

दोस्तों, इस समय यह अवश्य कहूंगा कि फिल्मों में संगीत देने के लिए मेरी दृष्टि से शास्त्रीय संगीत की जानकारी आवश्यक है। कारण शास्त्रीय संगीत ही वह संगीत है जो स्वरों की असली पहचान कराता है, लय का ज्ञान देता है। जिस प्रकार बिना नींव के इमारत टिक नहीं सकती, उसी प्रकार बिना स्वर ज्ञान के सही संगीत निर्देशन नहीं हो सकता। इस विषय में मेरे गुरु स्वर्गीय गायनाचार्य पंडित वामनराव जी उपाध्याय का मैं बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने ही मुझे स्वरों का ज्ञान दिया। जो कुछ भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, यह सब उन्हीं की कृपा है। साथियों, बात ही बात में मुझे अपने गुरु याद आ गए। गुरु और शिष्य में कितना प्रेम होता है, इसका अनुमान वही लगा सकता है जो कभी किसी का शिष्य बना हो। इन्हीं शब्दों के साथ राग जय जयवंती पर आधारित मेरी एक पुरानी फिल्म मालती माधव का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मेरे पुराने मित्र पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा और गाया है लता जी ने।

मित्रों, इस गीत को सुनने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों की मिठास बरसों कम नहीं होती और मन उन्हें बार बार सुनना चाहता है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जो संगीत हमारे देश के जनजीवन में समाया हुआ है वह लोक संगीत है। लोकगीत सीधे आम जनता की भावना से जन्म लेता है। यही कारण है कि समूचे भारत की पंचरंगी सभ्यता से बहुरंगी लोकगीतों ने जन्म लिया है। मैंने भी जहां अवसर पाया लोकगीत का रंग जमाया। बात लोकगीतों की चल रही है तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि लोकगीत किसी विशेष अवसर या मौसम से संबंधित होते हैं और उसी समय गाए जाते हैं। जैसे नाव चलाते हुए मांझी गीत गाते हैं, झूला झूलती हुई लड़कियां सावन के गीत गाती हैं, और इन्हीं अवसरों में एक अवसर ऐसा भी होता है जब लड़का दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार ससुर के घर बारात लेकर पहुंचता है। उस समय दूल्हा की बहनें या भाभियां गीत गाती हैं। आपने लड़की की विदाई का गीत फिल्मों में बहुत सुना होगा, परंतु मैं आपको दूल्हा की तरफ से गाए जाने वाले गीत को सुनवा रहा हूँ। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और गा रही है आशा भोसले और उनके साथी।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में
1: त्रिपुरा के पटवा सर के डोले मनवा की ही यारा में उठत ही लो।
0: स्मृति शेष में नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी। जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। और जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता भारती राजा।

0: और
1: सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य

0: बोल रही।
1: मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: तुम भी सजन बरसे जब जब बादल बरसे।
0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
2: प्यादे तो ठीक है
3: जी,
2: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
3: सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
4: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड सगन विचार करें।
5: तू क्या खड़ा हो गया यार? भाग यहाँ से।
6: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनकी जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थीं। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थी विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती रानी की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे, विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पेस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
7: तूने जरू की सूरत देखी है, उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने। बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, नहीं तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है, पन खुदा सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
8: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
8: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी।

0: कड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
2: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय

फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी। मुकुट्टी भी

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

कामयाब फिल्में हैं चिन्नावीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथीन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

के भागीराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्ममेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा। आउटडोर में ना अच्छी लाइटिंग होती है ना आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बीताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लों।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रुज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा। सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस्का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
0: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज की बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: बनारसी ठग फिल्म का गीत आपने सुना। उषा मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, नीरज की रचना थी इकबाल कुरैशी की तरफ से।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओ, सिने जगत के जाने माने गीतकार नीरज की आज पुण्यतिथि है और आज इन्हीं के लिखे नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में।
3: कल की पल पल

कल आज और कल इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ें शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर इस गाया मोहम्मद रफी ने कन्यादान फिल्म का गीत आपने सुना, नीरज का लिखा।

0: गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। नीरज के लिखे आज के सभी गीत थे और सचिन देव बर्मन की तर्ज थी इस गीत में। श्रोताओ, यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होट

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

और भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, थोड़ा मौसम का तकाजा है, थोड़ा थोड़ा सा प्यार, थोड़ी खुशियाँ, तो सुरों सरगम की बहार लिए और तमाम गीतों को लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे उन श्रोताओं के लिए बता दें जो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं या जो हमारे नए श्रोता हैं, उन्हें लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़ सकते हैं इस पते पर हमारे कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। आज की जो इबारत है श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जो फेसबुक पर देखा है, जिन्होंने उन्होंने तमाम सारे कमेंट्स भी लिखे हैं, तो ये इबारत अपने रेडियो श्रोताओं के लिए एक बार फिर पढ़ देते हैं। कायनात की सुंदर तस्वीर किसी शहंशाह के ताज में जड़े नगीनों से कम नहीं, इन्हें देखते आंखें थकती नहीं। मुझे याद है वो जीवन से भरी आंखें जो तस्वीर में भी बातें करती थी, वो जुल्फ झूमती हवाओं सी जो प्यार में अरमानों को जगाती है, प्यार बनकर दिल के साहिल से टकराती है। मोहब्बत के मोती थे यादों के कैनवास पर, लेकिन वो बात तस्वीर में कहां जो आपकी बातों में है। तुम्हारे बहुत सारे श्रोताओं ने तस्वीर के बारे में लिखा है। जी हाँ, तस्वीरें जो कभी हाथ से बनाई गई, कभी दिल में उकेरी गई, कभी प्रकृति के सुंदर नजारों में नजर आई, कभी जिंदगी में रंग भरती हैं, तो कभी सपनों में चित्र बनकर उभरती हैं। ये तस्वीरें आपको कितना प्रभावित करती हैं श्रोताओं, तस्वीरों से जुड़ी यादें आपको साझा करनी है आज के इस कार्यक्रम में। इन तस्वीरों में कुछ फूल भी रंग भरते हैं, कुछ नजारे भी रंग भरते हैं, कुछ सितारे भी रंग भरते हैं,

एक तस्वीर इस गीत में नजर आती है श्रोताओं, यानी कह सकते हैं कि अभिनेत्री की तस्वीर है। और ये कौन सी अभिनेत्री है ये अगर आपने फिल्म देखी है तो बता सकते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत था, किशोर कुमार की आवाज में, नीरज के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी और हमने गीतकार का नाम पूछा था। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक इसका जवाब भी लिख भेजा है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें ठहरे हुए समय फ्रोजन टाइम को परिभाषित किया करती हैं, जो कि बीते हुए लम्हों को उसी रूप में संजोए रखती हैं जैसे उन पलों को पुराने समय में हमने जिया। जब यादें कुछ कुछ धुंधलाने लगती हैं तब तस्वीरें ही हमें यादों के उन्हीं गलियारों में पहुंचा देती हैं जहां यहां तस्वीरें केवल इन्होंने इनका ये जो मैसेज है वो कहीं इधर उधर हो गया है। श्रोताओं हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर ये मिल जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये इबारत यादों के कैनवास पर मोहब्बत की एक ऐसी नज्म है जहां तारीफ से शुरू हुआ सफर सादगी और हकीकत के दीदार पर आकर मुकम्मल होता है। इसमें मोहब्बत की शिद्दत भी है और उर्दू हिंदी शायरी की वो सुंदी सी महक भी। जिस तरह कायनात की तुलना शहनशाह के ताज में जड़े नगीनों से की गई है वो पढ़ते ही जहन में एक भव्य और चमकदार दृश्य पैदा करता है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं गीतों के बारे में कि एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताज महल और लीडर फिल्म के गीत को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि तस्वीरों यादों और घटनाओं का जीवंत प्रमाण होती हैं। तस्वीरों को देखते ही हम एक सेकंड में यादों के गलियारों में पहुंच जाते हैं। तस्वीरें अतीत को जगाती हैं और अगाध भविष्य के लिए धरोहर की तरह हैं, जैसे वो खूबसूरत ताजमहल या फिर जीवन से भरी तेरी आंखें। दुनिया में ये सब खूबसूरत कायनात की तरह जीने का सबब भी तो है। कुछ तस्वीरों में प्रेम भरी नदी सतत बहती दिखाई देती है। इस संसार में कुछ भी ठहरता पर तस्वीरों में हम जिंदा रहते हैं, जैसे कि ताज और हमारे बुजुर्ग जिनसे हमारा गहरा नाता जुड़ा है। कल को हम भी इन्हीं तस्वीरों के द्वारा याद किए जाएंगे। तस्वीरें वक्त की ऐनक हैं। अगर तस्वीरें न होती तो हम ताज का तस्वीर कैसे कर पाते।

बताओ क्या आपने ताज का दीदार किया है? अगर किया है तो चांदनी रात में ये कैसा नजर आता है, आप चाहें तो बता सकते हैं। लीडर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आपको बताने हैं और वैजयंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी इबारत तस्वीर की बाहरी शोभा और यादों की भीतरी गहराई का सुंदर संतुलन बयां करती है। तस्वीरें सिर्फ गुजरे हुए वक्त का आईना होती हैं, खूबसूरत मगर खामोश, वे धड़कनों को थाम कर रखती हैं लेकिन उनमें जान नहीं फूंक सकती। असली जुदाई एहसास तो उस आवाज की खनक और बातों के उतार चढ़ाव में है जो रूह को छू लेती है। कैनवास पर उकेरी गई कायनात कितनी भी हसीन क्यों ना हो, वो उस एक पल के सामने फीकी है जब किसी अपने की बातें सीधे दिल के साहिल पर दस्तक देकर स्मृतियों को फिर से जीवंत कर देती हैं। सच ही तो है, तस्वीरों में रूप बसता है पर बातों में रूह। एक और श्रोता ने लिखा है, कायनात की खूबसूरती की तस्वीर किसी एक रूप में नहीं है, वो तो उगते सूरज की सुनहरी किरणों से लेकर डूबते सूरज की नारंगी आकाश तक में है। कभी रात के सन्नाटे में, तो कभी टिमटिमाते तारों में, कभी माँ के हाथ के खाने में, तो कभी किसी अनजान बच्चे की हंसी में। कायनात की तस्वीर इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उसमें मोहब्बत है, और मोहब्बत की तस्वीर इसलिए खूबसूरत इसलिए है कि उसमें कायनात है। तो क्या ही बात है श्रोताओं, आप ये बताएं कि क्या आपको तस्वीरें बनाना पसंद है? प्रकृति की तस्वीर आपको बनाना अच्छा लगता है या फिर किसी इंसानी व्यक्तित्व की? एक और सवाल आपसे जोड़ लेते हैं कि कौन सा रंग तस्वीरों में भरना आपको सबसे प्यारा लगता है? वैसे जो पहला रंग गीत में भरा था वो प्यार का रंग था, जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया, और अब इस गीत को आपको पहचानना है। जो चित्रकार हैं उनका नाम बताना है और जो चित्रकार हैं वो किन की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर तस्वीरें आपने भी अपने एल्बम में सजा रखी होंगी। श्रोताओं, आजकल तो मोबाइल का जमाना है कि जब चाहें तब तस्वीरें निकाल सकते हैं, तो एल्बम की बात करें और मोबाइल की तस्वीरों की बात करें, तो किन्हें संजोना आपको अच्छा लगता है और किन तस्वीरों को आपने ज्यादा समय तक संजो कर रखे हुआ है, तो ये बात आप हमसे साझा कर सकते हैं। आप सुन रहे थे ये गीत सफर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में और राजेश खन्ना जो शर्मिला टैगोर की तस्वीर बनाना चाहते हैं, ऐसा हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारी श्रोता लिखती है, समस्त सृष्टि की चित्र प्रतिमाएं सम्राट के मुकुट में जड़े रत्न मणियों जैसी लगती हैं, जिसे देखने को आंखें आतुर रहती हैं, जैसे कि किसी की बोलती आंखें रेशमी लहराती जुल्फें प्यार की ख्वाहिशों को जगाकर रूहानी मोहब्बत बन जाती हैं, यही प्यार की मोती स्मृतियों के पर्दे पर बिखरने लगते हैं, तब लगता है वास्तविक अनुभूति की अनोखी बात। और एक और श्रोता लिखते हैं, लियोनार्डो द विंसी के द्वारा कैनवास पर बनाई गई तस्वीर में इस कायनात के सारे रंग मौजूद हैं, रहस्य रोमांच मुस्कान शालीनता सुंदरता सब कुछ ही तो समाहित है। आप जिस एंगल से इस तस्वीर को देखोगे, इसकी सम्मोहित करती आंखें उसी और से आपको दिखाई देंगी। ऐसा लगता है कि हम तस्वीर नहीं देख रहे बल्कि तस्वीर हमें देख रही है। तस्वीर बना बीते हुए दिनों की यादों का पिटारा होती है। आज भी जब मैं पुरानी तस्वीरों को देखता हूँ तो सारी यादें मस्तिष्क पटल पर चलचित्र की भांति घूम जाती हैं और बीते दिन याद आ जाते हैं। कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखे हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। और एक और श्रोता ने लिखा है शब्दों के बारे में कि तस्वीर शहंशाह जीवन आंखें जुल्फ झूमती मोहब्बत और बात, ये शब्द शायद हो सकते हैं। अब आपको ये तस्वीर किनकी बन रही है पहचानना है और ये अदाकार कौन है।

भारत भूषण पर फिल्माया गया संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का ये गीत था शैलेंद्र का लिखा एसएन त्रिपाठी की तर्ज से मुकेश की आवाज थी। एक श्रोता लिखते हैं, आज इबारत यादों के कैनवास पर तस्वीरों की बातें कर रही हैं, इसलिए गीत इन्हीं पर आधारित होंगे और कुछ गीत इन्होंने बताए हैं, बेशक यही गीत हैं और तस्वीरों की बातें हम कर रहे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीतों के बारे में और उसके बाद तुमने रख तो ली तस्वीर हमारी, पर ऐसे तो हो जिस तरह मौसम बदलता है तुमको भी देखूं रंग बदलते हुए। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर आंखें जीवन जुल्फ प्यार हवा मोहब्बत तस्वीर मोती साहिल ये वर्ड्स हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है, आज के शब्द जीवन आंखें ठंडी हवा जुल्फ मोहब्बत और तमाम इन्होंने शब्द लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, गद्यांश में आज तस्वीरों की बातें हुई हैं जो प्यार के एहसासों और यादों की महफिल सजाए हुए हैं। एक और श्रोता लिखती है, तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसे देखते ही मन उड़ने लगता है, आज तस्वीरों के माध्यम से सुंदर गीत सुनेंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत तस्वीरों में समाई हुई है, ये तस्वीरें सिर्फ कैमरा द्वारा या कागज के कैनवास पर खींची रंग भरी लकीरें नहीं, बीते हुए लम्हों की यादें हैं जिसे देख मन उन पुराने गलियारों की ओर चल पड़ता है, जिसे देख दिल बोल उठता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हाँ, एक बात है, जो बात तुझमें मुझमें या हम में है वो तस्वीर में नहीं हो सकती, लेकिन इन्हें देखकर दिल बोल उठता है। हमने देखी है तस्वीरों में उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छूकर इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। और कुछ बातें इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमारे पुराने यादों की गठरी खुलने वाली है। सच में हमें काफी समय हो गया है हमारी अलमारी में रखे एल्बम को देखा नहीं हमने। आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, जरूर हम एल्बम में सजाए फोटो का दीदार करेंगे और सुरीला सफर में बने रहेंगे। जी हाँ, तो बने रहिए सुरीला सफर कार्यक्रम में और बताइए कि एल्बम में कौन कौन सी तस्वीरें आपने सजा रखी हैं। और हाँ, क्या आपके एल्बम में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हैं?

श्रोता लिखते हैं कि एक तस्वीर सच में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या चेहरे का अक्स नहीं होती, अक्स होना चाहिए था श्रोताओं यहाँ पर, बल्कि ये बीते हुए समय का एक ठहरा हुआ दर्पण है। ये हमें उन अनमोल पलों और एहसासों, भावनाओं और यादों के समंदर में वापस ले जाती है, जहाँ रंगों की जीवंतता और प्यार की महक आज भी ताजा महसूस होती है। ये बीती हुई यादों को संजीवने का सबसे खूबसूरत और भावात्मक जरिया है। वास्तव में तस्वीरें हमारे जीवन की वो खिड़कियां हैं जिसे हम जब चाहें अपने बीते हुए कल को झांक सकते हैं और अपनों के साथ बिताए प्यार को फिर से महसूस कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हमारे शहर में बारिश की आशा है। जी हाँ, तो बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, सागर भी तरसते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, और तमाम सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता ने जीवन से भरी तेरी आंखें, झूमती चली हवा, तस्वीर तेरे दिल में, ये सारे गानों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं ये कायनात के रहस समझना सचमुच बहुत मुश्किल है, सुंदर सी ये रचना किसी मूर्तिकार की मूर्ति की तरह नजर आती है। कुछ गीत लिख रहा हूँ, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है एक शहंशाह ने बनवाकर, और कुछ एक गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं किसी की खूबसूरती की बातें होने वाली हैं, उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसके आंखों की भी बातें तो हम जरूर सुनेंगे। और इन्होंने और कुछ भी बातें लिखी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वक्त के हाथों में सबकी तकदीर है, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं, तस्वीर तेरी दिल में, और तमाम गीतों को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर के बारे में लिखना, तस्वीर बनाता हूँ नहीं बनती, और एक ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं बनती, और गीतों को मिलाकर इन्होंने कुछ पैरोडी की तरह बनाया हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं तस्वीर और हकीकत का रिश्ता बड़ा अजीब है, तस्वीर वक्त के समंदर से चुराया हुआ एक ठहरा हुआ लम्हा है, जहाँ न कभी उम्र बढ़ती है और न मुस्कुराहट फीकी पड़ती है, जबकि हकीकत लगातार बहती हुई नदी है जो हमें आज के सच से रूबरू कराती है। तस्वीर अतीत की एक सुरक्षित तिजोरी है जिसे विपरीत हकीकत गतिशील है, जहाँ वक्त का गुजरना, चेहरे की झुरियां और अनुभवों का जुड़ना शामिल है। तस्वीरें यादों का आईना होने के नाते बेहद जरूरी हैं, लेकिन जब कोई हकीकत में हमारे सामने बैठकर बात करता है तो उसकी आवाज की खनक और सांसों की गर्माहट जो जीवंत एहसास देती है, उसे दुनिया का बड़े से बड़ा फोटोग्राफर भी कभी कैमरे में कैद नहीं कर सकता, ऐसा इनका लिखना है। कश्मीर की तस्वीर के बारे में हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के बारे में पूछा था। क्या आपको सनसेट की तस्वीरें निकालना पसंद है?

श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे बिन बादल बरसात फिल्म से, जो आशा पारेख और विश्वजीत पर फिल्माया गया। और इसके पहले हमने बेमिसाल फिल्म का गीत आपको सुनवाया था, विनोद मेहरा अमिताभ बच्चन और राखी पर फिल्माया गया ये गीत। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेम रस में डूबी इबारत तस्वीर के सहारे झूमती हिचको लिखाती समुद्र में गोती लगा रही है, प्रेम रस से सराबोर गीत आज बजने वाले हैं, तो आपको इसके लिए तो कार्यक्रम सुनना होगा।

एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर में मुस्कुराती वो लड़की जैसे खामोश कहानी हो, उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी मुस्कान को छुपाती है और देखने वाला अपनी यादों का अर्थ उसमें ढूंढ लेता है। एक और श्रोता ने इस टेक्स्ट को अंग्रेजी में लिखा है, वैसे आप हिंदी में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। श्रोताओं, इनका टेक्स्ट हम पढ़ देते हैं क्योंकि इनके कई बार टेक्स्ट आ चुके हैं और सारे अंग्रेजी में ही रहते हैं, तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हिंदी में टेक्स्ट लिखें तो बहुत ही क्या ही बात है। फिर लिखते हैं कि द टेक्स्ट इज अबाउट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड एंड दैट इज आईज। विदाउट दैट गिफ्ट ह्यूमन लाइफ इज यूजलेस। ब्यूटीफुल आईज आर पार्ट एंड पार्टिकल ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड पोइम्स आर एज वेल एज प्रोज हैव डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ आईज। ऑल द बेस्ट। इन्होंने एक दूसरे श्रोता हमारे लिखते हैं, कायनात की सबसे सुंदर खूबसूरत तस्वीरें अक्सर दिल में बसती हैं। कुछ आंखें, कुछ जुल्फें और कुछ बातें उम्र भर याद रह जाती हैं। वक्त बीत जाता है मगर उनकी यादें दिल के साहिल पर लहरों की तरह लौटती रहती हैं। मोहब्बत की मोती आज भी यादों के कैनवास पर चमकते हैं। तस्वीरें बहुत कुछ संभाल लेती हैं लेकिन एहसासों की गर्माहट कहां सहेज पाती हैं। इसलिए दिल आज भी धीरे से कह उठता है, वो बात तस्वीर में कहां। जो आगे भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। आप फिलहाल ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए कि ये जो चिट्ठी है यानी जो खत है उसमें किसकी तस्वीर नजर आती है और ये अभिनेत्री कौन है।

जागीरदार जो एक्टर हैं उनकी तस्वीर नजर आती है इस गीत में श्रोता, जो अभिनेत्री अजरा के हाथ में है। बाबर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल लुधियानवी का लिखा, रोशन का संगीत था। ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत प्यार मोहब्बत वादे बोलती आंखें लहराती जुल्फें कस्में वादे प्यार वफा जैसे खूबसूरत अल्फाजों से सजे एहसासों को प्रदर्शित करती है। समय का चक्र इन घावों पर

मलहम लगाकर भर देता है, पर फिर भी दिल के किसी न किसी कोने में वो तस्वीर उभर आती है जो अतीत के जीवन को साफ साफ दर्पण में जो अतीत को साफ साफ दर्पण में दिखती है। अतीत की यादें कभी मिट्टी नहीं है, वो धुंधली जरूर हो जाती हैं। जी हाँ, इन्हीं तस्वीरों की यादें आप साझा कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि उनमें कोई चेहरा है, बल्कि इसलिए होती हैं कि उनमें एक सच्चा एहसास बसा होता है। जब सादगी और मुस्कान साथ हो तो तस्वीर सिर्फ देखी नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। तो आपको भी ऐसी ही तस्वीरों के बारे में बताना है। और श्रोताओं, आजकल तो लोग यानी कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं ऐसी जगहों की तरफ घूमने चल दिए होंगे जहां बारिशों में बड़ी सुंदर तस्वीरें उतारी जा सकती हैं। तो क्या आप भी ऐसे सफर पर हैं, या कभी आपने बारिशों की तस्वीरें किसी खास जगह पर उतारी हो तो आप हमसे जरूर कह सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर की बात कहूं तो जब मैं एनसीसी कैंप भोपाल गया था तो मुझे राइफल SLR चलाने के लिए दी गई थी। सचमुच ही वो मुझे बहुत आज भी याद है। उस राइफल की तस्वीर आज भी मेरे एल्बम में रखी हुई है, जिसमें दाहिने हाथ में मैं खड़ा हूँ, बाएं हाथ में मेरे मैनेजर सर है। सचमुच ही तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सुरीला सफर।

मधुबाला की जो तस्वीर है वो बहुत सारे शीशों में नजर आती है श्रोताओ, इन शीशों की कुछ खासियत है, इनके बारे में क्या आप जानते हैं तो हमें जरूर लिखें। मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति के रंग कभी बनावटी नहीं होते, इसलिए वे हमेशा दिल को अच्छे लगते हैं। शायद सच्ची खूबसूरती भी वही है जो बिल्कुल सहज हो। हर फूल एक रंग है, हर पत्ता एक मुस्कान और हर सुबह प्रकृति की बनाई हुई एक नई तस्वीर, बस उसे महसूस करने का मन होना चाहिए। एक और श्रोता लिखती है, रात में जब चांद की रोशनी सफेद संगमरमर से बने ताजमहल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा ताजमहल चांदी की हल्की परत से ढक गया हो। यमुना नदी के शांत जल में ताजमहल का प्रतिबिंब इस सौंदर्य को और भी मोहक बना देता है। आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार।

जहाँ है कदम तेरे वहीं मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वहीं मेरा दिल झुके, जहाँ पलके तेरी खुले, जहाँ जुल्फे तेरी।

माला सिन्हा और देवानंद पर फिल्माया गया ये किताब सुन रहे थे। फिल्म माया से मजरू सुल्तानपुरी का लिखा सलील चौधरी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखती है, सुंदर चेहरा और सुंदर आंखें केवल ईश्वर के द्वारा ही बनाई जा सकती है, असलियत में चित्रों में नहीं। एक और श्रोता लिखती है, चांदनी रात में खिली किसी मुस्कान सी वो हसीन तस्वीर जैसे किसी खूबसूरत नज्म का अधूरा शेर हो, इसे निहारते हुए ऐसा लगता है

बारह तरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, खुमार बाराबंकी के बोल थे, शौकत दहलवी के तर्स आपने सुनी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैंने बहुत से पेंटिंग जिसमें सीनरी फूलों की अल्पना मॉडर्न पेंटिंग वगैरह बनाई है, शादी ब्याह के बाद अब कुछ खो गई हैं, कुछ खराब हो गई हैं। तो पेंटिंग जो है, मेरे चाचा को तरह तरह की पेंटिंग बहुत पसंद थी, उन्होंने मेरी पेंटिंग्स की बहुत कदर की और सामान जैसे ब्रश, कलर, बोर्ड बहुत खरीद कर दिए। अब वो नहीं हैं और उनके घर से पेंटिंग कहाँ गई पता नहीं। मेरी एक मॉडर्न पेंटिंग मेरे पिताजी के एक मित्र ले गए थे। जी हाँ, अगर कोई कला आप में है तो उसके लिए लोग आगे आएं और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो दें तो क्या ही अच्छी बात है। जैसे इन्होंने ब्रश और पेंट्स की बात कही। एक और श्रोता ने लिखा है कि 1970 में बहन की शादी की ब्लैक एंड वाइट एल्बम जब देखते हैं तो आश्चर्य होता है। उस समय के छोटे छोटे बच्चे आज 56-60 साल के हो गए हैं। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज हमारे शहर का मौसम खूबसूरत है, मौसम ठंडा है, रिमझिम फुहार हो रही है, मैंने इस मौसम की तस्वीर वीडियो बनाकर रखा हुआ है। पिछले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं, जो गीत आपने सुना, और इस गीत में आप बताइए कि अभिनेत्री कौन है।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि सनराइज सनसेट की फोटो खींचना बहुत पसंद है और बादलों की काली घटाओं की रात में चांद की तारा मंडल की सबकी फोटो खींचना बहुत पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सूर्योदय सूर्यास्त नदियां तालाब झील पर्वत देवदार और वृक्ष पक्षी ये सब बनाने में अच्छा लगता है।

0: शहर का तस्वीर है इस तस्वीर में, ताजमहल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस तस्वीर में जो मुकम्मल बन नहीं पाती, ये है बीना रॉय की तस्वीर और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। रोशन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जी हाँ, परिवार के संबंधियों, यात्रा, प्रकृति सभी की हैं तस्वीरें, और नाना नानी, दादा दादी जी, माँ पापा की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी हैं। तो तस्वीरों की यादों को ताजा करता कार्यक्रम सुरीला सफर अब यहीं संपन्न होता है।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये प्रसारण आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। इस समय दोपहर के 2 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

अरिजीत सिंह और एकलव्य की आवाज़ में अभी आपने मनोज मुंतशिर का लिखा गीत सुना। संगीतकार थे रोचक कोहली। फिल्म का नाम था थैंक गॉड। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत में आवाज़ें हैं देव नेगी, श्रुति राणे और साथियों की। कुमार ने लिखा है, गौरव दास गुप्ता का संगीत है और फिल्म का नाम निकम्मा।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव रहा है।
1: ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है। ऋग्वेद में भी कहा गया है हमारे संकल्प समान हो, हमारी सोच समान हो, हमारी संवेदना समान हो, ताकि हम सब एकता समरसता और सद्भाव के प्रतिमान स्थापित करें।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जगदीशपुर में बैठक के दौरान 10.54 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि 1460 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सानू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री रिजिजू ने कहा,
2: पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के

0: लेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को लगातार सेटों में 21-17, 21-17 से हराया। इससे पहले उन्होंने 2024 में सैयद मोरी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती थी। पीवी सिंधु जापान ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन में लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल सुंदर के स्थान पर ऑलराउंडर हर्ष दुबे की टीम को शामिल किया गया है। भारत ने साउथहैम्पटन में श्रृंखला का पहला मैच जीता था, जबकि इंग्लैंड के कार्डिफ में दूसरा मैच जीतकर श्रृंखला बराबर कर ली। भारतीय टीम आज का मैच जीतकर एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला अपने नाम करना चाहेगी। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हैं। अगले 24 घंटों के लिए छतरपुर पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर संभाग सहित प्रदेश के 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल इंदौर उज्जैन समेत कई जिलों में मौसम सामान्य और साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के आसपास 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक टर्फ सिस्टम सक्रिय है। इसी कारण शनिवार को भोपाल नर्मदापुरम सहित कई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग का अनुमान है कि आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रही। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टानें गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

0: लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई है। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया, भरत व्यास की रचना थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
5: वो तेरे प्यार का।
4: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
6: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
4: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
7: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
4: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
8: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
4: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ಪದ್ಮ

0: आप सुन रहे थे लाज साहब फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी। श्रोताओ सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश आपने सुनी। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनचाहे गीतों का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रोग्राम में। जब विविध भारती है आपके संग, तो सुरीली गीतों की बहार तो लाजमी है श्रोताओ। और ऐसे में हो आपके पसंदीदा गीत तो क्या कहने। तो देखिए आज के मनचाहे गीत प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो शामिल नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

जीने की राह फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज से। इस गीत की फरमाइश की सिमगा से, छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की ये फरमाइश थी। और इसी गीत को सुनना चाहा जारूर वाड़ूर महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चर्पे, रजनी कनीरे, कार्तिक युवराज। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार ने।

पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बारगी नगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इस गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी, धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से, केवर कॉलोनी बाड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओ कार्यक्रम मनचाहे गीत।

फिल्म आंधी का दुगाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तुपानी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

ठाकुर जनरल सिंह फिल्म में आशा भोसले को आपने सुना, असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला गणेश ने, और फरमाइश की आप सभी ने सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी, और केदारनाथ सोसाइटी से, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे। तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला जिला विलासागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्वी, माहिती चंद्रया, मल्लवा, नरेश, लावण्या, महसिविन, रेवंत, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लोफर से मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गीत को सुनना चाहा फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन ने, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, जिला लुधियाना मोहल्लापुर दाखा मंडी से राजेश अरुणा, दीपक गौतम, बिट्टू बिट्टी, अरिहंत, सुरभि और नगीना की फरमाइश आई। गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी इस गीत को सुनना चाहती थी।

ये गीत आपने सुना फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत की फरमाइश की स्वामी देव बोधित सौ भवानी शंकर मिश्रा, गोवर्धन वर्मा, रवि मिश्रा और शंकर लाल पारिक ने, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। खत्री कॉलोनी नया अंसार कच्छ से अब्दुल कादर शरीन, अब्दुल अजीज अफियत, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपार, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मनचाहे गीत प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। रहिए विविध भारती के संग और मनचाहे गीत कार्यक्रम में भेजते रहिए अपने पत्र चिट्ठियां, क्योंकि हमें रहता है आपकी फरमाइशों का इंतजार। दीजिए इजाजत आज के कार्यक्रम से, संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।

0: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहाँ बैठ जाइए ना।
2: बैठ कर क्या करूंगा भाई, यूं ही ठीक हूँ।
1: कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए।
2: मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ।
1: आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं।
2: चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा?
1: नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं।
2: मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब?
1: आप यहाँ बैठ तो जाइए, दुनिया में आदमी है तो एक दूसरे की चिंता तो करनी चाहिए।
2: हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा?
1: मैं लाचार हूँ पिताजी।
2: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
1: नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार। सोच रहे हैं क्या?
2: हाँ? नहीं भाई, सोचूंगा क्या, मेरे पास सोचने को है क्या?
1: घर परिवार में तो सब ठीक है ना?
2: हाँ, सब ठीक ही है।
3: क्या कह रहे हैं आप?
2: राजेश की माँ, जिस धरती पर मैं खड़ा था ना, वो धरती मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है। मैं कैसे खड़ा रहूं यहां, जहां धरती तरक गई हो, दीवारें तरक गई हो, जिंदगी तरक गई हो, वहां राजेश की मां मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा।
3: लेकिन आप क्या कह रहे हैं
1: पिताजी?
2: मुझे गलत नाम से न पुकारो।
1: से बैठिए ना।
2: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
1: इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन?
2: ठीक कह रहे हो तुम भाई।
1: आप जा कहाँ रहे हैं?
2: क्यों
1: नहीं पूछना चाहिए क्या?
2: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है।
1: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
2: यही तो नहीं मालूम है मुझे।
1: क्या कह रहे हैं आप?
2: सच ही तो कह रहा हूं भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहां जा रहा हूं, बस चला जा रहा हूं, चला जा।

0: क्या होगा राजेश?
1: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ।
0: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे।
1: मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
0: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
1: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
0: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
1: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
0: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया तो वे क्या करते?
1: मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
0: तुम क्या कहोगे राजेश, अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अरमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
1: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
0: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
1: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
0: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
1: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
0: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
1: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
0: नरेश का रंग तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
1: और कोई ऐसे रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके।
0: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित के यहाँ जाएगा?
1: फिर कहाँ गए होंगे?
0: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा ऐसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
1: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे।
0: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहती?
1: गलती तो जरूर हुई है माँ।
0: अब कहने से क्या होता है राजेश, तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
1: ऐसा ना कहो माँ।
0: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
1: ऐसा ना कहो माँ, हम तो हैं।
0: कैसे विश्वास करूं मैं, जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा।
1: माँ ये क्या कह रही हो तुम?
0: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
1: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता? पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
0: अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
1: अपनी ओर से तुम्हें पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ।
0: कोशिश तो करनी ही है बेटे, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई। मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी ठिठकी रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गए।
1: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो। जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
0: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी।
1: ये क्या कहती हो माँ?
0: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
1: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
0: तुम ही बताओ, दूसरा मैं क्या कहूँ?
1: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
0: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
1: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा?
0: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी?
2: अभी आई हूँ माँ।
0: क्या बात है बेटी?
2: माँ खाना तैयार हो गया है।
0: मुझे तो भूख नहीं है।
2: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था।
0: भूख होगी तो खा लूंगी।
1: पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ?
2: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
0: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
1: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
2: एक बात कहो माँ।
0: कहो ना, क्या बात है बेटे?
2: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
0: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।
2: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ। तुम कहते हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी ये घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ?
0: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी?
2: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ? मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ?
1: ये सब क्या कह रही हो तुम? बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
2: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूँ।
0: ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
2: क्या करूँ माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ, अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूँ माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है, इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूं माँ, काश कि मैं नहीं रहती माँ।
0: ये सब क्या कहती है बेटी? ये सब मत कहा, मत कहा। जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
2: लेकिन तुम भी चली जाओगी माँ तो मैं कैसे रहूंगी माँ?
0: मैं अभी जा कहा रही हूँ? तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत दुखी हूँ।
1: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगाकर करेंगे। यह और कुछ सोचने का समय नहीं है, अभी तो उन्हें कहीं से खोजकर घर ले आना है।
0: हे भगवान, कहाँ होंगे वो, कैसे होंगे, उनकी रक्षा करना भगवान।
1: ये एकाएक क्या हो गया भैया? तुम सब कुछ जानते हो नरेश, मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सम रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, कभी आपका तार मिला।
3: हाँ मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए हो।
1: नहीं मेरे यहाँ नहीं गए, मैंने तार का जवाब दे दिया था।
3: हाँ मिल गया,
1: लेकिन लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्या कहकर गए थे? कैसे गए यहाँ से?
3: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
1: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वे घर छोड़कर चले गए?
3: दूसरा क्या?
1: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
3: तुम सब समझते हो नरेश।
1: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
3: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती।
1: मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है।
3: नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया, उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
1: कुछ बात भी तो बतलाइए भैया।
3: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
1: गए तो थे।
3: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
1: हुई थी।
3: तुमने क्या कहा था?
1: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
3: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
1: आपके यहाँ क्या बातें हुई?
3: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
1: उन्होंने क्या कहा?
3: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे, और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूँ, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया।
1: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
3: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हज़ार तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती, और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
1: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ?
3: कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
1: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था?
3: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
1: जब ऐसी बात थी तो आपने ही पूरे रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या?
3: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था, और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
1: जानता हूँ मैं वो खास काम, जमीन बाहर में भी खरीदी जा सकती थी।
3: मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
1: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
3: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
1: समस्या? क्या समस्या है?
3: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
1: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
3: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
1: समस्या तो कठिन है ही।
3: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रहा हूँ। ईश्वर करे वे वापस आ जाएं। कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
1: बदनामी तो होगी ही, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
3: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
1: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूँ।
3: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है, और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है।
1: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
3: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना। अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो हम ही लोगों को निभाना है।
1: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया।
3: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
1: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा।

0: पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
1: क्यों बेटे, कुछ पता लगा?
0: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
1: कितने दिन तो हो गए?
0: हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहां जहां सूचनाएं दे सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
1: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
0: अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
1: मेरी भी आशा अब शेष हो गई है, अब क्या होगा?
0: जो ईश्वर की इच्छा होगी। ईश्वर की ही इच्छा है तो किया क्या जा सकता है।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
0: अब मैं क्या सोचू माँ,
1: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
0: ऐसा ना कहो माँ।
1: अब मैं क्या करूंगी बेटे, अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
0: उसके लिए चिंता ना करो माँ, उसके लिए हम लोग हैं।
1: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती, मरती भी तो शांति से मरती।
0: यसे मत कहो माँ, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
1: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
0: होगी क्यों नहीं माँ, कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है, हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
1: मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
0: तुम जो कहोगी वही होगा माँ।
1: इतना आसान है बेटे?
0: है कि नहीं?
1: इतने रुपए लगेंगे?
0: हम लोग खर्च करने को तैयार है माँ।
1: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
0: मैंने नरेश से बातें की है।
1: क्या कहता है वो?
0: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
1: और उससे कुछ ना हो सका तब?
0: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
1: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
0: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी।
1: कौन करेगा इतना खर्च?
0: क्यों, मैं करूँगा?
1: सचमुच?
0: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
1: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
0: हाँ सोच ही लिया है।
1: और बहू से पूछा है तुमने?
0: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए।
1: चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
0: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
1: अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना।
0: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला?
1: सोचना क्या है?
0: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
1: कैसी इच्छा?
0: कृष्णा की शादी की।
1: हाँ शादी तो करनी ही है।
0: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
1: उसमें तो बहुत रुपया लगेंगे।
0: हाँ रुपए तो लगेंगे ही।
1: आएंगे कहाँ से?
0: उपाय करना पड़ेगा।
1: क्या उपाय करेंगे आप?
0: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम ही लोगों को तो करना है ना।
1: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
0: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
1: क्या सब रुपए आप खर्च करेंगे?
0: तो दूसरा कौन करेगा?
1: अनरेश।
0: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
1: सवाल तो उठाना ही पड़ता है, जब दोनों भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है।
0: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेवारी ना समझे तब?
1: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
0: और यदि वो समझने से इनकार कर दे तब?
1: परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
0: और क्या सोचना पड़ेगा?
1: हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे।
0: ओफो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय की थी, वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे। हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
1: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है

0: कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल न करें? अपनी तीन बच्चियां हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है।
1: भैया, भैया, भैया,

प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगी, तब तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ। लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज हर मिनट हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से ऊब गई हूँ माँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है, मेरे कारण पिताजी घर से चले गए, मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो, मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी माँ। मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता माँ। देखो, मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती, मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो। मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई माँ, क्यों लड़की हुई? लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ, तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ।

0: आखिरी सब तो पिछले बार भेंट हुई थी।
1: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
0: ठीक तो है?
1: ठीक ही हूँ।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। भाई मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा।
0: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है।
1: ये अखबार आज का है?
0: हाँ, आज ही का है। लीजिए, देखिए।
1: ये पत्र राजेश ने छपाया है क्या?
0: राजेश कौन?
1: कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपाया है, वही देख रहा हूँ।
2: पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहाँ भी हो लौट आइए। हमें माफ कर दीजिए, पूरा घर दुख में डूबा हुआ है। कृष्णा नहीं रही, माम मरना सुनने है।
1: नहीं रही, माम मरना सुनने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
0: क्या बात है भाई साहब?
1: मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। कृष्णा नहीं रही, क्या मतलब है इसका? कहाँ नहीं रही दुनिया में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
0: ये आपके घर की चिट्ठी है। लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
1: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
0: आपकी पत्नी बीमार है।
1: हाँ, मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? मर गई? कैसे मर गई?

0: ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं घर छोड़कर भाग सकता हूँ तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती? क्या उसने आत्महत्या कर ली? उसने आत्महत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है, मैंने उसकी हत्या की है।
1: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया M.S. बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती,
3: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका हैं सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं कैसे
1: पुराना लग रहा नाता है।
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी थी। काफी पुराने दिन आपको याद आ गए।
2: जी, सही बात है
1: जी। अब रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
2: जी बिल्कुल। मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना, मुझे सुनाओगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ। और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था। लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई, मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से, नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई, बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैं नहीं रचाई। कहते और कोई कहानियां? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ, तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम, कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
1: तो मजा था कि सजा थी?
2: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ, मजा जरा भी नहीं लगता था। पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा, मतलब बच्चों के लिए खिशमिश कहो,
1: सुंदर नाम।
2: लेकिन मुझे लगता है यूनुस इसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
1: जी जी। हाँ,
2: मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे ये मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है। लेकिन चलो, मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
1: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है। फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
2: करेक्ट,
1: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां
2: जी,
1: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको,
2: इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें, कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे, कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था मेरे बचपन में, मैंने तो बहुत कहानियां सुनी। तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का, बाल वांग में लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए, उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें, प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी। उसने भी कैम्ब्रिज में, जब लड़कियाँ मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुँच जाती थी, उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया, लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की। और फिर सोचा, वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह। फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर, चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की। 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
1: और पुणे आ गई।
2: हाँ, पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा हम कहते थे। और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी।
1: बिल्कुल, रघुनाथ
2: पुरुषोत्तम परांजपे।
1: परांजपे जी, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल, फिर पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
2: लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी, और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
1: क्या बात है। तो वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है।
2: ओह डियर, चलो ये मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही बड़ा।
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए। वो तो अभिनेत्री भी थी।
2: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने, या मराठी में कुंकू। हाँ, उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता अपटे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ। लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी।

0: होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी बाको कि ये क्या तुम कहते, इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा पांघर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ, तो उसमें एक किरदार है कोइंड, मछुआरी का, हाँ, तुलसा नाम की, हाँ, बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था। वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकंजम खाना पूना में बैठ के वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए। रोज रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोड़ीवाड़ा है, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है वो, और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी, और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोड़ी टाइप का साड़ी पहनती, गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे अंदाज है उनके वगैरह वगैरह, और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई, और मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ, और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो, और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैनिस्लावस्की पढ़ा, और स्टैनिस्लावस्की का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो
1: जी,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
1: सही
0: है कि
1: सही।
0: रोल कैसे जीते हैं वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हट के, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी।
1: हाँ, कमाल की बात है। हाँ, बड़ी शरारती थी।
0: नहीं, शरारती नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती, लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम्हें सही की तरह पिटाई करने का। और मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है, माँ पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड़ कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना।
1: वाह वाह, हाँ, बड़ा प्यारा
0: तो, हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी नहीं, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ। तो माँ ने नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही, मैंने जिद की और बहुत ही हट गई, मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं, और बाकायदा मुहूर्त देखा। और फिर तुलसी बाग करके पुणे में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे, मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना, वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से। और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
1: अरे वाह,
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे

0: नाना से सड़क का नाम दिया था। तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई। और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुना में कि सही के गुड़िया की शादी।
1: गजब गजब। हाँ, ये तो इतनी भव्यता के साथ शादी की गई
0: जी। और मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई।
1: हाँ, ये भी एक विडंबना की बात
0: लेकिन
1: है। ये वाला जिक्र आगे की तरफ करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों
1: एक
0: नहीं?
1: फिल्म में जो बात आती है, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी, मुझे लगता है उसी जज्बात को वो आगे बढ़ा।
0: क्या बात,
1: तो वो गाना सुनते हुए आगे बढ़ाते हैं बात।

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स डिकेंस और सब बड़े साहित्यकारों को पढ़ रखा था,
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन, स्कॉट, और ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी, नाना के साथ पढ़ती थी और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स,
1: यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है, भारा भागवत और दुनिया भर के साने गुरुजी और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिड़क की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकानापन कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहाँ फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहाँ जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा उसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहाँ बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म्स होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं और क्या क्या क्या नहीं होता, तो वो सब मैं, इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पढ़ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात, वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी, बहुत ही उम्दा हस्ती थे, हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज़्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इब्सन का डॉल्स हाउस आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भड़ैनी देने आए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे
0: जी,
1: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
0: जीवन शैली का,
1: जीवन शैली का बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे, और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां।
0: बड़ा मजेदार है।
1: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैसलाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बाणूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं और बैल के सिंगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है, मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे कहानी, और वो जैसे कहानी सुलझती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ, फिल्म टेक्निक सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था।
0: हाँ,
1: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूं, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई। राम जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे, गाने वाले, तो उनको पीने की आदत थी और पीने से, जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह, वो दूसरी जो हौसा वाडकर की भूमिका थी वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है, तो वो कहते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी। और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा, फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुरई की नोक अटकती है। सुरई की नोक ही कहते हैं ना, तो सुरई की नोक अटकती है और वो सुरई साथ साथ उनके वो जा रही है और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा, अच्युत मामा, इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना? तो उसने कहा, बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य

0: देखा, और सच बात कहूं थोड़ा घमंडीपन लगेगा,
1: जी
0: लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था।
1: वाह,
0: ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ,
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है, पता
1: गजब
0: नहीं।
1: गजब गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अचित मामा है, वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार दे रहे
0: जी
1: हैं,
0: देखो
1: वो
0: वो
1: फिल्म
0: साथ साथ होता रहा
1: कह
0: है
1: के
0: ना।
1: सुनाते हैं,
0: हाँ
1: दूसरी तरफ नाटक चल रहा है,
0: हाँ
1: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा
0: जी
1: बनाती
0: जी
1: है।
0: जी
1: लेकिन दो बातें जो हैं वो
0: हाँ
1: मुझे बड़ी जरूरी लग रही हैं
0: हाँ
1: पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली ये
0: हाँ
1: कहा जा सकता है क्योंकि माँ
0: जी
1: भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी,
0: हाँ
1: वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
0: वो इत्तेफाक की बात है।
1: जी
0: हाँ, अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था। हाँ, और आखिरी महीने जैसा होता है, मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांठ पे कौन? मैंने कहा जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था।
1: वाह,
0: अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि
1: जी
0: ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन? मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे, कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जाओ। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकन जमखाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट्स, ढगांचा गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट होईल। हाँ,
1: ओहो
0: अब मुझे माँ का एक और ये बताना, बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक,
1: हो,
0: मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे,
1: जी
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट। और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में, तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 100-1 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और
1: वाह,
0: स्तोत्र भी, अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम
1: वो
0: ब्रह्मणि
1: पूरा
0: ये
1: याद है,
0: परे,
1: शिव तांडव स्तोत्र।
0: पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान से गड़गड़ाट और बिजान से कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंक गए कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे भारी
1: भारी
0: होते हैं,
1: होते हैं, खींच
0: वो
1: के
0: ऊंई
1: खोलो।
0: करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओहो, तो आप ऑडिशन के? तो मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह। ओहो, मायूस हुए सब लोग तो नहीं? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी, और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है? मैंने कहा नहीं, अब क्या है? कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप, अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पड़ा है, वो भी

0: मैंने पढ़ा तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी
1: जी।
0: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया जैसे, तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए।
1: वाह वाह।
0: और मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतना इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया। और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
1: कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं नहीं, ऐसा कहते थे, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पुणे एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स, गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ।
1: अच्छा, अच्छा,
0: दिन का जो भी छोटा मोटा, तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो, तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई,
0: 3 गुना। फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी, तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो एक दो दिन अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पेयर बनी दीदी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी फिर, दैट वाज ग्रेट फन, आई एंजॉयड दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई, और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
0: नहीं, ट्रंक कॉल नहीं, वो बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी
1: जी।
0: तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे, जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह, कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था, और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था, तो मैंने फोन किया 199 को, और मैंने कहा हेलो, मुझे गदी माडगुलकर के घर का फोन दे सकती हैं?
1: वाह वाह वाह।
0: तो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो, तो उसने कहा ताई, ताई बोल रही है टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के, मैंने कहा वाह वाह वाह, मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना।
1: मैं
0: सर हाँ जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। अरे ताई, एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो
1: बेचारी
0: इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना आप, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माय टेस्ट ऑफ रिकॉग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से। वाह।
0: और ये पहला अनुभव था, और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा, वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं, जो आनंद वो पहले उसमें था ना, इताई ताई बोलते हैं, you know, वो दोबारा नहीं कभी।
1: लेकिन जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी, गदी माडगुलकर, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी।
0: हाँ।
1: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
0: अच्छा,
1: कौन? 2 आंखें 12 हाथ उन्होंने लिखी थी, ओपन जेल कंसेप्ट पर जो फिल्म थी, वो तो गदी माँ ने ही लिखी थी, है ना। तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: क्या बात।

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे, सात आठ नाटक थे शायद,
1: 10-12।
0: बापरे जी।
1: तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक आध नाटक लिखती हूँ, तो एक नाटक मैंने लिखा पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहाँ बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुँच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ी की कविताएँ सुनाते हैं, जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मनती बोर एक पहा किती तेरी थोर वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है। फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ तो मैं कोकिला आकर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है, लिखता है हर एक के ऊपर, लिखता है मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ, एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांत से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड आया, फैन मेल, किसका, पुल देशपांडे।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: कि सही तुझी श्रुति का ऐकली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष लीतरा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चशा, पत्ते नगरी। पत्ते नगरी पहले था पक्षांत से कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेकन जिमखाना जाती थी बस से, तीन नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूँ, हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
0: वाह।
1: हाँ, और तब मैं बस में बैठी और पता नहीं ये पत्ते नगरीत का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान चार जो है ना, अंग्रेजी नाम बताती हूँ, हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल है, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयाँ शुरू है और जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट इन ताश के उसमें। तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर, हाँ हाँ ये शांति दूत बनेगा फला आदम का, ये वो। और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे, एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहाँ देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुँच गई। फिर ये किताब भी छपी और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरीत के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी। और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीत का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सड़ो की पड़ो, झाली काई गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे। उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। तो मैं लिखती गई, माउस प्रकाशन ने छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में। और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते रहते हैं, कर भी लेते हैं।
0: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहाँ ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
1: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा।
0: वो एक लड़की दिखी,
1: हाँ, वो नीचे दिखती है नेहा,
0: पत्ते हाँ। से फैसला करते हैं कि अच्छा, जिसके पास रानी आएगी
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: वो
1: अच्छा,
0: जाएगा।
1: ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं। और वो दो बुस्टंडे बिचारे पहुंच जाते हैं उसके घर,
0: बिल्कुल बारी बारी से वो फारूक शेख रह जाते हैं। चश्मे बद्दूर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बद्दूर का गाना लेके आते हैं। हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में, जिस दौर की
1: कौन सा गाना सुनाओगे
0: आपकी पसंद?
1: चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार,
0: बिल्कुल सुनते हैं। काली घोड़ी द्वार खड़ी, वाह सुनते हैं।

चले चकित भये सगरे नगरे काले घोड़े दौड़ पड़े काले घोड़े दौड़ पड़े काले घोड़े दौड़ पड़े काले घोड़े दौड़

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहाँ से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था। हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता, एक शो होता था रेडियो वीक का। हाँ, एक शो हुआ, फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे

0: बैठे थे, अब अगला शो कब है? तो मैं, अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया, इतनी मेहनत की, एक तो महीना भर तालीम की, हो गया। हाँ हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पूना में, हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण जोगलेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
1: वो तो पूरा एक अलग किस्सा है,
0: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना, इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
1: जी,
0: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको।
1: तो वो अखबार में विज्ञापन देखा,
0: हाँ, तो वो देखा मैंने। तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चिल्ड्रन थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो, और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो सकता है तो।
1: अच्छा, ऐसे ही कह दिया।
0: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से और फिर एक दो महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। कहते कैसे कह सकते? मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। एक महीने में शादी आपको पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते एक महीने में वो इतना तंग आ चुके आपसे, वगैरह वगैरह बातें होगी। एनीवे, तो आई ज्वाइंड NSD एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड फॉर द फर्स्ट ईयर। इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर, और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रन थिएटर और यहाँ पहुँच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा NSD में, और वो था इब्राहिम अलकाजी।
1: क्या बात है?
0: तो वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। और इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब साथ जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वॉज फैंटेस्टिक, ही वॉज अ फैंटेस्टिक टीचर, और बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं। इट वॉज रियली वंडरफुल।
1: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम इब्राहिम अलकाजी था। उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था।
0: नहीं, आषाढ़ का एक दिन,
1: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए
0: जी।
1: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
0: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगू मंजरी का रोल किया,
1: पत्नी जो होती
0: है, हाँ, कालिदास की पत्नी
1: जी,
0: रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं, और वो मुझे मज़ा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज़्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ करा, उनके आगे अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स, मैंने एंटिगनी में इज्मिनी का रोल किया। हाँ, मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी,
1: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
0: जी, बिल्कुल
1: थी।
0: बिल्कुल, तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी, दोनों मेरे क्लास में थे, और तब भी दोनों का रोमांस था। खैर वो बात और है। तो तो लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी वाज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं

0: एक साल में बहुत सीखा अलका जी साहब से, और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के इसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना बढ़िया उन्होंने मतलब पूरा यही बदल दिया, दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की वी पूरी बदल दी अलका जी साहब ने, और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति।
1: जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं।